Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। शहर की बसंत, जब पेड़ बोलते हैं रंगों में। दोस्तों, शहर में बसंत आता है, पर धूम से नहीं। ना ढोल बजता है, ना कोई बैनर लगता है, ना कोई नोटिफिकेशन आता है कि स्प्रिंग इज हियर। बसंत शहर में चुपके से आता है, और सबसे पहले पेड़ नोटिस करते हैं। हम लोग बिजी रहते हैं, ट्रैफिक में, मीटिंग्स में, डेडलाइंस में, मेट्रो के रश में, पर पेड़ कैलेंडर नहीं देखते। वो हवा का टेम्परेचर महसूस करते हैं, धूप की सॉफ्टनेस पहचानते हैं, और फिर एक दिन वो खिल उठते हैं। सिमल, लाल आग का पहला इशारा। फरवरी के एंड में एक पेड़ अचानक लाल हो जाता है, सिमल का पेड़। पूरे साल जो पेड़ बस एक आम सा ट्रंक लगता था, वो एक दिन ऐसे खिलता है जैसे किसी ने आसमान के टुकड़े को आग लगा दी हो। उसके मोटे फ्लैशी लाल लाल फूल सीधे नीचे गिरते हैं, प्लॉप की आवाज के साथ। फुटपाथ लाल, पार्क लाल, मॉन्यूमेंट के पास की जगह लाल कारपेट की तरह। सिमल बस एक पेड़ नहीं, ये बसंत का पहला इशारा है, जैसे शहर ने कोई लिपस्टिक लगा ली हो। इसे हम पलाश के नाम से भी जानते हैं। जकरंदा, नीली खामोशी। फिर आता है जकरंदा, इसका रंग शोर नहीं मचाता, ये पर्पल ब्लू सा होता है। हमारे शहर की आम सड़कें हों या सिविल लाइंस की पुरानी गलियां, अचानक से आप देखोगे सड़क पर नीली चादर बिछ जाती है। जकरंदा के फूल हल्का सा गिरते हैं, ऐसे जैसे हवा ने धीरे से रख दिए हों। ये पेड़ चिल्लाता नहीं, ये सिर्फ कहता है थोड़ा धीरे चलो और मुझे नोटिस करो। कभी एक फूल उठाकर बाल में लगा लो, और जब आप ऊपर देखते हो तो ब्रांचेस पर एक शांत सा नीला आसमान लटका होता है। अमालतस, सुनहरी बरसात। फिर गर्मी के बिल्कुल दरवाजे पर आता है अमालतस, अकेशिया फिस्टुलिया भी कहते हैं इसे। गोल्डन शावर ट्री, इसका रंग पीला नहीं, सुनहरा होता है। लंबी लंबी लटकी हुई फूलों की लड़ियां, जैसे किसी ने पेड़ से सोने की माला लटका दी हो। गर्मी में अमालतस गिरता है, बेंच पीले फूलों से ढक जाती है। कोई डेकोरेशन नहीं, नेचर का अपना स्टेज डिजाइन। और जब धूप उन फूलों पर पड़ती है तो लगता है जैसे हवा भी चमक रही हो। तबे ब्योर रोजिया, एक गुलाबी सपना। और फिर एक दिन आप देखते हो एक पेड़ बिल्कुल गुलाबी हो गया है, तबेबिया रोजिया। इसका ट्रंक हल्का सा सीधा, और ऊपर सिर्फ गुलाबी बादल। ये पेड़ जब खिलता है तो एक साथ खिलता है, जैसे कह रहा हो या तो पूरा खिलूंगा या बिल्कुल नहीं। और जब फूल गिरते हैं तो जमीन पर गुलाबी फर्श बन जाता है। सुबह सुबह जब सफाई कर्मचारी झाड़ू लगाते हैं तो वो गुलाबी फूल के ढेर में जमा हो जाते हैं।
पर जब तक वो हटाए जाते हैं तब तक शहर उनका रंग देख चुका होता है और जी चुका होता है। सोचिए, ये सब पेड़ हर साल खिलते हैं, हर साल गिरते हैं और हर साल गायब हो जाते हैं, पर हम कितनी बार उन्हें नोटिस करते हैं। हम फॉरेन ट्यूलिप फेस्टिवल की फोटोज देखते हैं, जापान की चेरी ब्लॉसम की रील्स चलाते हैं, पर अपने शहर का सीमल, जकरंदा, अमलतस, उन्हें बस ट्रैफिक लाइट पर देखकर इग्नोर कर देते हैं। बसंत हमें क्या सिखाता है? ये कि ट्रांसफॉर्मेशन लाउड नहीं होता, ये धीरे से होता है। कल तक जो ब्रांच सूखी थी, आज उस पर फूल हैं। कल तक जो पेड़ ऑर्डिनरी था, आज वो लैंडमार्क बन गया है। लाइफ भी तो ऐसी है, बदलाव धीरे से आता है, पर जब आता है तो पूरा रंग बदल देता है। किसी सेकंड फ्लोर की टेरेस के नीचे एक सिमल खड़ा था। हर साल टेरेस लाल हो जाती है। किसी कॉलोनी के गेट

पर एक जकरंदा है। हर साल वहां नीली चादर बिछती है। किसी ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर अमल तस है। एम्प्लॉयज लंच ब्रेक में उसके नीचे खड़े होते हैं। नेचर पब्लिक भी है और प्राइवेट भी। ये सबको इक्वली रंग देता है। ना टिकट लगती है ना कोई एंट्री पास। बसंत सिर्फ एक सीजन नहीं, ये एक दर्शन है। ये कहता है जो सूखा लग रहा है वो भी एक दिन जरूर खिलेगा। सिमल बताता है इंटेंसिटी से जियो, लाल होकर जियो। जकरंदा बताता है शांति में भी खूबसूरती है। अमलतस बताता है जब खिलो तो खुल कर खिलो, सुनहरे हो जाओ। और तबेबिया बताता है कि एक साथ एक पल में भी बदलाव आ सकता है, वो भी गुलाबी। अगले कुछ हफ्तों में जब आप ड्राइव कर रहे हो या मॉर्निंग वॉक पर निकलो, बस एक बार ऊपर देख लेना। शायद कोई ब्रांच आपको बुला रही हो, शायद कोई फूल आपके लिए गिरा हो। शहर बस कॉन्क्रीट नहीं, शहर रंग भी है। और बसंत में हमें हर साल यही याद दिलाते हैं कि जिंदगी सिर्फ ग्रे नहीं होती, कभी लाल, कभी नीली, कभी सुनहरी और कभी गुलाबी। और सबसे खूबसूरत बात, ये सब फ्री है, बस देखना पड़ता है। तो दोस्तों, इस बसंत थोड़ा धीरे चलना, थोड़ा ऊपर देखना, थोड़ा नीचे देखना। हो सकता है शहर आपको एक फूल के जरिए मिल जाए या कुछ कह रहा हो, और हो सकता है कि आपका दिल भी एक नए रंग में खिलने को तैयार हो। देख के देखिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: माँ का फेवरेट डायलॉग, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं। और अगले ही सेकंड, फोन दो जरा, पासवर्ड बताओ। What?

जब टाइटैनिक डूब रही थी, पर संगीत संगीत खड़ा था। दोस्तों, कभी कभी इतिहास हमें तारीख या नंबर से याद नहीं रहता, वो हमें याद रहता है एक पल की वजह से, एक फैसले की वजह से, एक इंसानी रूह की वजह से। 1912, ठंडी रात, अटलांटिक समुंदर और दुनिया का सबसे बड़ा जहाज RMS टाइटैनिक। लोग कहते थे ये कभी नहीं डूबेगा, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब टाइटैनिक बर्फ के पहाड़ से टकराया तो सिर्फ लोहा नहीं टूटा, गुरूर टूटा, भरोसा टूटा, और कुछ ही घंटों में 1500 से ज्यादा जिंदगियां अंधेरे समुन्दर में समा गईं। पर उस रात जब लोग भाग रहे थे, चीख रहे थे, लाइफ बोट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, तब कुछ लोग थे जो भागे नहीं। वो थे टाइटैनिक के ऑर्केस्ट्रा के 8 सदस्य। ना वो सैनिक थे, ना उन्हें किसी ने ऑर्डर दिया था, ना उनकी ड्यूटी थी किसी को बचाना। वो बस संगीतकार थे, आम लोग, फ्रीलांसर्स, रोज कमाने वाले अपने परिवार के एक लौते सहारे। और फिर भी जब मौत सामने खड़ी थी, उन्होंने एक अजीब सा फैसला लिया। उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट्स उठाए और बजाना शुरू कर दिया। सोचिए, जरा सोच के देखिए, आप एक डूबते जहाज पर हैं, चारों तरफ अफरा तफरी, लोग बच्चों को गले लगाकर रो रहे हैं, पानी धीरे धीरे डेक पर चढ़ रहा है, और आपके पास दो रास्ते हैं, या तो भागकर अपनी जान बचाइए, या फिर रुककर किसी और को थोड़ा सा और सुकून दीजिए। इन 8 लोगों ने दूसरा रास्ता चुना। उनके बैंड के लीडर थे वॉलेस हार्टले। कहता है इतिहास कि जब जहाज झुकने लगा, तब भी वायलिन की धुन हवा में गूंज रही थी। किसी ने पूछा नहीं हमें क्या मिलेगा, किसी ने सोचा भी नहीं हम बच पाएंगे या नहीं। उन्होंने सिर्फ एक बात सोची, ये लोग डर रहे हैं, शायद संगीत इन्हें दो पल की हिम्मत दे दे। और वो बजाते रहे, जब तक जहाज पानी पर था तब तक सुर हवा में थे। फिर टाइटैनिक डूब गया और वो 8 सुर समुन्दर में समा गए। उनमें से 5 तो सिर्फ 20 साल के आसपास के जवान थे, सपने अधूरे, जिंदगी शुरू ही हुई थी। सिर्फ वॉलेस हार्टले का शरीर 2 हफ्ते बाद मिला, बर्फ जैसा ठंडा पानी, और उनकी छाती से बंधा हुआ उनका वायलिन। वो वायलिन उनके मंगेतर का एक तोहफा था। क्या तस्वीर होगी वो, एक कलाकार अपने सांस को सीने से लगाए समुंदर में आखिरी नींद सो गया। दर्द यहां खत्म नहीं हुआ। उन 8 लोगों के परिवार गरीब थे, वो अकेले कमाने वाले थे। उन्होंने सोचा कंपनी मदद करेगी। टाइटैनिक के मालिक थे व्हाइट स्टार लाइन, पर जवाब आया ये सेकंड क्लास पैसेंजर थे, कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। परिवार ने म्यूजिक एजेंसी से बात की, CWF। उन्होंने कहा इंश्योरेंस कंपनी से बात करो। इंश्योरेंस ने कहा ये फ्रीलांसर थे, हमें कुछ नहीं देना। और जब लगा कि इंसानियत शायद बिल्कुल मर चुकी है, तब एक परिवार को एक चिट्ठी मिली। उसमें क्या था, 14 शिलिंग का बिल, यूनिफॉर्म का पैसा बाकी है, वो जमा करो। सोचिए, जो इंसान अपनी जान दे चुका है, उसके घर वालों को यूनिफॉर्म का बिल भेजना, ये सिर्फ बेइंसाफी नहीं थी, ये बेहिस दिल का एक सबूत था। पर कहानी यहां से बदलती है, जब कॉर्पोरेट दिल पत्थर हो गए,

उस दिन वो आए। और क्यों? क्योंकि कभी कभी संगीत सिर्फ कला नहीं होता, वो सम्मान होता है, वो एक प्रतिज्ञा होती है। उस रात जो पैसा जमा हुआ वो इन 8 परिवारों को दिया गया, पर पैसे से भी ज्यादा उन्हें इज्जत मिली। दोस्तों सोचिए, जब दुनिया टूट रही हो तब आप क्या करेंगे? बचने की कोशिश या किसी और को सहारा? टाइटैनिक के म्यूजिशियंस ने दुनिया को एक अजीब सी बात सिखा दी, कभी कभी हिम्मत तलवार से नहीं आती, कभी कभी हिम्मत वायलेंस से आती है। वो 8 लोग किसी किताब के हीरो नहीं थे, ना उनका नाम हर स्कूल में पढ़ाया जाता है, पर उस रात उन्होंने डर के बीच एक शब्द लिखा, गौरव। और जब कॉर्पोरेट सिस्टम ने उनकी इज्जत को रौंदने की कोशिश की, तब समाज ने मिलकर कहा, इंसानियत अभी जिंदा है। आज हम फास्ट दुनिया में जीते हैं, हर कोई अपने लिए भाग रहा है, पर क्राइसिस के वक्त अक्सर आम लोग ही असाधारण काम करते हैं, जैसे टाइटैनिक के वो म्यूजिशियंस। उन्होंने किसी को बचाया नहीं, पर उन्होंने लोगों को डर के बीच 2 पल का सहारा दिया। और कभी कभी सहारा ही सबसे बड़ा बचाव होता है। जब टाइटैनिक डूब रही थी तब सिर्फ एक जहाज नहीं डूबा, पर एक और चीज डूबने से बच गई, इंसानियत। और वो जिंदा रही 470 म्यूजिशियंस के सुरों में, रॉयल एल्बर्ट हॉल की गूंज में, और हर उस कहानी में जहां इंसान इंसान के लिए खड़ा होता है। आज अगर आप किसी अंधेरे पल में हो या किसी को अंधेरे में देख रहे हो, तो याद रखना, कभी कभी बस एक सुर ही काफी होता है, और कभी कभी सबसे बड़ा साहस यही होता है कि बस रुक जाना और बजाते रहना। कभी किसी के लिए बजाकर देखिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: लाइफ का सबसे बड़ा सस्पेंस, घर से निकलते वक्त मम्मी का कहना, शाम को बात करते हैं। पूरा दिन इसी सस्पेंस में जाता है कि पता नहीं कौन सी गलती हुई है। What?

जब कैनवस गाने लगे, पानी, संगीत और रंग की कहानी। दोस्तों, आज मैं आपसे एक अजीब सा सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर मैं कहूँ कि एक पेंटिंग ऐसी भी है जिसे ब्रश से नहीं, आवाज से बनाया जाता है, और अगर मैं कहूँ कि उस पेंटिंग को बनाते वक्त कलाकार कैनवस को हाथ भी नहीं लगाता, थोड़ा अजीब लगेगा ना? चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे कलाकार की जो पानी की धुन को रंग में बदल देता है। नाम है ओलिवर बियर। लेकिन कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये कहानी है तीन एंस की। जी हाँ, नॉवल्टी, न्यूएंस और नरेटिव। पर घबराइए मत, मैं इसे सीधी सी जुबान में नहीं समझाऊंगी। पहला एन, नयापन यानी नॉवल्टी। सोचिए, दुनिया में कितनी पेंटिंग्स बनी होंगी, कितने रंग, कितने ब्रशेस, कितने स्टाइल, पर ये आदमी क्या करता है? वो झील के पानी की आवाज रिकॉर्ड करता है। हाँ, सिर्फ पानी की आवाज। फिर उस आवाज को एक स्पीकर के थ्रू कैनवस के नीचे चलाता है। कैनवस सीधा जमीन पर पड़ा होता है, उस पर रंग या पिगमेंट बिखरा होता है, और जैसे ही वो एक सुर बजाता है, रंग हिलने लगता है, एक गोल आकार बनाता है, फिर एक फूल जैसा पैटर्न, कभी ज्योमेट्री, कभी जैसे एक मंडला। अगर सुर मीठा हो तो आकार समुंदर बन जाता है, और अगर सुर टकरा जाए तो डिजाइन टूट जाता है। ये कोई जादू नहीं, ये साइंस है। आवाज की लहरें, कंपन, हवा का पानी पे नृत्य। पर फिर भी जो तस्वीर उभर कर आती है ना, वो किसी जादू से कम नहीं होती। आपने शायद नेचर के साउंड्स के बारे में सुना होगा। क्रिस वॉटसन जैसे लोग प्रकृति की आवाज को रिकॉर्ड करते हैं, या एनिया लॉकवुड ने नदियों की धुन रिकॉर्ड की। लेकिन पानी की मेलोडी को सीधा रंग में बदल देना, ये सच में नया है। इसीलिए अगर ओरिजिनलिटी की बात हो तो मैं भी कहूंगी ये काम बहुत अलग है। दूसरा एन, गहराई, नुएंस। अब जरा मुश्किल की बात करते हैं, ये पेंटिंग बनना आसान है क्या? नहीं दोस्तों, क्योंकि कलाकार कैनवस को छूता ही नहीं, उसका ब्रश क्या है, उसकी आवाज। ओलिवर बियर पहले म्यूजिशियन थे, उनका कान ट्रेंड है। सुर थोड़ा ऊपर या नीचे हुआ तो डिजाइन बदल जाता है। वो एक सुर बजाते हैं, पिगमेंट हिलता है, फिर वो सुनते हैं और फिर सुर बदलते हैं, जैसे जैज में इम्प्रोवाइजेशन होता है। कंट्रोल भी है, खोज भी है। वो कहते हैं, मैं कैनवस को गाने देता हूं। क्या सुंदर बात है। सोच के देखिए, आप ब्रश से लाइन खींच सकते हैं, पर आवाज से? आवाज को इतनी ठीक जगह तक पहुंचाना, ये रियाज मांगता है। ये हवा और पानी की फिजिक्स है, ये साइंस और कला का मिलन है, ये रैंडम नहीं है, ये एक साधना है। और तीसरा एन, कहानी। अब सबसे जरूरी सवाल, ये पेंटिंग कहना क्या चाहती है? सिर्फ डिजाइन बनाना मकसद नहीं। एक बार नॉर्मंडी में एक शो हुआ, वहां एक तालाब है जहां मशहूर पेंटर क्लॉड मोने 30 साल तक बैठकर पेंटिंग करते थे। उन्हें हवा, रोशनी, एटमॉस्फेयर का जुनून सा था। वो कहते थे, दुनिया हवा में रहती है, हवा ही सब कुछ बदल देती है। ओलिवर बियर ने उस तालाब के नीचे से आवाज रिकॉर्ड की, पानी के अंदर की खामोशी, बुलबुलों की हल्की सी सरसराहट, फिर उस आवाज को चलाकर पेंटिंग बनाई। समझ रहे हैं, मोने हवा को रंग में पकड़ना चाहते थे, बियर आवाज को रंग में बदल रहे हैं। दोनों इनविजिबल चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
हवा दिखती नहीं, आवाज दिखती नहीं, पर दोनों महसूस होती हैं। और जब रंग कंपन से आकर बनता है तो वो ज्योमेट्री बनती है और बिगड़ती रहती है, बिल्कुल हवा की तरह, बिल्कुल संगीत के नोट्स की तरह। ये सिर्फ एक ट्रिब्यूट नहीं, ये बेटन पकड़कर अपनी ही दौड़ लगाना है। थोड़ा सोचिए, आप जब गाना सुनते हैं क्या आप रंग महसूस करते हैं? कभी कभी एक सुर नीला लगता है, कभी लाल, कभी हल्का सुनहरा। और हो सकता है कि हम सबके अंदर एक कैनवस हो जो आवाज से बदलता हो। इसीलिए मुझे ये कला बहुत पसंद है, क्योंकि यहां मीडियम और मीनिंग अलग नहीं, आवाज ही ब्रश है, साइंस ही कला है, पानी ही रंग है। और सबसे खूबसूरत बात, कलाकार कैनवस को हाथ नहीं लगाता, वो कंट्रोल करता है, पर ज्यादा नहीं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ता है। जैसे जिंदगी में होता है ना, हम सुर बजाते हैं पर पैटर्न खुद बनता है, कभी सुंदर और कभी टूट कर फिर जुड़ता है। मैंने ये तीन एंग के थ्रू देखा इस कहानी को, नयापन, गहराई और कहानी। पर ये सिर्फ एक फ्रेमवर्क है, एक सहारा। अंत में कला का मतलब होता है आप क्या महसूस करते हैं। तो मुझे बताइए, अगर आपके शहर की नदी की आवाज से पेंटिंग बने तो उसका रंग कैसा होगा? यमुना की धुन, गंगा की लहर, समुंदर की गरज। आज रात जब हवा चले, जरा ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है हवा में भी कोई डिजाइन बन रहा हो। बस हमें देखने की देर है। कभी कभी कला ब्रश से नहीं, लहरों से लिखी जाती है, और कभी कभी कैनवस भी गाता है। गुनगुना के देखिए।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ। इंसान और हिमालय में बहुत सारी समानताएं हैं। सबसे बड़ी समानता तो यही है कि दोनों सबसे ऊपर पहुंचना चाहते हैं और बस इसी की जद्दोजहद में इनके जीवन में तमाम तरह की उथल पुथल लगी ही रहती है। फिर भी दोनों रुकते नहीं हैं। दोनों की यही खूबी इन्हें एक दूसरे के करीब भी ले आती है और जोड़ भी देती है। जैसे ही आप हिमालय के नजदीक पहुंचेंगे, वैसे ही इस धरती के सबसे युवा प्राणी यानी कि आप और सबसे युवा पर्वत श्रृंखला हिमालय के बीच एक रोमायणी शुरुआत हो जाएगी। दोनों ही अभी विकसित होने की प्रक्रिया में हैं, इसलिए दोनों ही अब भी बढ़ रहे हैं। अपने चरम को पाने की कोशिश में दोनों की यात्रा जारी है और वो चक्र कभी थमेगा नहीं। हालांकि हिमालय के लिए अपनी चोटी या चरम को छूना आसान नहीं है। अपने विकास के इस प्रयास में वो विशाल पर्वत रोज टूटता है और इससे बड़े बड़े हिमस्खलन होते हैं। हिमनद बनते हैं, टूटते हैं, लेकिन इन तमाम घटनाओं और अवरोधों के बाद इसकी यात्रा में कभी ठहराव नहीं आता। साफ तौर से दिखने वाली ये सारी अफरा तफरी इस पर्वत श्रृंखला के बढ़ने और अपने चरम को छूने की कोशिश का ही एक नतीजा है। यही बात मनुष्य के साथ भी देखने को मिलती है। जब भी कोई आदमी आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसके जीवन में मुश्किलें तो देखो दोस्तों आती ही हैं। ये बेहद सांकेतिक है। पर्वत श्रृंखला के बढ़ने से हर रोज भूचाल, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक घटनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक ऐसा ही हाल इंसान के जीवन का भी तो है। जब आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो आपके जीवन में भूचाल आएंगे, मुश्किलें आएंगी और वो सारी मुश्किलें आपका पीछा करेंगी। तो जो लोग निष्क्रिय होते हैं, बस यूं ही आलस में पड़े रहते हैं और बढ़ना नहीं चाहते, उनके जीवन में ठहराव होता है। वैसे तो देखने को उनका जीवन औरों से बेहतर नजर आता है, लेकिन सच्चाई तो देखिए दोस्तों कुछ और ही है। बेकार बैठे रहने से या कुछ नहीं करने की ललक से जीवन को नीरस बना ही दिया जाता है। जीवन बहुत बोरिंग हो जाता है, बहुत सुस्त हो जाता है, जीवन बेजान सा हो जाता है। जो लोग अपने विकास के लिए निरंतर कोशिश करते हैं, उनके जीवन में तो देखो उथल पुथल होगी ही ना, और ऐसा होना जरूरी भी है, तभी इंसान विकास के लिए आगे बढ़ेगा। हिमालय में सबसे बड़ा हिमस्खलन कोई 5 करोड़ साल पहले हुआ था। तब से अब तक ये 5 मिलीमीटर की रफ्तार से धीरे धीरे हर साल ऊपर उठ रहा है। हालांकि महाद्वीप पर इसका विस्तार चौड़ाई में भले ही 5 सेंटीमीटर हर साल हो रहा हो, लेकिन ऊंचाई के मामले में ये 5 मिलीमीटर की सालाना दर से बढ़ रहा है। जीवन के साथ भी हमेशा यही होता है दोस्तों। आप धरातल पर कितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन इससे ऊंचाई तो थोड़ी सी ही बढ़ती है। ये सिद्धांत सब पर लागू है। फिर चाहे आप भौतिक सुख या कल्याण की खोज में जुटे हों या फिर आध्यात्म की तरफ घूम गए हों।

जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है।

0: दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइए बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए।
1: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
2: देखो भैया, इश्क होने लगे तो पूजा पाठ कर लेना। मोहब्बत होगी तो मिल जाएगी, बला होगी तो टल जाएगी।

रेडियो टांटिया भील आपके झाबुआ की आवाज। एक मूर्तिकार बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां बनाता था। वो उन्हें बेचकर अच्छा पैसा कमा लेता था। जब मूर्तिकार का बेटा बड़ा हुआ तो वो भी मूर्तियां बनाने लगा। लोग उसकी मूर्तियों को बहुत पसंद करते, लेकिन जब भी वो कोई मूर्ति बनाता उसका पिता कोई ना कोई कमी निकाल देता। वो खुशी खुशी अपने पिता की सलाह पर अमल कर लेता। इस तरह लगातार सुधार से बेटे की मूर्तियां अपने पिता से भी ज्यादा अच्छी बनने लगी। मूर्तिकार कभी कभी अपने बेटे की मूर्तियों में कमियां निकाल ही देता था फिर भी, लेकिन उसके बेटे को ये अब अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उसके सब्र ने जवाब दे दिया। वो बोला, पिताजी आप तो ऐसे कहते हैं जैसे आप बहुत बड़े मूर्तिकार हो। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियां इतने कम दामों में ना बिकती। मुझे अब आपकी सलाह की कोई जरूरत नहीं है, मेरी मूर्तियां बिल्कुल ठीक हैं। इसके बाद पिता ने कमियां निकालना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि लोग अब उसकी मूर्तियों की इतनी तारीफ नहीं करते जितनी पहले किया करते थे। उसकी मूर्तियों के दाम बढ़ने के बजाय कम होने लग गए और बिक्री भी बहुत घट गई। शुरू शुरू में उसको कुछ समझ नहीं आया। फिर वो अपने पिताजी के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। उसके पिता ने कहा, बेटा मैं जानता हूं कि तुम्हारी जैसी मूर्तियां मैं नहीं बना सकता। ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से कभी तुम्हारी मूर्तियां बेहतर बनी हों, लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां दिखाता था तब तुम उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करने लगते थे। बेटे वही कोशिश तुम्हारे कामयाब होने का बहुत बड़ा कारण थी, लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए बस तुम्हारी कामयाबी रुक गई। दोस्तों ठीक इसी तरह संसार में कोई भी इंसान किसी भी काम में 100% उत्तम तो हो ही नहीं सकता। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। बस हमें उस कमी को ही तो तलाशना है और उसे ठीक करने की कोशिश करनी है। इसी कमी की तलाश करने के लिए हमें असंतुष्ट होना सीखना होगा, तभी हम इस जीवन में आगे बढ़ पाएंगे।

और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी। आइए दोस्तों आज आपको मिलवाते हैं धीरेन सोलंकी से, जो एक युवा हैं और पशु पालक किसान हैं। दोस्तों कुदरत ने इस धरती पर जितने भी जीव पैदा किए हैं उसने उनमें कुछ ना कुछ उपयोगिता डाली। ये हम इंसानों की प्रॉब्लम है, हम इंसानों की कमी है जो उनकी अहमियत को नहीं देख पाते और किसी जीव को पूजने लगते हैं, किसी से नाराज हो जाते हैं और किसी का मजाक उड़ाते हैं। कम से कम उत्तर भारत में तो गधों को इज्जत की निगाह से तो नहीं देखा जाता। क्यों दोस्तों, गधे ही तो गधे ही होते हैं, है ना, ऐसा कहा जाता है। और तो और किसी की बेइज्जती करनी हो तो उसे गधा कह दिया जाता है। अब भला गधे जैसे जीव का इसमें क्या दोष है? यूं देखा जाए तो गधों से काम भी जम के लिया जाता है, लेकिन उन्हीं पर मजाक करते हुए मुहावरे भी बना दिए जाते हैं। लेकिन गुजरात के धीरेन सोलंकी के लिए गधी किसी नेमत से कम नहीं। इस जानवर ने महज 22 साल की उम्र में ही इन्हें करोड़पति बना दिया। जी हां, सुन के अजीब सा लगा होगा आपको, तो लीजिए सुनिए। धीरेन की इस कामयाबी ने यह साबित किया कि यदि आपके पास नया आइडिया हो, धैर्य हो और आगे बढ़ने का जज्बा हो तो गधी जैसा जानवर भी आपको मालामाल कर सकती है। आपको सुनकर हंसी आ रही होगी दोस्तों। गुजरात के पाटन जिले के मनुंद गांव में पैदा हुए धीरेन सोलंकी का सपना किसी निम्न मध्य वर्गीय परिवार से कुछ ज्यादा नहीं था। पिता अरविंद भाई सोलंकी चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर किसी सरकारी स्कूल में मास्टर बन जाए तो परिवार की कुछ आर्थिक मदद हो जाएगी। धीरेन अपने परिवार और पिता की अपेक्षाएं समझते थे, उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। विज्ञान संकाय से स्कूली पढ़ाई पूरी की, फिर उन्होंने प्राइमरी शिक्षक प्रमाण पत्र लिया, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की और केंद्रीय विद्यालय संगठन इस तरह की सभी परीक्षाएं पास कर ली, लेकिन कोई स्थायी नियुक्ति कोई नौकरी नहीं मिली। छोटी मोटी नौकरियां की, लेकिन उनसे क्या होता। साल 2020 में पड़ोस के प्रदेशों में आयोजित शिक्षक बहाली परीक्षाओं में भी बैठे वो, लेकिन हर जगह एक लंबा इंतजार था। करीब 6 महीने तक परिणामों का इंतजार करते करते उन्हें निराशा घेरने लगी। बेटे की चिंता पिता को भी परेशान करने लगी। अब जाहिर है कारोबारी बनने का गुजराती जज्बा जाग उठा। धीरेन के पिता ने कहीं पढ़ा कि केरल और कर्नाटक में गधी पालन कारोबार भी होता है। देश में गधी के दूध की मांग या उसके उपयोग के बारे में उतनी जानकारी तो किसी को नहीं थी, लेकिन मलेशिया, चीन और तुर्की जैसे देशों में इसकी बड़ी भारी मांग थी। अरे वाह, अरविंद भाई सोलंकी ने यह बात अपने बेटे को बताई। धीरेन तो इस आइडिया से चौंक गए। उन्होंने शिक्षक बनने के सारे सपने छोड़कर ऑनलाइन इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब तक उन्हें यह भी पता नहीं था कि भला इस दूध का क्या क्या उपयोग होता होगा। यहां तो भैंस गाय के दूध के 60 रुपए लीटर होने पर इतना हंगामा हो जाता है, तो गधी के 1 लीटर दूध की कीमत 1000 रुपए जानकर तो वो हैरानी रह गए। दरअसल गधी के दूध में रोग प्रतिरोधी गुण बहुत होते हैं, लिहाजा कई दवाओं में इसका इस्तेमाल होता है। गाय के दूध से एलर्जी हो जाने वाले नवजातों के लिए भी ये किसी रामबाण से कम नहीं होता। फिर कई तरह के सौंदर्य उत्पादों में भी इसकी भारी मांग है। धीरेन के पास डंकी फार्म शुरू करने का कोई व्यावहारिक प्रशिक्षण भी नहीं था, सिर्फ पिता के हौसले और आत्मविश्वास की बदौलत उन्होंने साल 2022 में अपना डंकी फार्म शुरू किया। इसके लिए उन्होंने करीब 40 लाख रुपए का कर्ज उठाया। इस रकम से उन्होंने 20 गधी खरीदी और एक 30 बाई 40 फीट का शेड बनाकर तैयार किया, जहां
इन पशुओं को रखा जा सके।

धीरेन ने सोचा था कि आज गधी खरीदी और कल से उसके दूध की बिक्री शुरू हो जाएगी, लेकिन गुजरात में तो इसकी कोई मांग थी ही नहीं और विदेश में इसे पाउडर के शक्ल में भेजा जाना था। पहले साल तो उन्हें बहुत घाटा हुआ, क्योंकि दूध को सुरक्षित रखना और उसे पाउडर में बदलने की तकनीक उनके पास थी ही नहीं। इस काम को करने वाली कंपनियों से करार करते करते और तालमेल बैठाते बैठाते साल भर निकल गया। उन्हें पहला ऑर्डर 50 किलोग्राम पाउडर का मिला। अमूमन 1 किलो पाउडर तैयार करने में 16 से 17 लीटर दूध लग जाता है। संजोग से उस वक्त उन्होंने 200 किलो पाउडर का भंडारण कर रखा था। 63,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उन्हें भुगतान मिला। काम बस चल निकला। अब पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। ई कॉमर्स ने उन्हें ग्राहकों का एक विशाल फलक मुहैया करा दिया। आज उनके पास हलारी नस्ल की करीब 40 गधी हैं, जिनके दूध से धीरेन 3 लाख रुपए महीने की कमाई कर रहे हैं। उन्होंने मवेशियों की देखभाल के लिए 3 से 4 लोग भी रखे हुए हैं और अपने पिता के साथ खुद भी पूरी तरह जुटे रहते हैं। धीरेन की यह यात्रा उन हजारों लाखों नौजवानों को रास्ता दिखाती है जो अपना बेशकीमत वक्त तंत्र और शासन को कोसने में लगा रहे हैं। धीरेन अगर सोचते ही रहते कि गधी के दूध का कारोबार करने पर समाज उनकी क्या खिल्ली उड़ाएगा, तो वो आज जिस जगह हैं वहां कभी नहीं पहुंचते। खुद के रोजगार को अंतिम विकल्प के तौर पर देखने का नजरिया बदलने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि इससे सिर्फ अपनी भलाई नहीं होती, बल्कि आप उसके विस्तार के साथ समाज और देश का भी भला करते हैं। बतौर शिक्षक बच्चों को शिक्षित करने का सुख धीरेन को अवश्य मिलता, मगर वो 4 लोगों को रोजगार नहीं दे पाते। आज वो एक शिक्षक के औसत तनख्वाह से कई गुना ज्यादा कमा रहे हैं। धीरेन सोलंकी की तरह जो भी अनूठी योजना के साथ आगे कदम बढ़ाएगा, कामयाबी तो दोस्तों उसे मिलेगी ही।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: जेलर ने पूछा, सुनो कल तुम्हें फांसी होगी, बताओ आखिरी इच्छा है कुछ? कैदी ने कहा, जी मैं तरबूज खाना चाहता हूँ। जेलर ने कहा, लेकिन ये तरबूज का तो मौसम ही नहीं है। कैदी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। रेडियो टंटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज।
2: जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख।

दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी। ऐसा लिखा गया है कि सुदामा जी जब भगवान के यहां से चले तो भगवान ने उन्हें कुछ नहीं दिया। सम्मान तो किया लेकिन दिया कुछ नहीं। अब दूसरा कोई होता तो नाराज हो जाता कि मैं आपके यहां अब कभी नहीं आऊंगा। आप किस तरह के दोस्त हो? मैं तो गरीब ब्राह्मण हूं और मुझे कुछ भी नहीं दिया। मगर जैसे भगवान हैं, वैसे ही सुदामा भी भगवान हो गए, भले ही वो महल में नहीं रहते थे। ऐसा लिखा गया है कि ईश्वर को जानने वाला ईश्वर ही हो जाता है। सुदामा ब्रह्म को पहचानने वाले संत हैं, वो ब्रह्म के समान हो गए। उन्हें वही आनंद चित्त की अवस्था मिल गई, वही श्रद्धा की अवस्था मिल गई जो भगवान को मिली हुई है। तो सुदामा जी ने मांगा कुछ भी नहीं। आज का कोई होता तो हंगामा कर देता, खरी खोटी सुनाता, अनशन पर भी शायद बैठ जाता। सुदामा जी ने भी विचार तो किया कि भगवान ने कुछ दिया नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान गरीब हो गए हों। वैसे भगवान तो कभी गरीब नहीं हो सकते ना। संपूर्णता में जिनको सब कुछ मिल गया हो उन्हें ही तो भगवान कहा जाता है। भग का मतलब होता है पूरा ऐश्वर्य, पूरी अमीरी, धर्म संपूर्ण, वैराग्य संपूर्ण, ज्ञान संपूर्ण, सभी कुछ तो होता है भग का मतलब। भगवान को गरीबी कैसे आएगी? वो तो समग्र धर्मशाली, धनशाली हैं। क्यों? ऐसा तो नहीं कि कंजूस हो गए भगवान। फिर सुदामा जी ने सोचा कि ऐसा क्यों सोचें? भगवान तो परम उदार भी हैं, कल्याणकारी गुणों के समुद्र हैं, प्रेम, लगाव और शक्ति के समुद्र हैं। भगवान कभी पाप तो करते नहीं। जितने दुर्भाव हमारे मन में आते हैं दोस्तों, उनका मूल कारण पाप ही है। चाहे गुस्सा हो, लालच हो, द्वेष हो, सबके मूल में बैठा है क्या? पाप। सुदामा जी ने समाधान निकाला। अद्भुत भगवान की कृपा है। भगवान ने हमारे परित्याग को, हमारे को जो दिया, रोम रोम से, बाहर से भीतर तक हमारा समुदाय की सेवा के लिए जीवन दिया, उससे कहीं हम अलग ना हो जाएं, यही विचार किया होगा। कहीं हम भोगी ना हो जाएं, कहीं हम संतुष्ट ना हो जाएं, कहीं हमारा भजन छूट ना जाए, इसलिए भगवान ने नहीं दिया। कहीं हमारी विशिष्टता लुप्त ना हो जाए, गायब ना हो जाए, कहीं हम समाज के लिए जीना छोड़कर अपने लिए जीना शुरू कर दें, इसलिए भगवान ने हमें कोई भौतिक संसाधन नहीं दिया। अब ये विचारों की महान अवस्था है मित्रों, इससे बड़ा व्यवहार भला क्या होगा। सुदामा जी ने कितना बड़ा समाधान निकाल लिया। अब तो लोग कर्जा लेकर व्यक्तिगत संपत्ति बना लेते हैं, फिर दिवालिया घोषित करके गायब हो जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में हजारों लोग पूर्ण संपत्तिवान होकर भी अपना दिवाला निकाल रहे हैं। ऐसे लोगों को कब और कैसे सुकून मिलेगा, कैसे शांति मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी।

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार। रेडियो के साथ बड़े बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए बड़ी कोशिशें जरूरी होती हैं। क्यों, आप कोई भी एक भारी भरकम लड़ाई एक सुई की मदद से कर सकते हैं क्या? तलवार तो चाहिए ही होगी ना। हफ्तों महीनों और सालों की मेहनत की भी जरूरत हो सकती है। क्यों, आपको क्या लगता है कोई 3 साल का 4 साल का बच्चा नर्सरी क्लास छोड़कर सीधे पीएचडी कर सकता है क्या? साल दर साल मेहनत करते हुए आगे बढ़ता है वो, तब शायद 25-30 साल में वो पीएचडी तक पहुंचता है। क्या ये सालों की मेहनत नहीं हुई उस बच्चे की? इतने सालों के बाद जाकर उसे मुकाम हासिल होता है, बढ़िया नौकरी मिलती है या कोई अच्छा व्यवसाय चालू होता है और वो समाज में सफल कहलाता है। कई बार लोग ऐसे लक्ष्य तय कर लेते हैं जो उनकी क्षमता से बहुत ज्यादा होते हैं। देखिए, बुरा ना मानिएगा, कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं होता, लेकिन कोई बहुत ज्यादा पतला दुबला सा व्यक्ति अगर सोचने लगे कि मैं बॉडी बिल्डर बनूंगा, बनने को बन भी सकता है, लेकिन फिर भी हमें ये तो सोचना ही चाहिए ना कि हमारी क्षमता क्या है। हम गलत तरीके से कहीं अपनी क्षमता से ज्यादा का टारगेट तो नहीं ले बैठे। हम अपने लक्ष्यों पर कुछ समय तो मेहनत करते हैं, फिर कोशिशें छोड़ देते हैं क्योंकि वो हमारी क्षमता से परे हैं। जरूरी यह है कि आप सकारात्मक मानसिक नजरिया बनाएं और उसे कायम रखें।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: लड़की ने पूछा, सुनो ये गूगल मेल होता है या फीमेल? लड़का बोला, बेबी हर हालत में फीमेल होता है। लड़की बोली, क्यों? लड़के ने कहा, क्योंकि देखो अपना सेंटेंस पूरा करने से पहले ही वो उसका सजेशन और सब कुछ देना शुरू कर देता है।
2: दुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना कोई।

0: तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूं समीर, कल मिलते हैं।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
2: हमारे जल संसाधन।
3: पानी या जल प्रकृति की अनमोल देन है। जीवन और उसके अस्तित्व के लिए यह इतना जरूरी है कि इसके बिना तो जीवन ही असंभव है। जैसा कि किसी ने ठीक ही कहा है, ना होता जल तो जग जाता जल। वास्तव में जीवन की उत्पत्ति जल से ही प्रारंभ हुई है। हमारे शरीर का लगभग 65% भाग पानी ही है। दैनिक जीवन की प्रत्येक घरेलू प्रक्रिया में, जैसे खाना बनाने से लेकर पीने के पानी तक, नहाने से लेकर कपड़े धोने तक, शॉर्ट से लेकर सफाई तक, प्रतिदिन एक व्यक्ति लगभग 120 लीटर पानी खर्च करता है, जिसमें औसतन 2 लीटर पानी पीने के लिए ही चाहिए।
4: हमारे देश में पानी का सबसे अधिक उपयोग कृषि में फसलों की सिंचाई के लिए होता है। मवेशियों को भी काफी मात्रा में पानी चाहिए। इसी प्रकार विभिन्न उद्योगों में भी इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये एक अच्छा घोलक, शीतक और सफाई का माध्यम है। बिजली बनाने का एक मुख्य साधन पानी ही है, जिसे जल विद्युत या पन बिजली कहते हैं। आज भी परिवहन का सबसे सस्ता साधन नदियों में चलने वाली नौकाएं या समुद्री जहाज ही हैं।
3: काफी हद तक मौसम भी तो पानी और उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। जलाशय और खासकर विशाल सागर, जो ऊष्मा ऊर्जा के बैंक का कार्य करते हैं, जो ऊष्मा को अवशोषित करते हैं और उसे छोड़ते हैं। इस कारण समुद्र तट के क्षेत्रों की जलवायु समुद्र से दूर के क्षेत्रों से भिन्न होती है। समुद्र तट के इलाकों में न तो सर्दी में ज्यादा सर्दी और न ही गर्मियों में ज्यादा गर्मी ही पड़ती है।
4: मगर ये पानी आता कहाँ से है, यानी इसके मुख्य स्रोत क्या क्या हैं?
3: आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पृथ्वी पर कुल पानी का लगभग 97% महासागरों और समुद्रों में है, जो कि धरती की 3/4 सतह पर फैले हुए हैं। समुद्र का पानी खारा होता है, इसका उपयोग सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता। शेष 3% ताजे जल के रूप में उपलब्ध है। इस 3% में से 2% जल हमारी पहुंच के बाहर है, क्योंकि ये जमा हुआ है। हिम के रूप में पहाड़ों की चोटियों पर, या ग्लेशियरों के रूप में, या फिर अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और ध्रुवों पर बर्फ की विशाल और मोटी चादर के रूप में, जहां पेंगुइन और सील रहते हैं। इस प्रकार सिर्फ 1% जल ही नदियों और झीलों में है, या फिर भूमिगत जल जो हम कुओं और नलकूपों के द्वारा निकालते हैं, और कुछ हवा में नमी और बादलों के रूप में। इसे यूं समझें कि अगर धरती पर 9 चम्मच पानी जमी हुई बर्फ के रूप में है, तो नदियों में बहता पानी 1 बूंद के बराबर है।
4: सच कहा जाए तो पानी हमारे आसपास चारों तरफ है। यहाँ तक कि रेगिस्तान की सूखी हवा में भी पानी की आर्द्रता अवश्य होती है। हमारे पैरों के नीचे की मिट्टी में कुछ न कुछ मात्रा में पानी मौजूद रहता है और उसके नीचे भूमिगत जल।
3: आपने सही बताया, मगर पानी तो वर्षा से भी आता है।
4: हमारे खेतों की फसलों के लिए और पीने का पानी काफी मात्रा में वर्षा से ही आता है। इस विषय पर आप कुछ और बताना चाहेंगे?
3: हाँ, क्यों नहीं। हमारे देश में जलवायु की विविधताएं हैं। कहीं थार जैसे रेगिस्तान हैं, तो कहीं हिमालय जैसे बर्फ से ढके हुए पहाड़। इसलिए वर्षा में काफी असंतुलन और असमानता है। जैसे राजस्थान के जैसलमेर में 20 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा प्रतिवर्ष होती है, तो आसाम के चेरापूंजी में लगभग 1100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसी तरह मुंबई और पुणे के बीच सिर्फ 160 किलोमीटर की दूरी पर भौगोलिक कारणों से मुंबई में मानसून के समय लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है।

0: और इतने ही समय में पुणे में लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तभी तो किसी कवि ने कहा है, भारत तेरी अजब कहानी, दो कोस पर बदले पानी और 100 कोस पर वाणी।
1: फिर भी हम वर्षा के मामले में भाग्यशाली हैं। कुल मिलाकर हमारे देश में औसत प्रतिवर्ष 115 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो विश्व के अन्य भागों की तुलना में बहुत अधिक है। भारत सबसे अधिक वर्षा के क्षेत्र में ब्राजील के बाद दूसरे स्थान पर आता है। कई कारणों से कुल वार्षिक वर्षा का 10वां भाग ही हम उपयोग में ला पाते हैं। एक अनुमान के अनुसार अगर स्थितियां बदली नहीं तो आज से 40 वर्ष बाद भी 1/4 से ज्यादा पानी हम उपयोग में नहीं ला सकेंगे।
0: हमारे देश में व्यापक जल स्रोतों का प्राकृतिक खजाना है, कहीं विशाल नदियां तो कहीं आभूषणों जैसी झिलमिलाती झीलें, कहीं झरझर करते जलप्रपात। और तीन तरफ फैला लंबा समुद्री किनारा, इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे देश में पानी की कोई कमी नहीं है।
1: पानी तो एक मुख्य समाचार बन जाता है जब देश के किसी भाग में सूखा पड़ जाता है।

या किसी प्रदेश में बाढ़ आ जाती है। या कई मौतें जल प्रदूषण से हो जाती हैं।

0: या गर्मियों में महानगरों में पानी का अभाव हो जाता है, जीवन के लिए कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं।
1: हमारे देश में पानी की प्रत्यक्ष अधिकता भ्रामक है और हम ऐसा मान लेते हैं कि हमें पानी का अभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन इस सच्चाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पानी का हम दुरुपयोग भी करते हैं और कभी कभी अधिक और अनुचित उपयोग भी करते हैं। परिणाम स्वरूप पानी की गंभीर कमी की परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं।
0: हमारे देश में हर एक को आवश्यकता अनुसार पानी क्यों नहीं मिल पाता है, इसके क्या कारण हैं?
1: पानी की कमी के कई कारण हैं। इनमें प्रमुख हैं बढ़ती हुई आबादी की बढ़ती हुई पानी की आवश्यकताएं, पीने के पानी का मुख्य स्रोत भूमिगत जल है। अधिक जरूरतों को पूरा करने के लिए यह संसाधन तीव्र गति से कम हो रहा है। कई प्रदेशों में भूमिगत जल का बहुत उपयोग होने लगा है। भूमि के नीचे से जल निकालने की दर भूमि में जल रिसने की दर से अधिक है। परिणाम स्वरूप भूमिगत जल स्तर यानी वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है।
0: देखिए, बरसात तो सिर्फ वर्षा ऋतु में होती है ना, इसलिए दूसरे समय के लिए पानी का संचय करना पड़ता है, और पानी का संचय करना कोई आसान काम नहीं है।
1: पानी को जमा करके रखने का एक मुख्य तरीका है बांध बनाना। पानी को बड़े पैमाने पर बांध बनाकर उसे एक जगह पर विशेष उद्देश्यों के लिए रोक लिया जाता है। बांध के जल का उपयोग कृषि में सिंचाई के लिए नहरों के माध्यम से किया जाता है और सूखे में पानी की कमी से बचा जा सकता है। भारत में भाखड़ा बांध, टिहरी बांध, हीराकुंड बांध, रिहंद बांध, मिस्र में अश्वान बांध और पाकिस्तान में तरबेला बांध और अमेरिका में कूली और हैवर बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के उदाहरण हैं। वर्षा के पानी को जमा करके खेती के लिए और यहाँ तक कि घरेलू जरूरतों के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। सावधानी से जमा किया हुआ पानी साफ होता है और सुरक्षित भी।

0: दुनिया रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम चाबुआ की आवाज।
1: वन में मेरा मन है। पेड़ों की हरियाली, ठंडी ताजी हवा एक नई ऊर्जा का एहसास दिलाती है। सच में वन एक बहुत उपयोगी प्राकृतिक संपदा है, फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ये भूल जाते हैं कि इनकी देखभाल और सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। अरे ये आवाज कैसे सुनाई दे रही है इधर से? लगता है कोई गा रहा है, जरा सुना जाए।

0: देखो वनों के होते हैं कितने प्रकार, कुछ वन पर्वतीय, कुछ पतझड़ीय, तो कुछ सदाबहार।
1: कहीं तेंदू तो कहीं महुआ, कहीं साल तो कहीं पलाश, बचाएं इनको हमें कहीं करनी न पड़े फिर तलाश।
0: वनों को

0: वाह, कितना सुंदर संदेश था। सच ही तो कहा है, वन से ही जीवन है। वन है तभी तो हम हैं। तो क्यों ना हम सभी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में सावधानी बरतकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें और वनों के संरक्षण में अपना योगदान दें। जैसे वनों से मिलने वाली चीजों, कागज, लकड़ी का समुचित उपयोग, पेड़ों की कटाई को रोकना, नए पेड़ लगाना और भी बहुत कुछ। आप भी सोचिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।
1: वन बचाएं। अमित बेटा।
2: जी माँ।
1: मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम दादाजी और सोनिया दीदी के पास जाकर बैठो।
2: ठीक है माँ।
1: और हाँ, देखो उन्हें तंग मत करना।
2: अच्छा माँ, मगर तुम जल्दी आना।
1: हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगी, तुम जाकर खेलो।
2: अच्छा माँ।

0: सोनू दीदी
1: बोलो।
0: ये देखो मैंने शेर का चित्र बनाया है।
1: अरे वाह इतना सुंदर।
2: अरे वाह भाई वाह अमित, अरे तुमने तो शेर का चित्र बहुत अच्छा बनाया है।
1: शेर तो जंगल का राजा होता है, पर अमित तुमने जंगल तो बनाया ही नहीं।
0: अरे हाँ सुनू दीदी।
1: हाँ
0: ये जंगल कैसा होता है?
1: जंगल
2: जंगल हमारे गांव के पास ही है बेटे।
1: बिल्कुल ठीक।
2: देखो जंगल का मतलब दूर दूर मीलों तक घने पेड़ पौधे झाड़ियाँ, समझे?
1: हाँ।
2: इसमें ढेर सारे जंगली जीव जंतु जैसे बाघ, शेर, हिरण, हाथी, हाँ, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े आदि रहते हैं।
1: और जंगल इन सभी जीवों का घर होता है, है ना दादाजी?
2: बिल्कुल सही सोनिया बेटी। दरअसल जंगल यानी वन हमेशा हमारे लिए वरदान रहे हैं।
1: अच्छा
2: समझे? हाँ ये प्रकृति का उपहार है। आज बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के कारण वनों का महत्व और भी बढ़ गया है।
1: अच्छा दादाजी।
2: हाँ भाई अगर वन न हो तो हम सब पर संकट छा जाएगा। हाँ और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता ही चला जाएगा।
1: पर्यावरण प्रदूषण ये क्या होता है दादाजी?
2: अरे बेटा पर्यावरण हमारे आसपास के वातावरण को कहते हैं, समझे? जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पहाड़, पेड़, पौधे, ये सब कुछ। अगर ये प्रदूषित हो जाएं, यानी गंदे हो जाएं, तो उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं, समझे? हमारे ऊपर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है।
1: अच्छा वो कैसे दादाजी?
2: भाई जैसे गंदा पानी पीने से अनेक बीमारियां होती हैं, वैसे ही प्रदूषित वायु में सांस लेने से सांस संबंधी बीमारी हो जाती है।
1: अच्छा
2: और बेटे अगर वन न हो तो सभी जीवों का जीना दूभर हो सकता है।
1: वो कैसे दादाजी?
2: सुनो वन वातावरण प्रदूषित होने से बचाते हैं और हमें शुद्ध हवा देते हैं।
1: अच्छा
2: हाँ पेड़ पौधों के अंदर जो नमी होती है वो वर्षा कराने में सहायक होती है।
1: अच्छा
2: भाई इन सब के अलावा वनों से हमें ढेरों कीमती सामान भी मिलते हैं। जैसे अनेक जड़ी बूटियां, फल, लकड़ी, रबर, गोंद और पत्तियां और पेड़ों की छालें जिनका उपयोग हम दवा, फर्नीचर, खाद्य पदार्थ आदि के रूप में करते हैं।
1: अच्छा दादाजी। वन इतने उपयोगी हैं, फिर इनका विनाश क्यों हो रहा है?
2: अरे बेटे इसके बहुत से कारण हैं, जैसे हमारे देश में जनसंख्या ज्यादा हो गई है।
1: अच्छा।
2: लोगों के पास रहने की जगह कम पड़ने लगी है। और भाई लोगों को रहने के लिए जगह तो चाहिए, इसलिए लोग वनों को काटकर अपने रहने की जगह बना रहे हैं।
1: अच्छा
2: हाँ बड़े बड़े कारखानों के लिए भी जगह की जरूरत है।
1: अच्छा।
2: इसके लिए भी वन काटे जाते हैं।
1: अच्छा
2: और पेड़ों की लकड़ियाँ प्रमुख साधन है। इसके अलावा झूम खेती से भी वनों का विनाश हो रहा है।
1: अच्छा दादाजी दादाजी ये झूम खेती क्या है?
2: देखो बेटा झूम खेती हमारे देश के उत्तर पूर्वी राज्यों तथा अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, समझे? भाई इस प्रकार की कृषि में लोग भूमि के एक टुकड़े पर कुछ दिन खेती करने के बाद दूसरी जगह वनों को साफ कर खेती करना शुरू कर देते हैं।
1: अच्छा ऐसा करते हैं?
2: हाँ इसके कारण नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम जैसे राज्यों में वन लगातार कम होते जा रहे हैं।
1: दादाजी, इन वनों को बचाया कैसे जाए?
2: अरे बेटा, वनों को तो हम कई तरीकों से बचा सकते हैं।
1: वो कैसे?
2: जैसे ईंधन के लिए लकड़ी का प्रयोग न कर कोई अन्य वस्तु जैसे गोबर गैस, प्राकृतिक गैस और सौर ऊर्जा का उपयोग करें।
1: अच्छा।
2: हाँ, और इमारत और फर्नीचर में लकड़ी का उपयोग न करके फाइबर, शीशे, लोहे का उपयोग कर सकते हैं।
1: दादाजी,
2: बोलो बेटे।
1: हम पेड़ काटने से पहले पेड़ लगा भी तो सकते हैं।
2: अरे वाह वाह अमित भाई, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो बेटे। सोनिया बेटी।
1: हाँ जी।
2: देखो जरा कौन आया है।
1: हाँ दादाजी, मैं अभी देखती हूँ।

0: रेंजर चाचा आप? आइए नमस्ते।
1: नमस्ते बेटी नमस्ते। काका नमस्ते।
2: अरे भाई रेंजर, आओ भाई और सुनाओ कैसे हो? आओ इधर आओ, इधर
1: सब ठीक है काका।
0: चाचा जी नमस्ते।
1: नमस्ते बेटा, और सुनाओ बच्चों, दादाजी से क्या बातें हो रही थी?
0: हम जंगल के बारे में बात कर रहे थे चाचा जी।
1: अच्छा
0: रेंजर चाचा, आप तो जंगल में रह चुके हैं।
1: हाँ?
0: आप हमें बताइए कि वनों को बचाने के लिए लोगों को कैसे बताया जाए?
1: बच्चों ये बातें अनेक तरीकों से बताई जा सकती हैं।
0: वो कैसे?
1: जैसे टीवी रेडियो पर वनों के महत्व को बताकर, अखबारों में वनों के महत्व पर लेख लिखकर,
3: बिल्कुल,
1: और पोस्टर बैनर के जरिए वन बचाने का संदेश देकर।
0: अच्छा चाचा जी, वनों को बचाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है?
1: बच्चों पेड़ों को बचाने के लिए अनेक आंदोलन हुए हैं।
0: अच्छा।
1: वर्षों पहले उत्तराखंड के लोगों ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की। इसमें गांव के सभी लोगों ने पेड़ों से चिपक कर उन्हें कटने से बचाया।
2: देखा बच्चों?
0: हाँ दादाजी।
1: ठीक इसी प्रकार कर्नाटक के सिरसी जिले के सालकड़ी गांव के निकट एक जंगल में अप्पिको आंदोलन शुरू हुआ। वहाँ वन विभाग ने जब पेड़ काटने शुरू किए तो गांव के स्त्री पुरुष और बच्चे

0: चाचा जी।
1: जैसे बिना इजाजत पेड़ काटने वालों को जुर्माना और सजा भुगतनी पड़ती है।
0: अच्छा।
1: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वनों की कटाई पर नजर रखता है और इसके अलावा सरकार ने सामाजिक वानिकी नाम की एक योजना भी बनाई है जो अब कई जगह चल रही है। इस योजना के तहत लोगों को ये बताया गया है कि गांव के लोग खुद पेड़ लगाएं।
0: अच्छा।
1: और वन काटने के बजाय इन्हीं पेड़ों से अपनी जरूरतों को पूरा करें।
0: अच्छा।
1: और झूम खेती करने वालों के लिए सरकार ने एक स्थायी कृषि प्रणाली बनाई है ताकि लोग झूम खेती छोड़ दें।
0: अच्छा।
1: इन सब के अलावा जंगलों की रक्षा से संबंधित शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए हमारी सरकार ने अनेक शिक्षण संस्थान भी खोले हैं।
0: अच्छा।
1: जैसे वन अनुसंधान संस्थान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी।
0: चाचा जी।
1: हाँ बेटा।
0: फिर तो मैं अपने सारे दोस्तों को बताऊंगा कि वन कितने जरूरी हैं।
1: शाबाश।
0: हाँ, और मैं भी अपने हर एक जन्मदिन पर एक पेड़ लगाऊंगी और अपने सभी साथियों को भी पेड़ लगाने को कहूंगी।
1: बहुत अच्छे।
2: अरे वाह भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बगीचे में चलकर इसकी शुरुआत आज ही से करें।
0: चलो, चलो। मैं भी पेड़ लगाऊंगा। हाँ, मैं भी।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
1: दो गौरैया।
2: इस घर में हम तीन लोग रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। आंगन में आम का पेड़ है और तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। तोते, कौवे और गोरैयों से पेड़ आबाद रहता है। सुबह होते ही कबूतरों का गुटरगू संगीत सुनाई देने लगता है। अब एक दिन अचानक क्या हुआ कि दो गोरैया सीधी घर में घुस आई और बिना किसी से पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगी। मैंने पिताजी को आवाज लगाई, पिताजी देखिए ना, गोरैया घर में क्या ढूंढ रही हैं?
3: ये मकान का निरीक्षण कर रही हैं कि रहने योग्य है भी या नहीं।
2: अच्छा,
3: देखो देखो, कभी खिड़की पर बैठ रही हैं तो कभी रोशनदान पर।
2: हाँ, अरे हाँ पिताजी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
4: दो तीन दिन बाद क्या देखते हैं कि गोरैया के जोड़े ने बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में तिनके और घास फूस से घोंसला तैयार कर लिया है और मजे में चहचहा रही है। माँ और पिताजी सोफे पर बैठे उन्हें ताक रहे हैं।
3: अब ये देखो, इन्होंने तो डेरा ही जमा लिया, उड़ाना पड़ेगा इन्हें यहाँ से।
5: अब तो ये नहीं उड़ेंगी, इन्हें पहले उड़ाते थे तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ पर घोंसला बना लिया है।
3: अरे ऐसे कैसे नहीं उड़ेंगी, देखता हूँ यहाँ रहती कैसे हैं। गोरैया मेरे आगे चीज क्या है, मैं अभी निकाल कर बाहर करता हूँ।
5: छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को क्या निकालोगे।
3: ये बात है, देखो अभी कैसे उड़ाता हूँ। चल उड़ उड़ यहाँ से। इसमें हंसने की क्या बात है?
5: चिड़ियां एक दूसरे से पूछ रही हैं कि ये आदमी कौन है और ये नाच क्यों रहा है।
3: देखो मुझे गुस्सा ना दिलाओ, बस देखती जाओ।
5: ठीक है,
3: चल चल चल, हट हट।
5: ये अब नहीं निकलेंगी।
3: निकलेंगी कैसे नहीं, अभी डंडा लेकर आता हूँ।
4: मैं इस खेल का खूब मजा ले रहा था। पिताजी डंडा लेकर पंखा ठकोरते तो गोरैया उड़कर कभी पर्दे के डंडे पर जा बैठती तो कभी किचन के दरवाजे पर, उधर माँ को चिठोली सूझती।
5: तुम भी बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गोरैया को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो और बाकी सारे बंद करो, तभी ये निकलेंगे। हाँ
3: ठीक है ठीक है। अरे अब तू खड़ा क्या देख रहा है
2: जी,
3: जल्दी से दोनों दरवाजे बंद कर दे
2: जी,
3: वो सिर्फ किचन वाला दरवाजा खुला रख
2: जी। अच्छा पिताजी।
3: हट हट चल।
4: अब पिताजी लाठी उठाकर फिर गोरैया से लोहा लेने को लपके। एक बार तो लाठी माँ के सर पर लगते लगते बची।
5: अरे
3: अरे
5: क्या करते हो जी,
3: गलती से लग गया।
5: आराम से।
4: गोरैया चीची करती, कभी एक तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिरकार दोनों किचन की तरफ खुलने वाले दरवाजे से बाहर निकल गए।
5: वाह मजा आ गया, आखिर तुमने कर ही दिखाया।
4: माँ तालियां बजाने लगी और पिताजी लाठी दीवार के साथ टिकाकर छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे और दरवाजा बंद रखने का हुक्म दे डाला।
3: एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी अपने आप।
4: सभी इत्मीनान से बैठे ही थे कि पंखे के ऊपर से ची ची की आवाज सुनाई पड़ी। माँ खिलखिलाकर हंस दी।
3: अरे
5: वो देखो, फिर से आ गई घर में।
4: दोनों गोरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। गोरैया दरवाजे के नीचे की खाली जगह से फिर अंदर घुस आई थी। माँ की हंसी रुक नहीं रही थी और पिताजी का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ता जा रहा था।
5: अरे सुनो सुनो, देखो जी इन चिड़ियों को बाहर मत निकालो, अब तक तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे।
3: बाहर मत निकालो तो तो क्या मैं इन्हें कालीन बर्बाद करने दूं और खुद तमाशा देखता रहूं?
5: सुनो तो, रुक जाओ।
4: उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूस दिए और लाठी झुलाते हुए चिड़ियों पर टूट पड़े और उन्हें बाहर खदेड़ दिया।
3: गई।
4: दोनों पिछले आंगन के दीवार पर जा बैठी। दूसरे दिन रविवार की छुट्टी थी। हम लोग बैठक में आए तो देखते क्या है कि गोरैया फिर से पंखे पर बैठी मल्हार गा रही है। अब तो ये रोज का खेल हो गया।
6: मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, अभी सुन कर ये।
4: दिन में गोरैया बाहर निकाल दी जाती और रात होते ही वो न जाने कहां से अंदर आ जाती। पिताजी की सहनशीलता भी अब जवाब दे चुकी थी। वो लाठी और स्टूल उठा कर ले आए और घोंसला ही निकालने का फरमान सुना दिया। पहले प्रयास में दो तीन तिनके बाहर आ गिरे। माँ हंस दी।
5: तुम्हारे बस की नहीं है।
3: फिर कोशिश करता।
4: तभी मेरी नजर बाहर बैठी गोरैया पर पड़ी। वो कुछ कुछ दुबला गई थी और कुछ कुछ काले भी पड़ गई थी। अब वो पहले की तरह चहक भी नहीं रही थी।
3: क्या देखो?
4: घोंसला लाठी के साथ खिंचता चला आने लगा। सहसा चींची का शोर सुनाई दिया। पिताजी ठिठके। बाहर देखा तो दोनों गोरैया वहीं बैठी थी। फिर ये आवाज अंदर कैसे आई?
3: पिताजी देखो देखो देखो ऊपर देखो। माँ पिताजी
5: हाँ।
3: वो देखो गोरैया के छोटे छोटे बच्चे।
5: अरे हाँ बेटी।
4: अरे पिताजी चौंक कर स्टूल से उतरे। हम सभी आश्चर्यचकित से देख रहे थे। गोरैया के नन्हे नन्हे बच्चे चोंच खोले अपने आगमन की सूचना दे रहे थे। ची ची करते हुए मानो कह रहे हो कि हमारे माँ बाप कहाँ है, कहाँ है हमारे माँ बाप। माँ कुर्सी से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए।
5: ये लो, ये दरवाजा भी खोल दिया। आ जाओ गोरैया।
4: और तभी गोरैया झट से उठकर अंदर आ गई और ची ची करते अपने बच्चों से जा मिली।
3: अरे
4: वो उनकी नन्हे नन्हे चूचों में चुग्गा डाल रही थी। हम इस दृश्य को देखते ही रह गए। कमरा पक्षियों के कोलाहल से गुंजायमान था। अब पिताजी उनकी तरफ देख देख कर मुस्कुरा रहे थे।
3: सच में
7: छोटे और बड़े।
8: अरे छोटे बड़े।
9: जी दादाजी।
8: मैंने तुम्हारे लिए एक जगह बना दी है ताकि तुम यहाँ आराम से रह सको।
9: जी दादाजी।
8: यहाँ जगह भी अच्छी है और खाने को भी कितना कुछ है। जाओ बेटा अब तुम खेलो।
9: पंच पंच खेलेंगे।
8: हाँ जाओ बेटा
9: खेलेंगे।
10: ओ भाई छोटे।
11: हाँ भाई बड़े।
10: आज हम पार्टी करते हैं।
11: हाँ हाँ भाई क्यों नहीं, लेकिन पार्टी किस खुशी में?
10: हम यहाँ इतने दिनों से रह रहे हैं बिना किसी परेशानी के।
11: हाँ भाई बड़े ये तो तुमने सही कहा, यहाँ हमें कोई परेशानी नहीं। हमें तो यहाँ खाना भी कितना अच्छा मिलता है और हमारी तो रहने की जगह भी बढ़ती जा रही है।
10: सही कहा भाई तुमने, अब हम अपने और दोस्तों को भी यहाँ रहने के लिए बुला सकते हैं।
11: हाँ भाई बड़े मैं भी अपने सारे दोस्तों को बुला लूँगा।
10: सभी मिलजुल कर रहेंगे, रोज पार्टी करेंगे।
11: हाँ हाँ हम सब खेलेंगे और खूब पार्टी करेंगे।
12: इस तरह छोटे और बड़े वहाँ बड़े आराम से रहने लगे। क्या आप जानते हो वो छोटे और बड़े कौन थे और वो कहाँ रहने लगे? सोचो। सोचो सोचो। नहीं समझ आया तो चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ। वो छोटे और बड़े कोई और नहीं बल्कि चीनू के दांत में रहने वाले कीटाणु थे और चीनू चॉकलेट खाकर बिना ब्रश किए जो सो गई थी। इसलिए आज छोटे और बड़े अपने और दोस्तों के साथ पार्टी मना रहे थे।

0: सब तो चॉकलेट और मिठाई मिली, बहुत स्वादिष्ट है।
1: छोटे?
2: हाँ भाई बड़े।
1: चलो और कुरेदते हैं दांतों में।
2: हाँ लगता है कुछ और खाने को मिले।
3: कीटाणुओं के शोर करने से चीनू के दांत में दर्द हो जाता है और उसकी नींद टूट जाती है, और वो इसकी शिकायत अपनी मम्मी से जाकर करती है।
4: आ, आ, आ, मम्मा मेरे दांत में बहुत तेज दर्द हो रहा है।
5: क्या दांत में दर्द? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ना रोजाना ब्रश किया करो।
4: मम्मा मैं तो रोज ब्रश करती हूँ।
5: तुम सिर्फ सुबह ब्रश करती हो ना, रात को तुमने चॉकलेट खाई थी तब क्या था ब्रश?
4: नहीं मम्मी।
5: देखा अब दिखाओ जरा कहाँ हो रहा है दर्द? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ तुम्हें। परेशान मत हो, दर्द ठीक हो जाएगा, बस जल्दी से ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा।
3: चीनू की माँ और चीनू डॉक्टर के पास जाते हैं।
5: नमस्ते डॉक्टर साहब।
6: अरे नमस्ते नमस्ते कमला जी, आइए आइए।
5: देखिए ना डॉक्टर साहब, इसके दांत में दर्द हो गया है।
6: बस बस घबराओ मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। नाम क्या है तुम्हारा?
4: चीनू।
6: चीनू, लगता है चीनी ज्यादा खाती हो हैं? कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। अच्छा मुँह खोलो मुँह खोलो। हाँ थोड़ा सा और। एक सेकंड बस, ये लो इस पे दवा लगा देता हूँ। हाँ इसे खा के कुल्ला करो बस। अब कुछ दर्द कम हुआ बेटा? हुआ ना? हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। देखो बेटा ये जो तुम्हारा दर्द है ना, ये कीटाणु की वजह से है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कीड़ा लगना कहते हैं। और ये इसलिए लगता है क्योंकि आप समय से दो बार ब्रश नहीं करते होंगे, क्यों है ना कमला जी?
5: जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
6: देखो बेटा कभी भी लापरवाही मत करना, क्योंकि दांत जो है हमारी सुंदरता का प्रतीक है ना, कितने अच्छे लगते हैं दांत। तो इसीलिए हमेशा दो बार, एक तो हमें सोकर उठने के बाद ब्रश करना चाहिए, और उसके बाद सोने से पहले यानी रात को भी ब्रश करना चाहिए। और हमें कैसे करना चाहिए, सही तरीका क्या पता है? ऊपर नीचे ब्रश को ऊपर नीचे करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि खाने का कोई भी अंश दांतों में फंसा ना रह जाए, समझे? और हाँ समय समय पर डॉक्टर से दांतों की जांच भी करवानी चाहिए। कमला जी आगे से आप भी ध्यान रखिएगा।
5: जी बिल्कुल।
6: है ना
4: डॉक्टर साहब, क्या मैं कभी चॉकलेट नहीं खा सकती? कभी नहीं मीठा खाऊंगी मैं।
5: डॉक्टर साहब इसको मीठा बहुत पसंद है, ये मीठा के बगैर नहीं रह सकती।
6: समझ गया। देखो बेटा ऐसी बात नहीं है कि तुम मीठा नहीं खा सकती, तुम मीठा बिल्कुल खा सकती हो, चॉकलेट भी खा सकती हो, मिठाई भी खा सकती हो, लेकिन हाँ खाने के बाद हमेशा कुल्ला करना और दांत अच्छे से साफ करके सोना, जैसे मैंने बताया दो बार ब्रश। समझ गए ना? और एक बात और, अगली बार जब आओगी ना तो हमारे लिए भी चॉकलेट लेकर आओगी? लाओगी चॉकलेट? ये हुई ना बात। शाबाश, जाओ शाबाश।
3: ये सारी बातें सुनकर चीनू के दांत के कीटाणु परेशान हो जाते हैं और आपस में बातें करते हैं।
0: अरे भाई छोटे।
4: हाँ भाई बड़े।
0: आप तो हमारे आराम के दिन गए।
4: हाँ
0: हम तो अब भूखे ही रह जाएंगे।
4: हाँ, चलो दादाजी से चलकर।
0: हाँ चलो चलो दादाजी। दादाजी भूख लगी है, बहुत भूख लगी है।
4: भूख लगी है।
7: हाँ बेटा मैं समझता हूँ। बेटा ये जगह अब बिल्कुल साफ सुथरी हो गई है और यहाँ खाने को भी अब कुछ नहीं रहा। चलो हम किसी और दांत में चलकर वहां जगह बनाते हैं। चलो
0: चलो
7: आओ।
0: चलो चलो
4: चलो
3: चलो। इस तरह सारे कीटाणु चीनू का दांत छोड़कर नए घर की तलाश में निकल जाते हैं। चीनू भी अब रोज रात को ब्रश किए बिना नहीं सोती। बच्चों, अगर आप नहीं चाहते जो कीटाणु अभी अभी बेघर हुए हैं वो आपके दांत में आकर अपना घर बना लें, तो आप भी चीनू की तरह रोज रात को ब्रश करने की आदत डाल लें।

0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं झाबुआ की आवाज पर रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, आप ही के रेडियो साथी आरजे राकेश के साथ। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे फाइलेरिया रोग के बारे में। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हाथी पांव बीमारी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं फाइलेरिया बीमारी के बारे में विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी।
0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
2: हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है फाइलेरिया। फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जिसके संक्रमण होने के बाद उसके लक्षणों का पता कभी कभी 10 से 12 वर्षों में चलता है। इस बीमारी से बचाव ही इसका इलाज है। और वो आसान सा बचाव क्या है? साल में एक बार खाई जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की गोली। और इस विषय पर हमें आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आई हुई हैं डॉक्टर सारिका सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब तकनीकी सलाहकार हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से। और डॉक्टर साहब, हम फाइलेरिया विषय पर बात कर रहे हैं तो हम चाहेंगे सबसे पहले आपको बताएं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति फाइलेरिया से संक्रमित है।
3: जी, फाइलेरिया रोग जो है वह परजीवी कृमि से होता के फैलने से होता है। इसके जो मुख्यतः लक्षण होते हैं वह शरीर में, मनुष्य के शरीर में, शरीर के कुछ अंगों में जैसे कि पैर है, हाथ है, उनके अंडकोश हैं, उसमें सूजन आने लगती है। वह सूजन इस प्रकार होती है कि हाथी के पाँव के समान लगती है, इसलिए उसको हाथी पाँव भी कहा जाता है। इसमें शरीर में लालपन भी आ जाता है, इसमें फीवर आ जाता है, बुखार आता है और त्वचा भी निकलने लगती है शरीर से।
2: जी, तो ये सारे तमाम सारे लक्षण हैं और जैसा कि आपने बताया इसे बोलचाल की भाषा में हाथी पाव भी कहते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया रोग कैसे होता है और उसके बाद ये फैलता कैसे है।
3: जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह परजीवी कृमि से होता है। जो फाइलेरिया के कीटाणु हैं वह संक्रमित मनुष्य को, अगर कोई मच्छर क्यूलेक्स होता है, अगर काटता है तो वह उसको संक्रमित करता है। फिर उस संक्रमित मच्छर अगर फिर से वह किसी मनुष्य को काटता है तो वह उनको संक्रमित करता है। इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है।
2: यानी कि आपके कहने के आधार पे क्यूलेक्स नाम का जो मच्छर है वो इस बीमारी का वाहक है। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि जो विसंगतियां हमारे शरीर में आ जाती हैं फाइलेरिया रोग की वजह से, हाथों पैरों में या शरीर के किसी अंग में सूजन, क्या वो कभी ठीक हो पाती हैं?
3: एक बार जब विसंगति आ जाती है, जैसे कि शरीर में सूजन आ जाती है हाथ या पैर हो, तो वह पूरी तरीके से नहीं सही हो सकती है। इसलिए इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है।
2: जी जी जी, जान लेना चाहिए कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली इस उन्मूलन अभियान में खिलाई जाती है उसका जरूर सेवन करें। और जी बताइए
3: आकांक्षा जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये अभी जड़ से नहीं खत्म कर सकते हैं, इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है। तो इसको, लेकिन अगर ये एक बार फाइलेरिया ये हो गया है किसी को, तो वह चिकित्सा परामर्श लेके इसके लिए हमारे पास दवाइयां उपलब्ध हैं सरकारी अस्पताल में, उनसे वो चिकित्सा उपचार लेके वह दवाइयां खा सकते हैं। साथ में ये हमारी सरकार जो है यहाँ पे हाइड्रोसिल के ऑपरेशंस भी होते हैं जिनसे कि वह दूरी दूर होता है उससे।
2: जी डॉक्टर साहब, फाइलेरिया उन्मूलन का जो अभियान चलाया जाता है हमारे प्रदेश में, हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कब से कब तक चलाया जाता है और इसके अंतर्गत जो गोली खिलाई जाती है क्या वो किसी एक निश्चित स्थान पर खिलाई जाती है?
3: हमारा जो ये फाइलेरिया अभियान होता है, उन्मूलन अभियान होता है, इसको मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश में यह दो चरणों में चलता है, एक फरवरी में और एक नवंबर में। ये दो तो हमारे खत्म हो चुके हैं लेकिन अगले वर्ष फिर से यह शुरू होगा। इसमें स्वास्थ्य कर्मी सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर फाइलेरिया की गोली निःशुल्क देते हैं और अपने सामने खिलाते हैं। यह एक साथ खिलाया जाता है, सार्वजनिक रूप से खिलाया जाता है, इसलिए इसका उन्मूलन के लिए यही प्रयास है।
2: जी बिल्कुल, और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि जब भी उनके घर पे उन्मूलन के लिए गोलियां खिलाने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे वो इस गोली का सेवन जरूर करें। डॉक्टर साहब के मन में जरूर एक बात आ रही होगी कि यदि किसी को बुखार है या कोई और छोटी मोटी सीजनल परेशानियां चल रही हैं तो क्या तब भी वो इस गोली का सेवन कर सकते हैं?
3: जी, ये दो वर्ष से कम बच्चों को नहीं दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया जाता है और अगर वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त ग्रसित हैं तो उनको नहीं दिया जाता है। बाकी ये सभी प्रकार के व्यक्ति खाना चाहिए, सभी उम्र के व्यक्तियों को खाना चाहिए।
4: जी मेरा प्रश्न ये है कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली है ये क्या फाइलेरिया ग्रसित व्यक्ति ही खा सकता है या स्वस्थ व्यक्ति को भी खानी चाहिए?
2: जी बताइए डॉक्टर।
3: ये संक्रमित और असंक्रमित दोनों प्रकार के व्यक्ति खा सकते हैं और इनको साल भर में एक बार अवश्य सेवन करना चाहिए।
2: जी डॉक्टर साहब की तरफ से ये भी हमारे कार्यक्रम की तरफ से आपको जरूर जाननी चाहिए कि यदि फाइलेरिया हो चुका है तो दवाओं के माध्यम से इसे उसी स्टेज पर रोका जा सकता है, इसलिए बचाव की खोली खानी जरूरी है आप सभी के लिए। और डॉक्टर साहब इसी के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या फाइलेरिया से बचाव की गोली जब भी हमें किसी को संक्रमित व्यक्ति है वो भी खा ले या सिर्फ जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वही खाएं, दोनों के लिए कितनी फायदेमंद है ये?
3: ये दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर कोई संक्रमित है इससे तो वह उसी स्थान पे उसको दूरगामी प्रभावों से रोका जा सकता है, और इसको नहीं है उसको उसके बचाव के लिए ये उपाय है हमारे लिए,
2: तो दोनों को ही खानी चाहिए।
3: और अगर किसी को गंभीर बीमारी है, अगर उनको कोई भी शक है कि हम ये खाएं या ना खाएं, तो वह हमारे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाके वहां पे उनके चिकित्सा उपचार ले सकते हैं और उनसे परामर्श ले सकते हैं,
2: अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।
3: जी
2: और डॉक्टर साहब एक
5: क्या फाइलेरिया की
2: बार
5: खा लेने से साल में पूरे साल इससे बचा जा सकता है?
3: जी नितिन जी, एक बार अगर आप सेवन इसका कर लीजिए तो इनके दूरगामी प्रभावों से बचा जा सकता है।
2: आज हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया विषय पर और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तकनीकी सलाहकार डॉक्टर सारिका सिंह जी। और डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो उन्मूलन का अभियान है इसमें जन सामान्य से किस तरह के सहयोग की अपेक्षा हम कर सकते हैं?
3: ये जब अभियान चलता है हम सभी यही बोलेंगे कि आप कृपया उनका सेवन अवश्य करें, जब हमारे स्वास्थ्यकर्मी उनके घर जाते हैं तो उनका सहयोग उनमें सहयोग प्रदान करें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें, इसका सेवन करना बहुत आवश्यक है जिससे हम इनका उन्मूलन कर सकें।
2: जी और डॉक्टर साहब एक चीज और बहुत जरूरी जानकारी है जो इससे रिलेटेड हमारे दर्शकों को जरूर मिलनी चाहिए कि क्या फाइलेरिया रोग किसी खास वातावरण, मौसम या उम्र में ही होता है?
3: नहीं, इसके फाइलेरिया के जो कीटाणु है वह किसी उम्र या वातावरण से संबंधित नहीं है, या किसी भी समय और किसी भी मौसम में हो सकता है और किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। यह विशेषता इसके जो कीटाणु है वह शरीर में जो रक्त प्रवाह है उसमें वह रात में 10 बजे से लेके 2 बजे तक ज्यादा परिलक्षित होते हैं।
2: अच्छा।
3: तो जब किसी का कोई भी अगर किसी को जांच करानी होती है तो वह उनका जो ब्लड का सैंपल है वह रात में ही लिया जाता है।
2: अच्छा। जी जी, रात के 10 बजे से 2 बजे तक जब आ जाता
3: वह सबसे ज्यादा दिखते हैं। जी
5: जी, और मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि क्या फाइलेरिया की कोई होम्योपैथिक दवा भी है?
2: जी बताइए।
3: इसके लिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि आप अपने निकट के चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए और वहां पे आप चिकित्सकीय सलाह लीजिए।
2: जी
1: श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने फाइलेरिया रोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त किया। श्रोताओं, हमने जाना है फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें हमारे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहिए और इसकी गोली को अवश्य खाना चाहिए। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज़ पर।
0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
6: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टंट्या भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टंट्या भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
7: किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। जैसा कि आप जानते हैं, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM चाबुआ की आवाज आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक पहुंचाता आया है। किसान साथियों,
6: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टंट्या भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे
7: हमरता रेजो टांटिया भिलनो रेडियो स्टेशन 90.8 FM। खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम जानते हैं हमारी कृषि से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को। इसमें ना केवल हम फसलों को लेकर बल्कि हमारी मृदा परीक्षण से लेकर हमारी फसल बीमा योजना और हमारी खेती बाड़ी में आने वाले नए बदलावों को, हमारी समस्याओं को और आदि अन्य जानकारियों को भी हम कोशिश करते हैं कि आप तक पहुंचाया जा सके। किसान साथियों, साथ ही आप किसान साथियों का भी हमारे पास कॉल आते रहे हैं और आपकी खेती बाड़ी से जुड़ी हुई समस्याओं को आप अब तक हम तक पहुंचाते आए हैं। तो किसान साथियों, हमारा अब तक यही प्रयास रहा है कि हम आपकी खेती बाड़ी की जो समस्याएं हैं उनके निदान के लिए हम अच्छा सा अच्छा एक्सपर्ट तलाश करके लाएं और आप तक आपकी समस्याओं को उनके सामने रखें और आप तक उन एक्सपर्ट को आप तक पहुंचा सकें और आप उन्हें उस एक्सपर्ट से आप अपनी राय ले सकें।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
7: किसान साथियों, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को।

0: आज का हमारा विषय है कृषि शिक्षा एवं स्वरोजगार, और इसके साथ ही हम बात करेंगे खरीफ मौसम में प्याज की खेती के बारे में। इन दोनों विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट रहेंगे, और अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर्स पर कॉल करके अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। दो टोल फ्री नंबर आप नोट कर लें, 1800-113-060, दूसरा नंबर है 1800-113-061 टोल फ्री, यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो सोचना क्या है, फोन उठाएं और इन दोनों ही विषय से जुड़े हुए अगर आपकी कोई आशंका है, कोई सवाल है, कोई जानकारी है जो आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें। जैसा कि हमने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि दो एक्सपर्ट्स हमारे साथ स्टूडियो में रहेंगे इन सवालों के जवाब देने के लिए और विषय पर और विस्तार से चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें हमारे साथ डॉक्टर एस के यादव जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर यादव कार्यक्रम में। आप प्रोफेसर हैं कृषि विद्यापीठ इग्नू में, बहुत बहुत स्वागत है सर एक बार फिर से आपका। आप हमें बताएंगे कृषि शिक्षा एवं स्वरोजगार के बारे में, किस तरीके से जो हमारे युवा हैं जो कृषि क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं उन्हें न सिर्फ सही जानकारी मिले और इसके अलावा स्वरोजगार कैसे इससे सृजन हो सकता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और हमारे दूसरे जो मेहमान हैं डॉक्टर रजनीश मिश्रा जी हैं। डॉक्टर मिश्रा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप उप निदेशक हैं राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान नई दिल्ली में, और आपसे हम प्याज के बारे में समझेंगे कि प्याज की बुआई किस तरीके से करें, प्रजातियों का चुनाव कैसे करें, और इसके साथ साथ कौन कौन से अन्य कृषि क्रियाएं हैं जिसका ध्यान अगर हमारे किसान रखें तो अच्छी फसल, अच्छी प्याज उन्हें प्राप्त हो सकती है, उन्हें मिल सकती है। तो पूरा कार्यक्रम बहुत ध्यान से देखें और तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाना ही हमारा मकसद है, ताकि हमारे किसान जागरूक हों और इन नई जानकारियों के आधार पर आगे बढ़ें और ज्यादा प्रोग्रेस करें, विकास करें। चलिए अब हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर यादव, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कृषि शिक्षा के बारे में, देखिए अब हम हाल फिलहाल में ट्रेंड भी देख रहे हैं, पिछले दो सालों में हमने देखा है जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर कृषि शिक्षा को लेकर काफी क्रेज है, युवा में काफी इसको लेकर हम देख रहे हैं कि एक तरीके से रुझान दिखाई दे रहा है और एडमिशन्स भी बढ़े हैं कृषि शिक्षा में, ऐसे कोर्सेज में ले रहे हैं किसान जो युवा हैं। क्या वजह लगती है इसके पीछे और क्यों आज के समय बहुत महत्वपूर्ण हो गया है?
1: कृषि एक ऐसा विषय रहा है खासकर इस देश के लिए, जहां पर जो है सदियों से हमारा देश इसी एक माध्यम के द्वारा जाना जाता रहा है।
0: बिल्कुल,
1: आज भी भारत को हम कृषि प्रधान देश कहते हैं, करीब करीब 58-60% लोग जो है देश के कृषि पर निर्भर हैं। तो कहीं न कहीं कृषि शिक्षा का महत्व भी इसी से हम कोरिलेट करते हैं कि आज भी जो हमारे युवा हैं या जो ऐसे किसान भाई हैं जो कहीं पर अपने आप को नहीं रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो कृषि में उनको बहुत सी संभावनाएं मिल रही हैं। पिछले 2-4 सालों में जब हमने देखा कि कोरोना का पीरियड और इससे संबंधित कृषि ही एक ऐसा व्यवसाय रहा है जो कई लोगों को रोजगार भी दिया और सबसे बड़ी बात है लोगों को खाद्यान्न भी मिलते रहे,
0: और अलाइड सेक्टर जो थे उसमें भी हमने देखा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है,
1: खास करके एनिमल हस्बेंड्री जिसमें डेयरी पार्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, और साथ ही साथ अब तो नई नई तकनीक का प्रयोग करके एक नए नए आयाम का जो है वो विकास हो रहा है जिसमें शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है और करेगी भी, क्योंकि आगे आने वाले समय में जब हम देखेंगे तो जितनी भी तकनीक है, चाहे वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन तकनीक हो या कोई डिजिटल तकनीक हो, उसका जो माध्यम जो है वो हमारी कृषि शिक्षा को और ज्यादा मजबूती से लोगों के समक्ष रखने में सक्षम है।
0: जी जी,
1: तो इसी संबंध में ही ये बातें निकल के आती हैं कि कहीं न कहीं लोगों का एक बार फिर रुझान इस कृषि शिक्षा के माध्यम से कृषि की तरफ बढ़ने का प्रयास दिख रहा है, और इसमें शिक्षा का जो रोल है, जो शिक्षा का जो दायित्व तो है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा आगे समय में।
0: और जैसे कि हम कहते भी हैं कि आज की जो कृषि है, जो आज की खेती है वो आधुनिक खेती है, नए दौर की खेती है, लेकिन ये सब संभव कैसे हो पाएगा जब तक ऐसे युवा सामने नहीं आएंगे, पढ़े लिखे युवा जो इस क्षेत्र इसी सेक्टर में इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हैं, नई जानकारियां ताकि वो किसानों तक, यानी जो हम अक्सर कहते हैं कि लैब टू लैंड वाली बात, तो ये तभी संभव हो सकता है जब हम इस क्षेत्र में और ज्यादा फोकस करेंगे और हमारे युवा इससे जुड़ेंगे। आइए देखते हैं जुड़ी रिपोर्ट।
2: किसान साथियों, चलिए जानते हैं कि कृषि शिक्षा की क्यों जरूरत है और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ रही है। साथ ही हम जानेंगे इससे हमें क्या फायदा हो सकता है और क्या कृषि शिक्षा लेने से हमारे आने वाले भविष्य में कुछ बदलाव देखे जा सकते हैं, कैसे हमें कृषि शिक्षा हमारी खेती में किस तरीके से मददगार हो सकती है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को और जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को।
3: है झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: है झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: हमारे देश में आबादी का एक बड़ा हिस्सा प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है। ऐसे में कृषि शिक्षा को बढ़ावा देना जरूरी है। कृषि में उच्च शिक्षा और स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं। कृषि शिक्षा से युवा सशक्त तो बनेंगे ही, साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इस समय देश में करीब 99 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और 66 कृषि विश्वविद्यालय हैं, जिनसे शिक्षा लेकर युवा खुद को स्वरोजगार के लिए तैयार कर रहे हैं। कृषि शिक्षा पाकर युवा अनाज, फल, सब्जियों, दूध से बने उत्पादों, नकदी फसलों, मछली पालन, मुर्गी पालन और मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में स्वरोजगार पैदा कर सकते हैं। युवाओं को कृषि और कृषि शिक्षा की ओर आकर्षित करने के लिए सरकार भी उनकी मदद कर रही है। सरकार ने भी देश के युवाओं और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, स्वरोजगार से जोड़ने के लिए और कृषि में उनकी रुचि को बढ़ाने के लिए काफी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। देश में स्किल इंडिया के साथ ही स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम पहले से ही चल रहे हैं। डेयरी क्षेत्र के विस्तार के लिए गांव के युवा अपने अपने आइडिया को लेकर आगे आए हैं। कृषि में नई नई तकनीकों के विकास के कारण अब युवा भी कृषि में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इस बार के बजट में भी कृषि शिक्षा को लेकर घोषणा की गई है। कृषि विश्वविद्यालयों को बढ़ावा देने की बात बजट में कही गई। साथ ही विश्वविद्यालयों में कृषि पाठ्यक्रमों में बदलाव भी किया जाएगा। इससे छात्रों को आधुनिक खेती के बारे में बेहतर तरीके से अध्ययन करने में मदद मिलेगी। कृषि शिक्षा के विकास और विस्तार से न सिर्फ कृषि के क्षेत्र में नई नई तकनीकों और कृषि कार्यों को लेकर नए नए शोध होंगे, बल्कि देश के युवा की खेती में दिलचस्पी भी बढ़ेगी।
2: तो अभी आपने कृषि शिक्षा और स्वरोजगार पर हमारी रिपोर्ट देखी, जिसमें हमने बहुत सारी आपको बातें बताई। लेकिन अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, किसी विशेष कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, किसी ऐसी फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं जिसकी जानकारी आपको नहीं मिल पा रही है, तो हमारे साथ मेहमान है, जरूर अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। आपके सवालों का हम इंतजार रहेगा। अब बात करते हैं हमारे दूसरे मेहमान जो है डॉक्टर रजनीश सर। अब आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि हम प्याज की बात कर रहे हैं, तो अभी प्याज की स्थिति क्या है, किस तरीके से बुआई करें, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा देश है, कहीं कुछ क्रियाएं चलती है कहीं कुछ, तो अभी की स्थिति क्या है प्याज के हिसाब से?
3: बिल्कुल, दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में जून में बुवाई हो गई थी, उनकी नर्सरी लगभग एक महीने से पुरानी हो चुकी है, उनके लिए क्रियाएं दूसरी होंगी।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: उत्तर भारत में अभी बुवाई शुरू हो रही है, तो दोनों में अलग अलग है। जिन लोगों को अभी बुवाई करना है, तो उनके लिए सबसे पहले अच्छी प्रजातियों का चयन करना है, ऐसी प्रजातियां हो जो आपको भरपूर लाभ देती हो, और आपको उनके बीज जो खरीदना है वो हमेशा सरकारी संस्थाओं से और प्रमाणित विक्रय केंद्रों से ही बीज लेना है। बीज खरीदते समय ध्यान रखना है कि रसीद लेना ना भूलें, क्योंकि ये रसीद आपका अधिकार है। तो प्रजातियों के चयन के विषय में मैं बताना चाहूंगा आपको कि हमारे देश में भारत सरकार के द्वारा और राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के द्वारा, नई दिल्ली के द्वारा, प्रजाति की खरीफ मौसम के लिए उपयुक्त वैरायटियां विकसित की गई हैं, जिसमें एग्रीफाउंड डार्क रेड और L883 दो प्रजातियां हैं। ये पूरे देश में आप इसको लगा सकते हैं, बुवाई कर सकते हैं, और इनकी पैदावार आपको बहुत अच्छी मिलती है। अब ध्यान क्या रखना है, आपने प्रजाति का चयन कर लिया, अब भूमि का चयन है। भूमि का चयन सावधानी से करना है, ऐसा भूमि हमें चुनना है जो बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए। उसके साथ साथ उसमें अच्छा जल निकास होना चाहिए, क्योंकि खरीफ के मौसम में होता क्या, बारिश ज्यादा होती है, तो पानी रुकना नहीं चाहिए, बारिश होने के बाद पानी निकल जाने, यानी कि अच्छा जल निकास होना बहुत जरूरी है।
2: जी बिल्कुल, और देखिए ये क्योंकि बलुई दोमट मिट्टी होती है, तो ऐसे में जल निकासी की व्यवस्था भी जरूरी होनी चाहिए। और ये अगर हम प्याज की बात करें तो काफी सेंसिटिव भी रहती है, अगर ज्यादा पानी रुक गया तो फसल खराब हो जाती है, तो इसलिए इस बारे में विशेष तौर पर हमें डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको जल निकासी की व्यवस्था करनी, क्योंकि अभी बुआई का समय है और कि बहुत सारे क्षेत्रों में अभी बारिश हो रही है और अभी होगी भी, तो किस तरह की व्यवस्था करें आप अपने स्तर पर, बुआई को लेकर कौन सी विशेष बातें हैं, तमाम बातों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट।
1: फसल की बुआई लिए
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: इसके कंद मध्यम आकार के चपटे गोल और लाल रंग के होते हैं। फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 3 से 4 निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10 से 12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। बुआई और रोपाई के बाद फसल का कीटों और रोगों से बचाव करें। कीटों और रोगों का ज्यादा प्रकोप होने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव कर सकते हैं।
1: तो प्याज पर अभी आपने रिपोर्ट देखी और हमने आपको भी बताया कि बीज दर क्या होना चाहिए, पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौध से पौध की दूरी क्या होनी चाहिए, सभी बातें हमने आपको बताई। इस पर हम और विस्तार से भी हम चर्चा करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं डॉक्टर यादव, जैसे कि हम बता रहे हैं हमने कार्यक्रम की शुरुआत में की कि भाई जब हम ये सोच रहे हैं और हमारा जब ये विजन है कि हमें आधुनिक कृषि को बढ़ावा देना है और अगर हमें किसानों की आय में वृद्धि करनी है तो एकमात्र फॉर्मूला यही है कि आज के दौर की जो कृषि है, जो आधुनिक कृषि वैज्ञानिक तरीके हैं, उन्हें किसान अपनाए ताकि लागत कम लगे, श्रम कम लगे और मुनाफा ज्यादा
2: हो और नए नए आयाम निकल।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो अब बताएं कि कृषि और शिक्षा और स्वरोजगार की हम बात कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में किस तरह का संबंध है?
2: जी देखिए, जो कृषि शिक्षा रही है हमारे देश में, अगर पुराने समय की भी बात करें तो हमेशा इसमें स्किल बिल्डिंग की बात कही गई है। इसमें ये कहा गया है कि अगर आप शिक्षा लेते हैं तो आपको खेत में काम करके ही शिक्षा लेनी है। तो जब आपकी स्किल बिल्डिंग की हम बात करते हैं या आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जो चूंकि खेती एक ऐसी चीज है जो केवल और केवल आपके श्रम पर नहीं निर्भर करती है, इसमें जलवायु का बहुत महत्वपूर्ण जो है वो रोल होता है, इसलिए आपको पूरे के पूरा तंत्र समझने की बात होती है और जब जहां पर जो क्रियाएं करनी चाहिए उन क्रियाओं के बारे में आपको कौशल विकास करना पड़ता है। कृषि शिक्षा के माध्यम से खेती में हमेशा एक आमूलचूल परिवर्तन देखा गया है, क्योंकि समय के हिसाब से, मौसम के हिसाब से जब भी खेती में बदलाव आता है उसमें कहीं ना कहीं एक अलग कौशल का जो है वो जन्म होता है और उस कौशल को हमारे वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया जाता है और उसी विकास को, जिसको हम तकनीक के रूप में कहते हैं, तकनीक को पुनः उसको खेतों को, किसानों को खेतों में दिया जाता है, जिसमें यदि आप समय रहते हुए ट्रेन होते हैं तो आप खेती को आगे बढ़ाते हैं। और ऐसा देखा गया है कि खेती में जो परिवर्तन आए हैं उसमें कहीं ना कहीं कृषि शिक्षा का बहुत बड़ा जो है रोल रहा है
1: जी।
2: लेकिन समय के हिसाब से जैसे मैंने बताया, जब आप खेती को एक प्रोफेशन के रूप में लेते हैं जिसमें सरकार का बहुत ज्यादा सहयोग होता है तो कहीं न कहीं परिवर्तन और ज्यादा बड़े विराट रूप में दिखता है। और उसी का जो आजकल हमारे यहाँ जो खेती में या किसानी में लोगों की रुचि हो रही है, अभी तो बहुत ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं बहुत ज्यादा रुचि है, लेकिन जो भी रुचि आ रही है एक खास करके नौजवानों के द्वारा, इसमें स्टार्टअप्स लोग शुरू कर रहे हैं, उसके माध्यम से कृषि शिक्षा में एक नया दौर का जो है वो आगमन हो चुका है।
1: जी,
2: और
1: जी,
2: उसके लिए हमें पर में सबसे ज्यादा सहायता होता है, क्योंकि ऐसा देखिए है कि जब आपके अंदर कौशल का विकास होगा तो आप सोचेंगे कि हमें किस क्षेत्र में क्या करना है। और देखिए हमेशा ये बात हमारे जितने भी दर्शक महोदय हैं उनसे हमारा निवेदन है कि कृषि शिक्षा में आप दाखिला लीजिए और ऐसा एक व्यवसाय सोच के लीजिए जो आपके क्षेत्र में प्रचलित है या आप जिसको कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसे बड़े सोच करके और कुछ ऐसा करें जिसमें आपका शिक्षा कहीं ना कहीं उतना प्रयोग न हो पावे जितना कि यदि आप ऐसी शिक्षा लें, ऐसे ऐसे क्षेत्र को टारगेट करें या ऐसे व्यवसाय को टारगेट करके अगर शिक्षा लेते हैं, क्योंकि आजकल तो शिक्षा जो है बहुत ही ज्यादा डाइवर्स हो गई है, बहुत ज्यादा जो है वो आपके पास
1: आयाम
2: हो गए हैं, बहुत ज्यादा आपके पास संभावनाएं का भंडार पड़ा हुआ है। समस्या है कि आपको अपने स्तर पे चुनना है, सही तरीके को चुनना है, सही व्यवसाय को चुनना है और उससे संबंधित शिक्षा को प्राप्त करना है
1: जी।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो, आपकी बातें।

0: जी हाँ किसान साथियों, जैसा कि आपने अभी सुना, हमारी शिक्षा में शिक्षा इतने सारे शिक्षा के आयाम है, आप कहीं पर भी जा सकते हैं, कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत इतनी है कि आपको अपनी रुचि के अनुसार, आपके व्यवसाय के अनुसार आपको अपनी शिक्षा को चुनना है और उसी में ही अपने हमको प्रगति करनी है, उसी शिक्षा को ग्रहण करके उसी में हमें आगे बढ़ना है।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
2: आपका सवाल मिल गया है, मौसम के हिसाब से प्याज की खेती कैसे करें? बिल्कुल, ये खरीफ का मौसम है, इसलिए हमें वो प्रजातियां चुननी है, पहले बताया है, जैसे जो खरीफ में ही लगती हैं, ठीक है, तो उन प्रजातियों का चयन करना है। और भूमि का चयन करते समय हमें याद रखना है कि हमारी जो खेत है वो थोड़ा उठा हुआ होना चाहिए। अब जैसे भूमि की तैयारी के लिए आपको बताया गया था कि खेत क्या है, बलुई मिट्टी होनी चाहिए, दूसरा क्या, अच्छा जल निकास होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, खेत को समतल करते हैं जिससे कि पानी रुकना नहीं चाहिए, पानी निकल जाए, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, क्यारियां बनाना है। क्यारियां कैसे बनाएंगे, जमीन से 15 सेंटीमीटर उठा के क्यारी बनाएंगे। एक क्यारी जो है वो 60 सेंटीमीटर चौड़ी होगी और उसकी लंबाई कितना होगी, 3 मीटर होगी, ठीक है ना। इस तरह की 100 क्यारियों की जरूरत पड़ती है एक हेक्टेयर की नर्सरी बनाने के लिए, ठीक है। इस तरह आप नर्सरी के लिए क्यारी बनाएंगे और बीज डालने से पहले आपको क्या ध्यान रखना है, उस बीज को उपचारित करना है। वैसे तो बीज सभी उपचारित आते हैं, लेकिन फिर भी आपको बीज को उपचारित करना है। उपचारित कैसे करेंगे, आपको थायरम लेना है, थायरम रसायन है, दुकानों पे मिल जाता है, उससे आप बीज उपचारित कर सकते हैं। आप ट्राइकोडर्मा से भी बीज उपचारित कर सकते हैं। अगर आप जैविक खेती में जा रहे हैं तो जैविक खेती में भी बहुत से आपके पास साधन है, उनसे बीज उपचार कर सकते। बीज को उपचार करना उतना ही जरूरी है जितना कि टीकाकरण किया जाता है बच्चों के लिए, तो बीज उपचार जरूर करें। उसके बाद आपको बुवाई करनी है। बुवाई कैसे करनी है, आपको उठी हुई क्यारी बनानी, जैसे मैंने कहा था 10 से 15 सेंटीमीटर उठा के बनानी है क्यारी, और उसमें मिट्टी को भुरभुरी कर लेना है और 2 किलोग्राम गोबर की खाद सड़ी हुई उसको महीन कर लें, पाउडर बना लें और उसको क्यारी में मिलाना है, ठीक है। इस तरह आप करेंगे, क्यारी बना लीजिए। उसके बाद आपको जो बीज डालना है वो हमें पंक्तियों में डालना है, यानी कि नालियों में डालना है। एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी कितना रहेगा, आपको 5 सेंटीमीटर रहेगा। और बीज बोते समय ध्यान रखना है, बीज 1.5 सेंटीमीटर से ज्यादा आपको गहरा नहीं करना है। ज्यादा गहरा होने पे बीज देर में जमता है और कभी कभी नहीं भी जमता है, ये बातें ध्यान रखनी है। बुवाई के बाद आपको क्या करना है, पानी लगाना है। पानी लगाने से, सिंचाई करने से पहले आपको क्या करना है, आपको हल्का सा पुआल बिछा देना है, क्योंकि अगर आप पुआल नहीं बिछाएंगे, अगर आप पलवार ऊपर नहीं डालेंगे तो जब बारिश होगी तो आपका बीज पूरा बह जाएगा, ठीक है। इसलिए ये ध्यान रखना है, आपको पलवार जरूर करना है, इसको मल्चिंग भी कहते हैं, आपको जरूर करना है, ठीक है। उसके बाद आपको सिंचाई कर देनी है। सिंचाई करते समय आपको ध्यान रखना है, हजारे से सिंचाई करनी है, सीधे पाइप से सिंचाई नहीं करनी है। अगर आपके पास हजारा नहीं है तो कोई भी बर्तन लेके और हाथ थोड़ा आगे लगा लेंगे तो उसकी बरसात जैसे होती है तो बूंद बूंद करके पानी जाएगा, आपके प्याज का जो बीज है वो बहेगा नहीं, ठीक है। इस तरह सिंचाई करेंगे, 8-10 दिन में देखेंगे प्याज का बीज अंकुरित हो गया है। अंकुरित होने के बाद विशेष ध्यान रखनी है क्या, कि अंकुरित होने के बाद आपको पुआल को हटा देना है, जो आपने धान के पुआल की मल्चिंग की है उसको आप हटा देंगे, ठीक है। अगर नहीं हटाएंगे तो जो अंकुरण है वो प्याज जो पुआल था उसके अंदर चला जाएगा और उसके बाद बीज आपका पूरा खराब हो जाएगा, हटा दीजिएगा।
3: यानी यहाँ पर भी समय बहुत ध्यान रखना है कि कितने समय में आपको पुआल हटाना है, क्योंकि जो उसके फायदे के लिए, अंकुरण के लिए आपने रखा था, अगर आप लंबे समय तक उसे छोड़ देंगे तो वही चीज आपके पौधों को खराब भी कर देगी, बर्बाद कर देगी। तो समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, देखिए खेती में पूरा खेल समय का होता है, और इसीलिए हमारे एक्सपर्ट भी आपको बता रहे हैं कि कहां कहां गलती होने की आशंका है और उसे हमें नहीं करना है।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
2: पूसा रेड है, उनको आप आराम से ले सकते हैं। दूसरा अभी नई प्रजाति आने वाली है, अभी L883 है, उसको भी आप लगा सकते हैं। और आप खरीफ के मौसम में ज्यादा से ज्यादा आप प्याज लगाइए और आपको अधिक लाभ होगा।
3: इसका चुनाव किस तरीके से करें?
4: देखिए, मैंने अभी बताया था कि चुनाव करने से पहले आपको खुद मंथन करना पड़ेगा कि आप कृषि के किस आयाम के माध्यम से अपना रोजगार बनाना चाहते हैं।
3: जैसे होता अक्सर यही है कि युवा देखते हैं कि किसमें स्कोप ज्यादा है।
4: हाँ, क्योंकि यहाँ हम एक्चुअली हम स्वरोजगार की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको स्टार्टअप के रूप में चलना, जो कि भारत सरकार द्वारा बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, और अगर स्टार्टअप का नंबर देखा जाए, संख्या देखी जाए, तो शायद सबसे ज्यादा स्टार्टअप जो है कृषि में ही है। तो उस तथ्य को ध्यान देते हुए यदि आप शुरू करना चाहते हैं कोई भी छोटा व्यवसाय या बड़ा व्यवसाय या स्टार्टअप के माध्यम से, तो आपको वो पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आप किस में इंटरेस्टेड हैं, जहां आपके रॉ मटेरियल पूरे मिल जाएं, जो यहाँ पूरा आपका बाजार हो, खपत हो जाए, डिमांड और सप्लाई का जो है पूरा खेल होता है, तो उससे संबंधित पाठ्यक्रम आप चुन सकते हैं। हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में काम करते हैं, तो हमारे विश्वविद्यालय द्वारा जो पाठ्यक्रम बनाए गए हैं उनका आप चुनाव ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। और ये ऐसे पाठ्यक्रम हैं जो दूरस्थ शिक्षा माध्यम से आप तक पहुंचेंगे। तो इसमें फायदा ये है कि आपको किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है, किसी एक क्लासरूम में नहीं जाना, बल्कि एक तरीके से कहा जाए तो विश्वविद्यालय खुद आपके द्वार पे उपस्थित रहेगा, आएगा। तो अपने कार्यों को करने के साथ साथ अगर पढ़ाई का माध्यम आपको मिल जाए, पढ़ाई का तरीका मिल जाए, तो आप कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप डिग्री कोर्सेज करना चाहते हैं कृषि में, तो हमारे पास 65 से 70 विश्वविद्यालय हैं इस समय, जिनके माध्यम से आप कृषि का शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। चाहे वहां पर आप अंडर ग्रेजुएट करें या पोस्ट ग्रेजुएट करें या आप डॉक्टरेट करें, तो कृषि का जो शिक्षा का जो पूरा का पूरा संस्थानों का जो एक तरीके से हमारे पास नेटवर्क है पूरे देश में, वो इसके अलावा कॉलेजेस भी बहुत ज्यादा हैं। साथ ही साथ ऐसे बहुत से विश्वविद्यालय हैं जो जिनमें एक या दो डिपार्टमेंट कृषि से संबंधित, वहां भी आप एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा जो नेटवर्क है, जो तंत्र है, वो आप उसका चुनाव कर सकते हैं और सारा ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है।
3: जी, ये बहुत अच्छी चीज होगी। देखिए, अब सब कुछ आपको कहीं नहीं भटकना, किसी भी चीज के बारे में आप जानना चाहते हैं, सब कुछ ऑनलाइन आपके लिए उपलब्ध है, बस कई बार डायरेक्शन मिलने की।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
0: किसान साथियों, आप में से कुछ किसान भाइयों ने हमें यह अपनी समस्या को हमारे सामने रखा था कि कुछ पौधे हैं जो बड़े होने से पहले मर जाते हैं, उनमें बीमारियां आ जाती है, जो इसके क्या कारण हो सकता है, आइए लेते हैं एक्सपर्ट की राय।
3: बता रहे हैं कि 50% तक उनके जो पौधे हैं वो खराब हो जाते हैं।
2: बिल्कुल, आपको ध्यान, मैंने शुरू में बताया था आपको सबसे पहले क्या करना है, बीज उपचार जरूर करना है, ठीक है ना। अगर आपका बीज उपचार किया हुआ है, बीज उपचारित है, तो आपके पौधों के सूखने की संभावना कम है, ठीक है। दूसरा, पहले बताया गया क्योंकि हम नर्सरी जो खरीफ मौसम में लगा रहे, इसलिए अच्छा जल निकास भी होना चाहिए, ठीक है। और पौधों को जो बीज बोएंगे वो पंक्तियों में बोएंगे, यानी कि थोड़ा दूर दूर बोएंगे। जब पौधे घने हो जाते हैं तो आद्र गलन हो जाता है, ठीक है, उसके कारण पौधे सूखने लगते हैं। आद्र गलन के लिए आपको क्या करना है, कार्बाडेजिम या बेबिस्टीन जो ट्रेड नेम है मार्केट में आप मिलता है, 2 ग्राम पर लीटर पानी में मिला के आप उसकी ड्रेंचिंग करेंगे तो ये आद्र गलन नहीं होगा, ठीक है, और वो पौधे आपके सूखेंगे नहीं, ध्यान रखना है। और पानी नहीं भरना चाहिए कभी भी, ठीक है, अगर आप ये ध्यान रखेंगे तो पौधे आपके नहीं सूखेंगे।
3: जी जी, तो हो सकता है कि बीजोपचार उस तरीके से नहीं कर रहे हैं वो, लेकिन डॉक्टर रजनीश, हम ये भी देखते हैं कि आजकल तो जो बीज मिलते हैं वो भी उपचारित होते हैं पहले से।
2: बिल्कुल,
3: तो क्या इन्होंने उपचारित बीज नहीं लिए हैं, या फिर जो उपचारित बीज होते हैं उन्हें फिर से उपचार करने की जरूरत होती है?
2: कर सकते हैं, कोई हानि नहीं है। तो आपके लिए क्या है, थायरम या कैप्टन 2 ग्राम लेना है और कितने बीज के लिए, 1 kg बीज के लिए, उसको आप उपचारित कर लेंगे। उपचारित करते समय आप कोई लोहे का बर्तन नहीं लेंगे, प्लास्टिक का गमला लीजिए, उसमें आप बीज रख लीजिए थैली से निकाल के, और उस आप जो कैप्टन और थायरम बताया गया 2 ग्राम डाल के आप उसको ग्लव्स पहन लीजिए, हाथ से मत करिएगा, और उपचारित करके आप बीज को बो सकते हैं।
3: जी डॉक्टर यादव, कृषि शिक्षा की हम बात कर लेते हैं। देखिए आज क्योंकि हमारा विषय है कृषि शिक्षा और स्वरोजगार। स्वरोजगार मतलब आपको कहीं नौकरी मांगने की जरूरत नहीं है, आपका अपना काम होगा। तो अब सबसे पहले तो ये समझना है कि जो भी हमारा युवा है या फिर जो भी स्वरोजगार के बारे में विचार कर रहे हैं और कृषि के क्षेत्र में, तो पहले उन्हें क्या मतलब पढ़ाई कर लेनी चाहिए, उसके बाद विचार करें या फिर अवसर तलाश करें जैसे आमतौर पर हम करते हैं, या फिर पहले अपना खाका तैयार कर ले, अपना दिमाग बिल्कुल तैयार कर ले कि ये स्टार्टअप है, ये कृषि के क्षेत्र से जुड़ा स्वरोजगार है जिसे मुझे जमाना है और इसके लिए मुझे अभी पढ़ाई करनी है।
4: जी देखिए, ये प्रश्न तो बहुत विराट प्रश्न है। इसमें हमारे युवा वर्ग जो है, या कोई भी हो, जो भी, चाहे वो हमारे किसान भाई हो या युवा वर्ग, जब भी कोई व्यवसाय करना है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमें बाजार क्या है, मतलब बाजार में क्या करना है, क्योंकि सारा खेल बाजार का है। अगर और एग्रीकल्चर के जो प्रोड्यूस होते हैं, कृषि के जो प्रोड्यूस होते हैं, वो पेरिसेबल है, मतलब उनको ज्यादा दिन तक आप रख नहीं सकते, चाहे वो किसी फॉर्म में हो। प्रोसेसिंग करके थोड़े दिन रखा जा सकता प्रसंस्करण, लेकिन उसका भी बहुत ज्यादा लाइफ नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये चुनना है कि हम किस आयाम को चुनते हैं और उसको किस माध्यम से हम बढ़ाना चाहते हैं।
3: अभी किस तरह के कोर्सेज की ज्यादा मांग है, जिसमें संभावना ज्यादा है?
4: आजकल ज्यादातर देखिए फूड प्रोसेसिंग से, खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित, जैविक खेती से संबंधित,
3: जैविक खेती बिल्कुल,
4: और कहीं ना कहीं थोड़े बहुत जो है हमारे डेयरी से संबंधित भी कोर्सेज का जो है लोगों में जागरूकता है। मैं ये बताना चाह रहा था कि आजकल जो बाजार है वो ज्यादातर जो ट्रेडिंग हो रही है, जो व्यवसाय हो रहा है, वो ऑनलाइन माध्यम से हो रहा है। तो ऑनलाइन भी एक विकल्प आपके समक्ष है कि आप उसके माध्यम से अपने प्रोडक्ट्स को आप सब कंज्यूमर तक, उपभोक्ता तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन आपको देखना है कि हमारा इंटरेस्ट और हमारे पास जो शुरुआती दौर की जो जानकारी होती है वो किस क्षेत्र में है, क्योंकि जो आपके पास जानकारी होगी, चाहे वो अपने परिवार से हो, अपने जो व्यवसाय से हो, या अपने इंटरेस्ट से हो, उसी माध्यम को लेके आगे बढ़ना है आपको।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: अगर आपने अभी तक प्याज की बुवाई शुरू नहीं की है तो आप शीघ्र से शीघ्र बीज लें, प्रमाणित बीज लें, और उसकी बुवाई जो है तुरंत कर दें, ठीक है? क्योंकि खरीफ के मौसम की जो प्याज की नर्सरी है उसको तैयार होने के लिए, पौध को तैयार होने के लिए 6 से 7 हफ्ते लगते हैं, ठीक है? जबकि रवि में 8 से 9 लग जाते हैं। तो आपको ये जल्दी से जल्दी बीज बो देना है, और जैसा मैंने बताया उसी तरह क्यारी बनाना है, बीज को उपचारित जरूर करना है और मल्चिंग भी करना है, और पंक्तियों में बीज बोना है, ठीक है? अच्छा जल निकास करना है, और वेराइटी मैंने आपको पहले प्रजातियों के बारे में बताया था, आप एग्रीफाउंड डार्क रेड भी लगा सकते हैं, ठीक है? और भीमा सुपर भी लगा सकते हैं, और पूसा रेड भी लगा सकते हैं, वेराइटियां हैं, ठीक है, जो आपके क्षेत्रों में अच्छी उत्पादन देती हैं। इसलिए आप देर ना करिए, जितना जल्दी हो बुवाई का काम शुरू कर दीजिए।
3: जी जी बिल्कुल। तो देखिए आपके क्षेत्र में बुवाई शुरू,
0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांट्या भील, रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન, આપુ રોજ કરહું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં, એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન, રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM।
5: ब्रेक के बाद पुनः बहुत बहुत स्वागत है किसान साथियों आपका। आप सुन रहे हैं प्याज की खेती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
2: बिल्कुल, ये जो आपकी जो बीमारी है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैंको जैव दवा आती है, उसको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के आपको छिड़काव करना है। ध्यान रखना है क्योंकि जो प्याज की पत्तियां होती हैं चिकनी होती हैं, ठीक है, उसमें कोई दवा रुकती नहीं है, इसलिए आपको एक टंकी में 9 ml यानी कि 9 मिलीलीटर स्टीकर का इस्तेमाल जरूर करना है। आपको शैंपू वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है, आप स्टीकर ही लीजिएगा, क्योंकि शैंपू से दवा का जो वितरण है वो पत्ती पे समान रूप से नहीं होता। तो आप स्टीकर का इस्तेमाल करिएगा और मेनको जेब को क्या करना है, 2 ग्राम प्रति लीटर की मात्रा से आप इस्तेमाल करिए। 15 दिन बाद दूसरा स्प्रे कर दीजिएगा और जल निकास का ध्यान रखिएगा, पानी खेत में रुकना नहीं चाहिए, आपकी प्याज अच्छी बनेगी।
3: जी जी बिल्कुल। और हमारे जो किसान हैं या फिर जो युवा हैं जो कृषि शिक्षा के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, जहां का रुख कर सकते हैं?
4: देखिए, मैंने बताया कि विश्वविद्यालय तो हमारे देश में हैं 65 करीब, और इसके साथ साथ और अनेक विश्वविद्यालय हैं जहां पर कृषि की शिक्षा होती है अन्य विषयों के साथ साथ। ये जो विश्वविद्यालय हैं 65, ये शुद्ध रूप से कृषि से संबंधित शिक्षा देते हैं। बहुत सारे कॉलेजेज भी हमारे देश में हैं जिसमें करीब करीब 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट हर साल एडमिशन लेते हैं, जहां भी कृषि शिक्षा दी जाती है। मैं एक आपको सबसे जो सुलभ इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता हूं कि हमारे देश में हर एक जिला में एक कृषि विज्ञान केंद्र बनाया गया है, भारतीय कृषि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा ICAR जिसको कहते हैं, उसके द्वारा हर एक जिले में कम से कम एक कृषि विज्ञान केंद्र है। अगर जिला बहुत बड़ा है तो उसमें कहीं कहीं जगहों पर दो भी हैं, या दुर्गम स्थान है जैसे नॉर्थ ईस्ट के जगह स्टेट के स्टेट्स के जगह जगह होते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो वहां आप जाकर के अपने किसी भी अपने क्षेत्र से संबंधित कृषि के आयाम से संबंधित ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं।
3: एक तो ट्रेनिंग भी ले सकते हैं अगर कोई, और ये सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं शायद?
4: नहीं, इसमें आपको बहुत शॉर्ट टर्म नीड बेस्ड ट्रेनिंग होती है, जिसमें मिनिमम 10 दिन की, 15 दिन की, 3 दिन की, ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वो लोग कभी कभी कृषि के जो समय के हिसाब से जो कार्यक्रम होते हैं, जो उनके जलवायु के हिसाब से जो कार्यक्रम होते हैं, उसमें खुद के कृषि विज्ञान केंद्र ऐसे जो जरूरत की आपको इन्फॉर्मेशन या स्किल की जरूरत होती है उससे संबंधित ट्रेनिंग प्रोग्राम खुद ऑर्गेनाइज करते हैं। और अगर आपको खुद कुछ किसी एक निर्धारित कौशल विकास या निर्धारित इन्फॉर्मेशन से संबंधित कोई अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है, अपने आप को ट्रेन करना है, तो आप खुद कृषि विज्ञान केंद्र के पास जा सकते हैं। और मैं तो सबसे निवेदन करता हूं कि कृषि में व्यवसायीकरण का जो एक दौर अभी शुरू हो रहा है उसको अगर और गति से बढ़ाना है तो शायद कृषि विज्ञान केंद्र उसमें बहुत बड़े रोल प्ले कर सकते हैं।
3: कृषि विज्ञान केंद्र अब काफी एक्टिव भी हो गए
4: जी,
3: और हम देख रहे हैं कि किसानों तक वो तो पहुंच ही रहे, किसान भी कृषि विज्ञान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। आमतौर पर पहले ये होता था कि बहुत ज्यादा किसानों को भी जानकारी नहीं होती थी कि इस तरह के केंद्र बने हुए जहां पर उन्हें ऐसी जानकारियां मिल सकती हैं। तो अब देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार कृषि के क्षेत्र की या फिर कृषि शिक्षा की बात करें तो इसका विस्तार होता जा रहा, हालांकि आयाम और रूप भले अलग अलग है।
0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન, આપુ રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં, એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM।
2: બિલકુલ, ये आर्द्रता की वजह से पहले बताया गया है, किसान भाइयों प्लीज आप जल निकास का उचित प्रबंधन जरूर करें। अगर नहीं करेंगे, प्याज का पौधा बहुत ही कोमल होता है और वो सड़ना शुरू कर देता है, ठीक है, उस सड़ने से बचाने के लिए आपको भूमि उपचार, बीज उपचार और पौध उपचार भी करते हैं। तो मुझे लग रहा है आपकी जो समस्या है, जो आपकी परेशानी है, जो रोग है, वो रोपाई के बाद आता होगा, ठीक है,
3: वही बता रहे हैं
2: बिल्कुल। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको ड्रेंचिंग करनी है जब भी आपको लगे कि पौधे सड़ रहे हैं, और आपको क्या करना है, 5 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल जरूर करना है।
3: ये किस तरह के इस्तेमाल का, जैसे आपने ड्रेंचिंग बताया, तो कैसे करें हमारे किसान, ये बताएं।
2: तो भूमि की जब तैयारी करते हैं उस समय 5 किलो ट्राइकोडर्मा ठीक है उसको आपको मिट्टी में मिलाना है ठीक है। और ड्रेंचिंग के लिए मैं बताना चाह रहा था कि आप कार्बन डेंजिम है जो बेविस्टीन के नाम से मिलता है आप मार्केट में ले लें उसको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के और पौधों की जड़ों में उसको आप छिड़काव करें सिंचाई की तरह उसको पानी दें वो दवा उसके जड़ों में जाएगी तो आपकी बीमारी जो है वो कंट्रोल में हो जाएगी। लेकिन पानी कभी खेत में रुकना नहीं चाहिए, अगर रुकेगा तो फिर ये ड्रेंचिंग भी कभी कभी काम में नहीं आती है।
3: जी जी बिल्कुल। तो देखिए सबसे बड़ी चीज और महत्वपूर्ण चीज इसके बारे में हमें सिर्फ लगातार बता रहे हैं कि खेत में पानी नहीं रुकना चाहिए और प्याज में इतना समय भी नहीं आपको मिलता और अगर पानी रुक गया तो बहुत जल्दी जो फसल है वो खराब होने का डर रहता है। और जो आप बता रहे हैं कि फफूंद वगैरह लगना अक्सर ये अधिक मॉइस्चर की वजह से भी समस्या आ सकती है तो यहाँ पर सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। फिलहाल इसी के साथ ही वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का।
0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपु रोज करहू वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
3: और अब आपसे जाना चाहूंगी क्योंकि आप खुद इग्नू से हैं तो किस किस तरह के कोर्सेज हैं क्या एडमिशन ओपन है और अगर वो किसी विशेष कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं क्या बताना चाहेंगे।
4: जी हमारे विश्वविद्यालय द्वारा कृषि शिक्षा से संबंधित करीब करीब 18 कोर्सेज अभी वर्तमान समय में उपलब्ध कराया गया है और ये जितने भी कोर्स हैं हमारे इसमें हमारे पास MSc भी है, डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। पोस्ट ग्रेजुएट मतलब ऐसे डिप्लोमा, हमारे पास 2 तरीके के डिप्लोमा है, एक तो जो अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा बोलते हैं जिसमें +2 पास होकर के कोई भी एडमिशन ले सकते हैं
3: सर्टिफिकेट के
4: और नहीं डिप्लोमा जो 1 साल के होते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऐसे कोर्स हैं जिसमें आपको मिनिमम जो अर्हता होती है वो ग्रेजुएशन होती है। दूसरे हमारे पास सर्टिफिकेट है, तीसरे तरीके के जो कोर्स है उसमें 6 महीने का कोर्स है जैसे सर्टिफिकेट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रमाण पत्र कोर्सेज जिनको हम बोलते हैं। हमारे पास पोल्ट्री से भी संबंधित है, सेरिकल्चर से भी है, वाटर हार्वेस्टिंग से भी संबंधित है और जैविक खेती है और साथ ही साथ हम मधुमक्खी पालन में भी कोर्सेज दे रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप और ज्यादा अपने शिक्षा को आगे ले जाना चाहते हैं तो हमारे पास डेयरी साइंस में जो है डॉक्टरेट की भी डिग्री है।
3: अच्छा,
4: जैसे बहुत से हमारे दर्शक ये जानते होंगे या कहीं नौकरी करते होंगे जो MSc करके करते हैं और वो पुनः अपने डिग्री को आगे बढ़ाना चाहते हैं, डॉक्टरेट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो विश्वविद्यालय हमारा केवल अभी वर्तमान में डेयरी में जो है वो डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में PhD का जो है वो उपलब्ध करा रहा है और इसका आप लाभ ले सकते हैं।
3: जी जी
4: जी,
3: जी, और जी, जी जो प्याज की खेती करना चाहते हैं। जी

0: आए,
1: बाप रे,
0: तो मैंने इसको उठाया और शाम को स्लोली अपने आप चले गया वो,
1: जी,
0: तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। बट काश पैर पड़ जाता मेरे उस पे, तो हो सकता है वो पलट के काट भी लेता।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल,
0: बिल्कुल छोटे से पे उसने मेरी जान बचाई है।
1: बताएं
0: फिर उसके साथ तो जिंदगी बढ़िया कटी।
1: जी, उसका नाम आपने कैसे डिसाइड किया और उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, अगर आप हमारे
0: हाँ
1: श्रोताओं को बताएं जी।
0: अच्छा, ये काले रंग का कॉकर स्पैनियल था,
1: जी
0: एंड काले रंग का था। तो मेरा बचपन अफ्रीका में कटा है, तो जुलू एक वॉरियर थे, वॉरियर किंग साउथ
1: जी
0: अफ्रीका में। तो उसी के नाम पे रखा, क्योंकि इसके जो ये जो इंसिडेंट हुआ था
1: जी
0: उसके बाद हमने सोचा कि ये वॉरियर ही है।
1: करेक्ट करेक्ट, इसकी
0: तो
1: स्पिरिट ही वॉरियर की है जी।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: तो
0: तो एंड अदरवाइज कैरेक्टर इसका बहुत स्वीट नेचर्ड,
1: जी
0: हर एक के साथ घुल मिल रहे, सारे स्ट्रीट डॉग्स इसको पसंद करते थे,
1: जी
0: और हम पैदल यानी घूमने निकलते थे तो साथ में 8-9 स्ट्रीट डॉग साथ में लगते थे
1: वाह
0: इसके
1: वाह,
0: चारों तरफ इर्द गिर्द हम दोनों के, तो बड़ा अच्छा लगता था।
1: क्या वो
0: हाँ
1: फ्रेंडली
0: जी,
1: था, क्या जुलू फ्रेंडली था
0: बहुत फ्रेंडली, हमें
1: जी
0: तो ये लगता था ये चूहा नहीं खरगोश है।
1: ओ हाउ अडोरेबल,
0: आई मीन कुत्ता
1: डॉग
0: नहीं
1: नहीं है,
0: खरगोश,
1: खरगोश
0: सॉरी।
1: है जी, हाउ अडोरेबल। तो आपने जुलू को जब आपके जीवन में आप लेके आए, तो कोई कॉन्शियस डिसीजन था, कोई चॉइस थी, या आप हमेशा, जैसे आपने बताया आप अफ्रीका में आपका बचपन बीता, तो हमेशा ही आप एनिमल से सराउंडेड रहे, क्या ऐसा रहा हमेशा पेट्स रहे, किस तरह से जुलू आपके जीवन में आया?
0: हाँ जी, तो बचपन में हमारे फादर हमेशा डॉग्स रखते थे, एंड वो सारे सॉर्ट ऑफ मिक्स ब्रीड स्ट्रीट डॉग टाइप के थे। तो
1: जी
0: बचपन हमारा डॉग्स के साथ, हम खेले कूदे उन्हीं के साथ हैं।
1: जी
0: फिर जब इंडिया आए तो थोड़ा सा घर की वजह से रिस्ट्रिक्शन था पेट्स रखने में। तो जब 2012 में बड़ा मकान हमने अपना लिया, तो देन ये हुआ मेरे को कि मेरे भी बच्चों को एक पता होनी चाहिए कि एक पेट घर में होने से के क्या फायदे हैं, एंड फॉर देम टू कि उनको सीखना चाहिए कि जो कंपैशन होता है एनिमल्स के लिए वो आता है।
1: राइट
0: हाँ जी,
1: राइट, चलिए इसी एहसास के साथ हम सुनेंगे हमारा पहला गीत। दोस्तों कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि उनकी यादें कभी साथ नहीं छोड़ती, जैसे कि हम सुन सकते हैं डॉक्टर हेमंत को कि आज भी उनके जहन में जुलू की यादें कितनी फ्रेश हैं और कितने प्यार से वो जुलू के बारे में हमें बता रहे हैं। अगले सेगमेंट में हम जानेंगे जुलू के बारे में थोड़ा सा और कैसे जुलू के आने से हेमंत सर की लाइफ चेंज हुई, उनके अराउंड सर्कमस्टांसेस चेंज हुए, उनका जीवन और सुंदर और खुशहाल हुआ। सुनते हैं हमारा पहला गीत, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई।

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक डॉक्टर हेमंत।
1: थैंक यू
0: सर। आप अगर हमें बताना चाहें कि जुलू के आपके जीवन में आने से क्या क्या चेंजेस आए, पॉजिटिव या नेगेटिव, आपके घर का एनवायरनमेंट कैसे चेंज हुआ और पेट केयर की सबसे इम्पोर्टेंट नीड क्या होती है, किस तरह से आपने अपने आप को इवॉल्व किया उसके अराउंड, उसको सूट करने के लिए।
1: एक तो पेट के आने से पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव कुछ भी नहीं है
0: जी।
1: बट अपनी अपनी सोच है। बट ये है कि घर का माहौल अच्छा बनता है, लोग एक और सदस्य आ जाता है, फैमिली मेंबर घर में
0: जी।
1: तो और एक ड्यू टू आर एज हमें लगता है कि हमारा वो बचपना सर जा रहा है, वो वापस हमारे बचपन की याद दिला देता है कि हम भी खेल सकते हैं, कूद सकते हैं उसके साथ
0: जी।
1: और लेकिन पेट के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो आती हैं साथ में।
0: हाँ जी।
1: तो ये सोच के पेट लाने चाहिए घर में कि एक और मेंबर आ रहा है एंड उनकी लाइफ स्पैन छोटी होती है तो हमें ये सोच के चलने चाहिए फॉर लाइफ। कुछ लोग शुरू में ले आते हैं फिर सोचते हैं कि नहीं हमसे नहीं मैनेज हो पा रहा है, तो पहले ही माइंड मेकअप करके चलने चाहिए कि अगर आप उसकी लाइफ के लिए लुक आफ्टर कर सकते हैं तभी लाने चाहिए घर में।
0: राइट लॉन्ग टर्म सोच के लाएं, ऐसे नहीं कि मेरे लिए आज मुझे लग रहा है तो मैं ले आऊं, कल मैं देखता हूं कि मैं नहीं इसको मैनेज कर पा रहा तो मैं उसे छोड़ दूं, तो उनको कितना ट्रॉमा कॉज होता है, प्लस ये कितना गलत है। खैर
1: जी,
0: इन एनी केस, और कोई ऐसा मोमेंट अगर आपको रिकॉल हो रहा हो आज हमसे बात करते समय, जो आपका जुलू के साथ वन ऑफ योर फेवरेट मोमेंट्स था, जिसने आपको बहुत हंसाया भी या शायद टीयर्स ऑफ जॉय दिए, कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा वाकया अगर आप साझा करना चाहें, और जुलू कैसे, मतलब कितने समय आपके साथ रहा और व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ हिम बीइंग विद यू एंड देन हाउ डिड ही पास अवे, लाइक इफ यू कैन शेयर विद अस।
1: हां जी, तो जो वन ऑफ द इंसिडेंट्स जो हमें बड़ा हंसाता था वो जब भी हमारे ससुर जी घर आते थे हमसे मिलने हैं तो उसके नखरे यही होते थे कि बस घूमने उन्हीं के साथ जाना है। बस शोर मचाते था कि नहीं बस उन्हीं के साथ जाना है और कोई नहीं। तो बस वो अपने उन्हीं पे भौंकता था कि चलो मेरे को लेके चलो और उनके साथ घूम के आने के बाद उन्हीं पे शोर मचाता था कि मेरे को खाना खिलाओ, तो बेचारे वो अपने हाथ से उसको खाना खिलाते थे।
0: हाउ एडोरेबल।
1: तो ये हमें हमेशा ऐसा आता था
0: जी, फनी था,
1: कोई पुराना नाता होगा इसके साथ।
0: जी जी जी, आई थिंक यू आर वेलिंग अप थिंकिंग अबाउट हिम, ऐसा मुझे लग रहा है। जी जी जी, आई एम सो सॉरी एंड लाइक इफ आई कैन आस्क यू जी।
1: या ऑफ कोर्स, हाउ ही पास्ड अवे, उसको कैंसर हो गया था, ही हैड रेक्टल कैंसर हुआ था जो इवेंचुअली काफी स्प्रेड हो गया था। दो तीन बार ऑपरेशंस करे हुए, हमने सब कुछ कोशिश कर ली, इवन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स वगैरह डॉग्स गए एंड इवेंचुअली ही हैड टू बी पुट टू स्लीप बिकॉज कंडीशन काफी खराब हो गई थी, बहुत स्प्रेड हो गया था।
0: सो सॉरी सर,
1: ये था। हाँ जी,
0: आई एम सो सॉरी फॉर लॉस सर।
1: इसी
0: एहसास के साथ हम सुनेंगे हमारा अगला गीत दोस्तों। प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो बस यादों में बदल जाता है और हर याद एक नई मुस्कान देती है और कुछ लम्हे देती है। सुनते हैं कहीं दूर जब दिन ढल जाए।

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक हेमंत सर।
1: थैंक यू
0: सर। अब मैं बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग पेट्स ले आते हैं घर में, बट उनके घर में एज ए यूनिट वो डिसाइड नहीं करते, वो सिर्फ अपने विम्स एंड फैंसीज पे ले आते हैं, और फिर घर में बच्चे कंफर्टेबल हैं नहीं हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं नहीं लेते, या कई बार बच्चे बहुत वायलेंट भी बिहेव करते हैं पेट्स के अराउंड। मैंने देखा है उनको शायद राइवलरी हो जाती है, वो समझ नहीं पाते, उनको इनसिक्योरिटी होती है। तो आपके हिसाब से, बिकॉज आप इतने सारे, इनफैक्ट नॉट जस्ट योर ओन पेट, आपने इतने सारे स्ट्रे एनिमल्स को भी आई थिंक शेल्टर किया है, उसके बारे में हम आगे पूछेंगे, तो यू अंडरस्टैंड द होल साइकी एंड द होल सिस्टम हाउ दिस वर्क्स। तो आपके हिसाब से अगर कोई पेट लेके आना चाहे अपने घर में, तो वो किस तरह से अपने बच्चों को रेडी करे, क्या बेनिफिट्स होते हैं पेट घर में होने से बच्चों के लिए, और किस तरह से एक फैमिली प्रिपेयर हो सकती है बिफोर हैविंग अ पेट इन द हाउस, सो दैट वो रिस्पॉन्सिबली उसकी टेक केयर कर सके।
1: हाँ जी, तो इसमें एक चीज तो ये है कि सबसे पहले तो पेरेंट्स को ही डिसाइड करने चाहिए कि वी आर प्लानिंग, तो उस हिसाब से उनको ये सोच के चलनी चाहिए कि इट्स नॉट जस्ट एक दो साल बोर हो गए या डॉग नॉटी निकला, वो नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, तो पहले ही सोच लें कि शुरू से अगर लिया है तो आखिर तक रखना है। क्योंकि एक बार एक डॉग घर में आता है तो उसको यही फैमिली मालूम होती है, अगर फिर एडॉप्शन के लिए जाए या अबैंडन हो तो इट्स नेवर द सेम। तो अगर नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं तो ना लें। सेकेंडली, स्पेशली फर्स्ट टाइम ओनर्स का इट वुड बी बेटर कि जो पेट पेरेंट्स ऑलरेडी हैं, एग्जिस्टिंग पेट पेरेंट्स, उनसे काउंसलिंग ले लें कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बच्चों को क्या क्या समझाना है, कैसे करना है। बच्चे आते हैं पूछ पकड़ के खींच रहे हैं, खाते खाते कुत्ते का वो उसको छेड़ते हैं, तो कुत्ता अपने आप एग्रेसिव बन जाता है।

0: नो लॉट ऑफ देम आर इन ब्रेड,
1: राइट.
0: तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं फ्यूचर में. और जो बाहर की ब्रीड्स हैं वो अपने एनवायरनमेंट को सूट नहीं करती हैं. तो सिंपल रूल होता है कि लाइक आई, मेरे पास कॉकर स्पैनियल था,
1: जी
0: उसको समर्स में आफ्टरनून्स एंड नाइट बगैर एसी के मैं रख ही नहीं सकता था.
1: राइट राइट.
0: हाँ, तो ये सब सोच के, एंड सबसे अच्छी चीज जो होती है इज टू अडॉप्ट ए स्ट्रीट डॉग. तो उसमें क्या है कि वो यूज्ड टू होते हैं अपने एनवायरनमेंट के लिए, एंड उनमें बीमारियां कम होती हैं. दे मच मोर, मच बेटर गार्ड डॉग्स.
1: राइट.
0: वो अगर गार्ड डॉग के हिसाब से कोई लेना चाहे तो अपनी इंडियन डॉग्स जो
1: देसी
0: हैं
1: ब्रीड्स
0: मच
1: जी.
0: बेटर होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट हमें ये भी सोचना होता है कि इनका एक्सपेंसेस कितने होने, इनको वैक्सीनेशंस भी देने हैं, डॉक्टर विजिट्स होंगी, खाना खिलाना है, किस टाइप का खाना खिलाना है, और तो ये सारे एक्सपेंसेस भी अकाउंट फॉर करने होते हैं
1: बिल्कुल.
0: बिफोर की डिसाइड करें कि हमें एक और घर का सदस्य लाना है. तो
1: बिल्कुल
0: मैं तो
1: बिल्कुल.
0: सदस्य ही बोलूंगा, घर का मेंबर,
1: जी
0: कि उसी हिसाब से ट्रीट करने चाहिए. और
1: बिल्कुल.
0: बच्चों की और पेरेंट्स की काउंसलिंग, स्पेशली अगर फर्स्ट टाइम पेट सोच रहे हैं लाने की घर में, तो ये बहुत जरूरी होता है.
1: बिल्कुल.
0: हाँ जी,
1: बहुत ही एक नुएंस्ड और बहुत ही वेल एक्सपीरियंस्ड एक आपने एक ऑब्जर्वेशन हमारे साथ साझा की कि कई बार हम सिर्फ ब्रीड्स देख के उनको घर ले आना चाहते हैं और अपने घर का एक हिस्सा बनाना चाहते हैं, एक फैशन के लिए, एक फैड के लिए, ये जाने बगैर, ये समझे बगैर कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशो इकोनॉमिकली हम उठा सकते हैं या नहीं, ज्योग्राफिकली वो हमारे लिए कितना फिट बैठता है, एक पूरा इकोसिस्टम है क्या हमारे पास उस पेट को, उस ब्रीड को हैंडल करने के लिए. तो और बहुत सही बात आपने कही कि जो हमारी देसी ब्रीड्स हैं वो बहुत मच मोर रेजिलियंट हैं और रोबस्ट हैं, और उनको पेट करना, उनको रेस करना, उनको रखना मच मोर कन्वीनियंट है फॉर अ मिडिल क्लास इंडियन हाउस होल्ड विजवी कोई एक लग्जरी डॉग जिसको इतनी रिक्वायरमेंट्स है जो आप पूरी नहीं कर पाएंगे एक पॉइंट के बाद. तो उन सब फैक्टर्स को फैक्टर इन करें बिफोर यू डिसाइड ऑन द ब्रीड, ऑन द डॉग, ऑन द पेट जो आप चाहते हैं अपने जीवन में लाना. इसी से सर मैं आपके जो आपकी पर्सनल जो आपकी लाइफ की जर्नी है आफ्टर जुलू आल्सो, क्या जुलू की पासिंग अवे ने ये ट्रिगर किया या बिकॉज आप हमेशा एनिमल लवर थे, यू आर ऑलवेज सराउंडेड बाय एनिमल्स लाइक आई सेड, तो ये आपके अंदर एक ऑलवेज दिस वाज अ क्वालिटी, हाउ डिड दिस डेवलप? जो स्ट्रीट डॉग्स को आप फीड करते हैं, कितने स्ट्रीट डॉग्स को आप फीड करते हैं अगर आप बताएं हम सभी को?
0: ऑन एन एवरेज हमारे एक एनजीओ भी है जिसमें करीब 200 स्ट्रीट डॉग्स को फीड करते हैं. बट घर के इर्द गिर्द हमारे करीब 12-13 कुत्ते हैं, उनको तो मैं पर्सनली खुद फीड करता हूँ. एंड ये जो है, जो जर्नी है एनिमल्स की, ये
1: जी
0: बचपन से ही थी. बिकॉज हमारे पेरेंट्स ने, फादर ने रखे थे डॉग्स, तो शुरू से बचपन से ही जानवरों से प्यार था. तो
1: ओके.
0: फिर सिर्फ जानवर ही नहीं, सिर्फ डॉग्स ही नहीं, हम कहते हैं कि अपनी छत पे पानी रख दें, जब रोटी बची है, चावल बचे हैं, छत पे रख दें, कुत्तों को खिला दें, चिड़ियों को मिल जाएगा, गिलहरियों को मिलता है, कुत्तों को मिलता है, गाय गुजरी उसको पानी मिल जाएगा खाने को. तो हर जीव के लिए ये है.
1: बिल्कुल.
0: और इसमें कुछ नहीं जाता है. पुरानी बासी रोटी लोग डस्टबिन में डालते हैं, मिक्स वेस्ट डालते हैं. हम लोगों को बताते हैं सेग्रीगेट करो. उसके बाद इंस्टेड जो खाना बचता है, इफ यू आर नॉट गोइंग टू ईट, अगर वो नहीं खाएंगे तो कम से कम किसी जीव को ही खिला दें. तो
1: बिल्कुल.
0: ये बहुत जरूरी है. एटलीस्ट किसी को खाना भी मिल जाएगा और वेस्टेज नहीं होगी खाने की भी.
1: बिल्कुल.
0: तो ये है. तो स्ट्रीट डॉग्स इसलिए भी हम करते हैं क्योंकि वो, उनका और कोई है भी नहीं. एंड करीब 14 साल पहले हमने स्टार्ट किया था क्लीन अप ड्राइव्स भी. तो पहले लोग कूड़ा डालते थे,
1: जी
0: हर

0: गली के नुक्कड़ पे कूड़ा पड़ा है, कुत्तों को वो ही खाना मिल जाता था, वहीं ब्रीडिंग कर रहे थे। तो तब हमने चालू किया था एबीसी का, एनिमल बर्थ कंट्रोल का, तो गवर्नमेंट के साथ ही, नगर पालिका के साथ ही, और काफी हमने अपने फंड से करा तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। एंड सेकंड, हम क्लीन अप ड्राइव्स कर रहे थे तो हमने सारे ब्लैक स्पॉट्स हटा दिए, लोगों को भी समझाया कैसे कूड़ा ना डालें, कैसे सेग्रीगेट करें, तो कुत्तों को भी कम मिलने लगा खाना। तो अब उनको तो जितने हैं उनको तो खाना चाहिए ही, तो इट्स ये हुआ कि इनको भी रेगुलर फीडिंग करवाएं, इनके सबके ऑपरेशन करवा दें कि अगला जनरेशन ना हो।
1: Right.
0: तो एनिमल बर्थ कंट्रोल इज वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी है।
1: Right.
0: और वैक्सीनेशन, रेगुलर वैक्सीनेशन करवाने, जो नगर पालिका हमारे काफी साथ दे रही है, और प्लस फीडिंग करते हैं
1: जी।
0: तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। लोग एंड डॉग्स क्यों अग्रेसिव होते हैं, आधे लोग तो जो चलते फिरते दूर से ही पहले पत्थर उठा लेते हैं, डंडी उठा लेते हैं मारने के लिए, और आवाजें निकालते हैं अजीब अजीब, तो वो अपने आप कुत्ता, हाँ तो वो अपने आप कुत्ता अग्रेसिव हो जाएगा।
1: राइट।
0: तो ये हमारे आई थिंक एजुकेशनल सिस्टम में भी होने चाहिए। एक तो सिविक सेंस बहुत जरूरी है, आई थिंक नर्सरी से ही चालू कर देने चाहिए, यूनिवर्सिटी तक, क्योंकि हमारे यहाँ जब तक आई थिंक बार बार ना बोलो एक चीज वो लोग सुनते ही
1: नहीं है।
0: तो सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, सिविक सेंस, एंड ऑफकोर्स हाउ टू बिहेव टूवर्ड्स एनिमल्स, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। तो ये है।
1: राइट।
0: हाँ जी।
1: तो आपके एक्सपीरियंस से, आपके ये जो सब इनिशिएटिव्स हैं जो आप कर रहे हैं, जिनको आपने, जिनके आप हिस्सा हैं, उनके एक्सपीरियंसेस से कोई ऐसा एक पर्टिकुलर इंस्टेंस या कोई वाक्या आपके जहन में अगर आ रहा है जो बहुत शॉकिंग था या बहुत रिवीलिंग था या बहुत ही सेंसिटिव था, जिस विच कुड ब्रिंग अ लार्जर चेंज, जिसने एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आया, अगर वो आप साझा करना चाहें, भले एक छोटा सा ही स्टेप था बट उसका जो रिपल इफेक्ट था, जो उसका मेजर जो आउटपुट था वो बहुत चेंजिंग था, लाइफ चेंजिंग था, ऐसा कोई इंस्टेंस अगर आप साझा करना चाहें।
0: नहीं, बेसिकली क्या होता है कि एक इंस्टेंस नहीं है, ये हमारी पूरी जर्नी रही है पिछले 14 साल, तो स्पेशली ज्यादा कि हम लोग जनरल पब्लिक को ही एजुकेट कर रहे हैं कि ऑन एवरी एस्पेक्ट, हर बार कोई आता है, कोई कुछ करता है या कूड़ा डालता है या यूरिनेट करता है, हर एक, आई मीन इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी जहां पब्लिक एजुकेशन हम सॉर्ट ऑफ इंस्टिल कर रहे थे लोगों में। तो लाइक आई सेड कि जब 14 साल पहले वी मेड अ न्यू प्लेस, घर के सामने कूड़ा घर था, आई मीन लाखों में चूहे, कुत्ते, बिल्ली, एंड बिल्ली तो दो चार ही थी, गायें आती थी एंड ऑल, जैसे जैसे हम कूड़ा, लोगों को समझाना कि कूड़ा नहीं डालते हैं, कैसे सेग्रीगेट करना है, फिर कुत्तों को मारते थे, उनको समझाना कि ऐसे मत करो, ये अग्रेसिव हो जाते हैं, धीरे धीरे आई मीन हमने देखा है कि बहुत फर्क आया है अपने लेआउट में जहां हम रहते हैं
1: जी।
0: तो बहुत फर्क पड़ गया है, बट इट्स ये है कि समझाना पड़ता है लोगों को।
1: बिल्कुल।
0: वो जैसे रहते थे वैसे ही रहते थे, उनको अब समझाना कि ये नया तरीका है कि कूड़ा ना डालें, कुत्तों को ना मारें, वो ना करें, तो बट इवेंचुअली गेन्स पता लगते हैं।
1: बिल्कुल।
0: ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
1: बिल्कुल।
0: हाँ जी।
1: तो दोस्तों, कुछ सफर छोटे होते हैं, कुछ कदम छोटे होते हैं, लेकिन उनका असर जिंदगी भर रहता है। इसी बात से सुनते हैं हमारा अगला गीत, ए जिंदगी गले लगा ले।

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं। हेमंत सर, आप बिकॉज इतने जुडिशियसली, इतने रिस्पॉन्सिबली इन्वॉल्व हैं पूरी सोसाइटी के साथ, इस काम के साथ, पेट्स और स्ट्री डॉग्स, स्ट्री एनिमल्स के बेनिफिट्स और उनके डेवलपमेंट और उनके राइट्स के लिए लड़े हैं और उनके लिए खड़े हुए हैं और इतने सारे चेंजेस और इनिशिएटिव्स लाए हैं, तो आई एम श्योर आप बहुत पर्सनली फील करते हैं इस कॉज के लिए। तो एज अ पेट ओनर, पेट पेरेंट, अगर नए पेट पेरेंट्स जो आजकल नए लोग, बहुत सारे लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पेट्स रख रहे हैं, उनके लिए आप कोई एडवाइस देना चाहें फ्रॉम योर प्रैक्टिकल यू नो एक्सपीरियंस? भले खैर आपने बहुत सारी चीजें शेयर करी हैं, बट एक कोई और इम्पोर्टेंट बात जो आपके जहन में आ रही है कि ये जानना, ये की है, ये पिविट है, इसके बिना आप पेट पेरेंट ना बने तो अच्छा है, वो क्या होगी?
1: एक तो ये है कि पेट पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि हर आपको, जैसे मेरे को और हमें कुत्ते पसंद हैं, हर आदमी को कुत्ता पसंद नहीं है। एक तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा, हम घुमाने लेके जाते हैं, एक पूप स्कूप हाथ में रख लें कि कहीं आप डॉग ने पूपिंग करा है या कुछ, तो उसको उठा लें, वापस डिस्पोज करना है, प्रॉपरली करें। ये नहीं है कि किसी के घर के सामने जाके करवा के और चलते बने। तो ये लोगों को बहुत ज्यादा इरिटेट करता है। एंड सेकंड, मैंने बहुत देखा है कि लोग ना बड़े ओवर फ्रेंडली टाइप होते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, ये हमारा कुत्ता नहीं काटेगा, नहीं काटेगा, ये वो एकदम से आ जाते हैं। हर आदमी को पसंद नहीं है ये। तो ये हमें, वी हैव टू बी कॉन्शियस एंड दैट्स व्हाट वी कॉल की रिस्पॉन्सिबल पेट पेरेंटिंग,
0: राइट?
1: तो ये बहुत जरूरी है कि हम औरों का भी ख्याल रखें, जिन पे नहीं है उनका भी ख्याल रखें। तो ये एक मैसेज बहुत जरूरी है पेट पेरेंट्स के लिए है कि जिन पे नहीं है उनका भी थोड़ा ख्याल रखें।
0: बिल्कुल जरूरी नहीं
1: बाकी
0: है,
1: बाकी उनको भी हम एजुकेट कर रहे हैं, बट हाँ जी
0: जी, जरूरी नहीं है कि जिस अफेक्शन से और जिस पैशन से और जिस प्यार से आप अपने पेट को यू नो के लिए फील करते हैं, वो सभी लोग करें। कुछ लोग डरते भी हैं, कुछ लोग घबराते भी हैं, कुछ लोगों को हाइजीनिक रीजन से भी अच्छे नहीं लगते, बहुत सारे लोग मैं जानती हूँ, कुछ लोगों को एलर्जीज होती हैं। तो हर तरह से हर किसी का ध्यान रखें और रिस्पॉन्सिबल पेट पेरेंट बने। कोई और बात अगर आप साझा करना चाहें सर?
1: बस एक और है, मैं एक चीज भूल गया था बताना कि अपने इंडियन डॉग्स में ही कुछ ऐसे भी डॉग्स हैं, ब्रीड्स, जो जैसे मुधोल हाउंड है, आपने सुना होगा, एक राजापालिया में, इन ऐसे डॉग्स को एक्सरसाइज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो या तो आपके पास फार्म हो या कुछ हो, तब ही अडॉप्ट करें ऐसे ब्रीड्स जो इंडियन ब्रीड्स भी हैं, नहीं तो स्मॉल ब्रीड्स ही सही रहती हैं। अपने नॉर्मल जो स्ट्रीट डॉग वाली ब्रीड है, जो इंडीज जिसे बोलते हैं,
0: राइट?
1: तो ये पर्टिकुलर ब्रीड्स जो है मुधोल टाइप की और राजपालिया, इनको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की जरूरत होती है। तो ओनली फार्म्स एंड ऑल उन्हीं पे ही रह सकते हैं और रखना चाहिए हमें भी उसी हिसाब से,
0: राइट? राइट। तो सर, चलते चलते मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि अगर आपके जीवन में पेट्स नहीं होते, ये स्ट्रे एनिमल्स नहीं होते, आपका जीवन इस तरह से शेप नहीं हुआ होता जिस तरह से हुआ, तो कैसा होता, क्या चेंजेस होते आपके जीवन में और आपने इनसे क्या लेसन्स लाइफ के लर्न किए हैं?
1: अगर कुछ सीखा है हमने कि, तो एटलीस्ट मैंने, कि हर जानवर के भी इमोशंस होते हैं, उनके उनको खुशी भी होती है, दर्द भी होता है, दुख भी होता है, भूख भी लगती है, दर्द, तो सारे इमोशन जो हम में है वो उनमें भी है। तो ये लोग ना सोचें कि इनमें क्या इमोशंस होते होंगे, इनमें सारे इमोशंस होते हैं। तो अगर ये ना होते तो शायद हम भी फीके होते।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जीवन के रंगों में रंग भरते हैं ये, बहुत खूबसूरत रंग भरते हैं। तो बहुत सारी अच्छी प्यारी और बहुत दिल से जुड़ी हुई बातें आपने आज हमारे साथ साझा की, और जिस जेन्युइनिटी से आपने हमारे साथ सब कुछ शेयर किया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ डॉक्टर हेमंत, अपनी
1: थैंक यू
0: कहानी
1: सो
0: साझा
1: मच,
0: करने के लिए।
1: थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी.
0: जी, कोई पार्टिंग थॉट्स अगर आपके हैं तो।
1: जस्ट बी अ रिस्पॉन्सिबल पेट पेरेंट, बस यही है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको लात ना मारें, डंडा ना मारें, पत्थर ना मारें, कुछ कर सकें तो थोड़े से बिस्किट ही खिला दें, अगर कुछ ना सही उनका खाना ना खिला पाए तो किसी का पेट भर जाएगा, हमारा कुछ नहीं जाएगा. 5 रुपए के वो पैकेट आता है वो ही खिला दें, बस इतना
0: बिल्कुल
1: सा है, छोटी सी चीज है. और कुत्ता खुश, हम खुश,
0: बिल्कुल
1: और कर्म अपने अच्छे हो जाते हैं.
0: बिल्कुल।
1: हाँ जी.
0: तो दोस्तों, जरूर, जैसे पेट्स हमें प्यार नहीं करते सिर्फ, वो हमें जीने का एक नजरिया, एक मकसद दे जाते हैं। तभी एक छोटी सी जान आपकी पूरी दुनिया बन जाती है, और फिर एक दिन वो यादों में बस जाती है। लेकिन सच ये है कि प्यार कभी खत्म नहीं होता, और बस उसका रूप बदल जाता है। डॉक्टर हेमंत और जुलू की ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि हर पल को जी लेना चाहिए, क्योंकि यादें वही रंग में घुलती हैं और जिंदगी को और खूबसूरत बनाती हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए एहसास के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनों को प्यार कीजिए और जिंदगी के रंगों को थोड़ा और महसूस कीजिए। साइनिंग ऑफ, बाउ बाउ।
2: तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही. उम्मीद है आपको हमारे इन प्यारे साथियों से जुड़ी हुई ये बातें पसंद आई होंगी. अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो इसे जरूर शेयर करें, और अगली बार फिर मिलेंगे एक और नए और दिलचस्प हमारे साथी के साथ जो हमसे बेहद प्यार करता है. तब तक अपने इन खास साथियों का ख्याल रखें और खुश रहें. नमस्कार. दोस्तों, ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज से. सुनते रहिए 90.8 FM रेडियो टांटिया भील. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जबानी. दोस्तों लीजिए, फिर आ गया वो दिन, वही वार जिसका हम बेसब्री से करते थे इंतजार.
3: आप सभी को स्वच्छ का और सुजल का सादर नमस्कार.
2: क्या है कि स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जबानी कार्यक्रम देता है हमको शुद्ध विचार. हर तरफ, हर कोना, हर गांव, शहर में हो रहा है स्वच्छता का प्रचार.
3: दोहराना है हमें ये संकल्प और ये व्यवहार कि स्वच्छता ही है हम सबका अधिकार.
2: रखना है स्वच्छ हर घर का शौचालय इस बार. धोएंगे साबुन से हाथ खाने के पहले और शौच के बाद.
3: करेंगे सफाई से प्यार, करेंगे स्वच्छता की गुहार.
2: केवल मनोरंजन नहीं, उद्देश्य है हमारा.
3: बैठ जाए हर मस्तिष्क में ये संकल्प कि स्वच्छता ही है एकमात्र विकल्प.
2: स्वस्थ तन और स्वस्थ मन में ही वास करते हैं सुविचार.
3: प्रण करें आज ही कि स्वच्छ सुजल करना है हमें पूरा देश.
2: दूर हो जाएगी बीमारी अगर स्वच्छता की होगी वातावरण में बहार.
3: दूषिका भी भाग जाएगी अगर होगी आपके आसपास ऐसी बयार.
2: यही है सुजल स्वच्छ गांव अभियान की पुकार. साथियों, इन सब के सहारे ही होगी हमारी नैया पार.
3: आज के इस कार्यक्रम में हम आपको स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की पूरी जानकारी देंगे, विशेषज्ञ और स्थानीय लोगों की कहानियाँ सुनेंगे, और साथ ही आपको ये बताएंगे कि कैसे इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और शौचालय की सुविधा प्रदान करके ओपन डेफिकेशन फ्री भारत बनाना है. इस मिशन के तहत शौचालय निर्माण, स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने और व्यवहार में बदलाव लाने पर जोर दिया जाता है.
2: जल के अधिकार के साथ एक बात और, वो ये कि स्वच्छ भारत अभियान के पहले चरण में सरकार ने हर गांव के हर घर में शौचालय बनवाने का कार्यक्रम किया था। और स्वच्छिका, तुमको याद होगा कि कितने ही गांवों ने स्वयं को ODF घोषित किया। अब ये ना कह देना कि ODF गांव होता क्या है।
3: अरे ऐसा कैसे कह दूंगी, मुझे मालूम है ODF का पूरा नाम खुले में शौच मुक्त गांव है। ये एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग उन समुदायों या क्षेत्रों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जहां लोग अब खुले में शौच नहीं करते हैं बल्कि शौचालय का उपयोग करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण पहल है जो स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के साथ साथ महिलाओं की निजता की रक्षा में भी मदद करती है। सही बताया ना?
2: बिल्कुल बिल्कुल। अब देश ODF से ODF प्लस मॉडल गांव की ओर बढ़ रहा है। एक ODF प्लस मॉडल गांव वो होता है जहां खुले में शौच की आदत पूरी तरह खत्म हो चुकी हो, ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन हो गया हो, साफ सफाई का स्तर अच्छा हो, सार्वजनिक जगहों पर कचरा और पानी जमा ना हो।
3: इसमें यह सुनिश्चित करना है कि गांव के सभी घरों के साथ साथ प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर और आंगनवाड़ी केंद्र में शौचालय की सुविधा हो और सभी सार्वजनिक स्थानों और घरों में ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रभावी प्रबंधन हो और कूड़ा कचरा और स्थिर पानी कहीं भी जमा ना हो।
2: लेकिन सरकार के साथ साथ इसके लिए समुदाय की भागीदारी भी देखिए बहुत जरूरी है। हमारी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है रेडियो के माध्यम से और आप लोगों को ये देखना जरूरी है कि इस मुहिम में कोई भी परिवार छूट ना जाए।
3: अच्छा, यह लेकिन मुझे यह पता है कि अब तक 5.67 लाख से अधिक गांवों ने स्वयं को ODF प्लस घोषित किया है जिसमें से 4.81 लाख से ज्यादा गांवों को ODF प्लस मॉडल के रूप में मान्यता दी गई है।
2: देश में स्वच्छता को बनाए रखने के लिए सरकार के प्रयास देखिए जारी हैं। हर घर में स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन, हर घर नल योजनाएं भी शामिल हो चुकी हैं। और हमारी आपकी सहभागिता इस महाअभियान में बनाकर रखना भी देखिए बहुत जरूरी है। तो सुनते रहिए आपका अपना कम्युनिटी रेडियो और उसमें सुनते रहिए ये कार्यक्रम
3: स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी, जहां हर घर तक पहुंचेगी हमारी आवाज, हमारी बात। लेकिन फिलहाल इन सारी बातों को विस्तार से बताने के लिए हमारे बीच विशेषज्ञ उपस्थित हो चुके हैं। चलिए पहले सुनते हैं उनकी बात।
4: नमस्कार साथियों, मैं ऐश्वर्या सिंह, संयुक्त सचिव एवं मिशन डायरेक्टर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से बोल रही हूँ। आज आप सभी से स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी कार्यक्रम के जरिए जुड़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज हम बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की, स्वच्छ सुजल गांव की, और हम इन दोनों विषयों में कैसे एक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से जब स्वच्छता और खुले में शौच का विषय उठाया था तो यह अपने आप में अभूतपूर्व था। उनके मार्गदर्शन में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई और हम सब ने मिलकर अपने देश के हर गांव को खुले में शौच से मुक्त यानी ODF बनाने का जिम्मा उठाया। आने वाले वर्षों में यह मिशन और स्वच्छता का विषय एक जन आंदोलन बना और हमें इसमें आप सभी का पूर्ण सहयोग मिला। इस दौरान देश में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ और महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर 2019 में हमने खुद को ODF घोषित किया। इस अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि और इसकी नींव थी लोगों में आया व्यावहारिक परिवर्तन या बिहेवियरल चेंज। घरों, पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों, युवाओं, बच्चों, सभी में स्वच्छता के लिए जागरूकता बढ़ी और सभी ने इसको अपनी जीवन शैली का एक अंग बनाया। लेकिन हम केवल ODF पर नहीं रुके। 2020 से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण यानी फेज 2 पर काम शुरू हुआ। इसमें लक्ष्य था ODF से आगे ODF प्लस की ओर बढ़ना, अपने गांवों को ODF प्लस मॉडल गांव बनाना, ODF प्लस मॉडल गांव का अर्थ है कि गांव न केवल खुले में शौच से मुक्त हो बल्कि वहां का कचरा, गंदा पानी और प्लास्टिक अपशिष्ट या वेस्ट भी सही तरीके से निपटान किया जा सके। इसके तहत सरकार ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर भी जोर दे रही है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस दूसरे चरण में आज हमारे 4,85,000 से भी ज्यादा गांव ODF प्लस मॉडल घोषित किए जा चुके हैं और यह काम आप सभी के राज्यों में अभी भी जोर शोर से जारी है। ऐसे ही स्वच्छ सुजल गांव एक ऐसा गांव होता है जहां साफ पेयजल की व्यवस्था हो और हर परिवार के पास बेहतर स्वच्छता की भी सुविधा हो, यानी वह एक ODF प्लस मॉडल गांव भी घोषित किया जा चुका हो। साथियों, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण केवल एक सरकारी योजना नहीं, यह एक जन आंदोलन है जिसमें सरकार के साथ साथ आप सभी की जन भागीदारी बहुत आवश्यक है। इस अभियान के अंतर्गत बन रही सुविधाओं, शौचालयों, कचरा प्रबंधन के केंद्र, प्लास्टिक वेस्ट यूनिट इत्यादि के रख रखाव और इनको सुचारू रूप से चलाने में राज्यों, जिलों, गांवों की हम सबकी अहम भूमिका है। इस भूमिका को भी आप सभी को पूरे मन से निभाना है। और हाँ, आपसे अनुरोध है कि अपने गांव, ब्लॉक, जिले के बच्चों को, युवाओं को भी स्वच्छता के विषय के प्रति जागरूक बनाएं, उनको इस अभियान के अंतर्गत बनी व्यवस्थाएं दिखाएं, जिससे भविष्य में वे भी आगे बढ़कर स्वच्छता का दीप प्रज्वलित रखें। तो आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें, हम राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना से हर काम करेंगे, हम स्वच्छ भारत विकसित भारत के लक्ष्य में अपना भरपूर सहयोग करेंगे। ना हम कचरा फैलाएंगे, ना दूसरों को फैलाने देंगे। हम अपने गांव को ODF प्लस मॉडल गांव बनाएंगे और जो गांव ODF प्लस मॉडल बन चुके हैं उनकी व्यवस्थाओं को सुचारू रखने में सहयोग देंगे। इसी संदेश के साथ मैं ऐश्वर्या सिंह आपसे विदा लेती हूं। स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और जुड़े रहिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के इस जन आंदोलन से। धन्यवाद। जय हिंद।
2: हमारे विशेषज्ञ ने कितने अच्छे से ये सारी बातें आप लोगों तक पहुंचाई, याद रखना है आपको और ये आपके क्षेत्र में कार्यान्वित हो, इसके लिए आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है।
5: एक मजे की बात बताऊं सुजल, देश भर के 100 सामुदायिक रेडियो के माध्यम से इस कार्यक्रम का पहला एपिसोड ही सुनने के बाद मैं स्वच्छिका और तुम सुजल साथ में दूषिका भी बहुत फेमस हो गए हैं।
2: अच्छा, अरे वाह, ये कैसे हो गया?
5: अलग अलग गांव में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमारे चरित्र को प्रस्तुत किया जा रहा है।
2: अच्छा, कहाँ?
5: चलो तुमको रामपुर गांव की कहानी सुनाती हूँ। वहाँ पर नुक्कड़ नाटक के रूप में क्या प्रस्तुत हो रहा है वह सुनवाती हूँ। और वहाँ पर एक नाटक हो रहा है जिसका नाम है दूषिका की हार, स्वच्छ भारत की जीत।
2: एक मिनट रुको रुको, दूषिका या प्रदूषिका?
5: सही तो है सुजल, प्रदूषिका तो सिर्फ प्रदूषण फैलाएगी, ये दूषिका ही है जो प्रदूषण के साथ हर स्थान को दूषित करती रहती है। हम भी अब से इसको दूषिका ही कहें तो सही होगा।
2: कहते हैं जब बुराई बढ़ती है तो अच्छाई भी ताकत से खड़ी हो जाती है। ये कहानी है रामपुर गांव की, जहां स्वच्छता को गंदगी ने खुली चुनौती दे दी, जहां प्रदूषिका ने फैलाया अंधेरा और स्वच्छिका ने जलाया स्वच्छता का दीपक, और सुजल कुमार बना उस रोशनी का स्वच्छता दूत। जानेंगे कैसे काम आई बुजुर्ग की नसीहत? आइए सुनते हैं दूषिका की हार, स्वच्छ भारत की जीत।
6: आ गई मैं दूषिका, गांव की नालियों से निकलकर, शौच के खुले मैदानों में फैलकर, कभी हवा में कभी पानी में मेरा साम्राज्य बढ़ता ही जा रहा है। ठीक हुआ ना, फैला दी ना मैंने गंदगी, जहां लोग खुले में शौच करते हैं, जहां शौचालय बनते तो हैं, मगर उपयोग ना करने से खराब हो जाते हैं और टूट फूट जाते हैं। वहीं मैं रहती हूँ। ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। जो कहते हैं ना कल करेंगे साफ, उनको मैं जल्दी से ही बीमार कर देती हूँ। खुला शौच यानी मेरी जीत, टूटी टंकी पानी मेरा ठिकाना। बहुत ठीक हुआ। गंदा शौचालय मेरा आशियाना, मेरा काम सबको बीमार बनाना। घर में शौचालय तो है पर पानी नहीं, गंदा भी है। बिमला के बेटे का तो खुजली हो गई। ऐसे शौचालय का उपयोग से बेहतर तो खेत ही ठीक ठहरा।
7: पिछले महीने 4 बच्चे बीमार पड़े। सरपंच जी कुछ कीजिए।
8: जंगल में जाना अब खतरे से खाली नहीं, सांप और कीड़े।
6: हमारे घर में शौचालय तो है लेकिन बेटा अंदर नहीं जाता, कहता है बदबू आती है। बस ऐसे ही रहो, मुझे तुम सबका लापरवाह रवैया बहुत पसंद है। तुम्हारे बच्चों का बुखार, पेट दर्द और उल्टी, ये सब मेरी ही सौगात ठहरी। तुम सब तो मुझसे रहम की पुकार करो।
2: एक दिन गांव की सीमा पर आ जाता है एक युवक, आत्मविश्वास से भरपूर, हाथ में झोला, आंखों में मिशन लिए, और वो था सुजल कुमार, जो अपने गांव से रोज स्कूल जाता और खूब मन लगाकर पढ़ाई करता। छुट्टी के दिन सुजल कुमार अपने पड़ोस के गांव गया था। सीखा था उसने कि बदलाव घर से शुरू होता है।
9: राम राम भैया, ये गांव में चारों ओर सन्नाटा सा क्यों है? सब इतने दुखी दिखाई दे रहे हैं। और भैया ये इतनी गंदगी क्यों है यहाँ?
10: लगता है जैसे इसको तो कुछ पता ही नहीं। हाँ नहीं तो सच कह रही हो बहन, मन तो ऐसे रहा है जैसे इसको कुछ पता ही नहीं हो।
9: मैं सब समझ गया चाची, मैं समझ गया। इस गांव में ये दुख और सन्नाटे का कारण ये गंदगी है ना?
6: मैं ही हूँ इस सब का कारण। मैं बोलो क्या कर लोगे तुम? बोलो बोलो। मुझे पता है तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और कुछ दिनों में मैं तुम्हें भी अपना शिकार बना लूंगी, समझे?
9: अच्छा तो तुम हो दूषिका और ये सब तुम्हारा किया धराया है ना? अब समझ गया मैं। देखो मैं कुछ दिनों में ही तुम्हारा कैसे इलाज करता हूं, देखते रहो। सुजल गांव में नुक्कड़ नाटक करता है, बच्चों को खेल खेल में सिखाता है, बड़ों से मिलकर समझाता है। देखो भाई शौचालय ना सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, यह है बीमारी से लड़ने का हथियार। गांव वालों सुनिए, खुले में शौच से मिट्टी पानी हवा सब जहरीले हो जाते हैं। अगर तुम अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हो ना भाई, तो बन जाओ होशियार, तो शौचालय का सही उपयोग करो और उसे साफ भी तो रखना आप ही का काम हुआ ना। खुद भी स्वस्थ रहो और दूसरों को भी स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छता के प्रति जागरूक हमें होना होगा। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग प्रेरित होने लगे और शौचालय की सफाई शुरू करते हैं, और दूषिका बहुत बेचैन होती है। गांव की गली में छिपकर वो देखती है।
6: ये क्या हो रहा है? लोगों ने नालियां कैसे ढक दी? क्या ये शौचालयों पर दरवाजा कब लग गया? दुर्गंध कहाँ गई? अरे मच्छर भी नहीं है। अरे अरे अरे ये सब गांव में क्या हो रहा है? अरे
2: अब गांव में आती है उजली सी रोशनी के साथ स्वच्छिका।
11: गांववासियों, तुम्हारी जागरूकता ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, जहाँ शौचालय का निरंतर उपयोग और सही तरीके से रखरखाव होता है, जहाँ साबुन से हाथ धोना आदत है। मैं वहीं रहती हूँ और मैं हूँ स्वच्छिका।
2: अब गांव में हर घर गली मोहल्लों में अभियान, दीवारों पर स्वच्छता से संबंधित चित्र, साबुन के साथ बच्चे नल पर हाथ धो रहे हैं।
9: महिलाएं गा रही हैं।
6: शोर चाल ले प्या।

0: गेले, घर में हो साफ सफाई रोज, तो बीमारी रखो को सुदूर, मारो सच शौचालय जी, ओ मारो सच शौचालय जी। अरे नहीं, स्वच्छता की ये चमक मेरे प्रदूषण को निगल रही है, मेरा प्रदूषण का साया तो खत्म होता जा रहा है, और इस सुजल की बातें लोगों की आदतें बदल रही है। अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मेरा कहाँ ठिकाना होगा, शौचालय में ढक्कन लग गए, नाली साफ कर दी गई, अब खुले में तो कोई शौच जाता ही नहीं।
1: स्वच्छिका, सुजल कुमार और गांव वाले मिलकर रैली निकाल रहे हैं, सब मिलकर नारा लगा रहे हैं। सुजल की बातों को गांव वाले दोहराते हैं, खुले में शौच को ना कहो, बीमारी को दूर भगाओ, शौचालय को साफ रखो, स्वच्छ गांव बनाओ। दूषिका थककर गांव की सीमा पर बैठकर रो रही है।
0: मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सब सच में बदल सकते हो। तुम सब ने स्वच्छता अभियान में जन भागीदारी के साथ साथ लोगों की सोच को भी बदल डाला। अब तो मुझे जाना ही होगा।
1: गांव की महिलाएं स्वच्छिका को फूलों से सजा रही हैं, बच्चे नाच रहे हैं।
0: तुम सबकी मेहनत ने दूषिका को हराया, लेकिन याद रखो, अगर सफाई की आदत छूटी तो वह लौट सकती है। इसीलिए बहनों, सफाई को आदत बनाओ, मजबूरी नहीं। अरे गांव वालों, शौचालय में रोज रोज सफाई की क्या जरूरत है, गंदा तो होना ही है, छोड़ दो ना, क्या फर्क पड़ता है।
1: फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है दूषिका, गंदे शौचालय से ही प्रदूषण बढ़ता है, अगर हम रोज सफाई करें तो तुम दम तोड़ दोगी।
0: ये दूषिका फिर से गांव में आके हमारे घरों में बीमारी फैलाना चाहती है, देखो कैसे भूतनी की तरह हंस रही है। गांव वालों, अब से सफाई को ही अपनाओ। औरतें ही तो करती हैं ये साफ सफाई, पुरुष क्यों हाथ लगाए, अब नहीं बोलोगी। सफाई किसी एक का काम नहीं, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, अगर सब मिलकर साफ करें तो किसी पर भी बोझ नहीं पड़ेगा। हमारे घर में शौचालय है, लेकिन बदबू बहुत आती है, बच्चे तो पास भी नहीं जाते।
1: तो समझाइए उनको बहन, शौच के बाद पानी डालना सिखाइए उनको, शौचालय का महत्व बतलाइए उनको।
0: अच्छा, तुम्हारे घर में अब भी सफाई नहीं हुई क्या? चलो चलो, मैं आती हूँ तुम्हारे घर, यही तो है मेरी असली ताकत, चलो आती हूँ। सुनो सब लोग, शौच के बाद हाथ ना धोना बीमारी को न्योता देना है, हाथ साबुन से अच्छे से धोना उतना ही जरूरी है जितना खाना खाना। अरे तब क्या कहोगे सुजल, हर किसी के पास फिनाइल और डिटर्जेंट थोड़ा ही ना होता है।
1: फिनाइल ना हो तो देखिए, नींबू, नमक, राख से भी मदद ले सकते हैं हम। सफाई का तरीका ढूंढा जा सकता है, बस इरादा होना चाहिए कि शौचालय साफ रहेगा।
0: अरे खुले में शौच से तो हवा चलती है, खेत में ताजगी रहती है, ये बंद कमरा कुटन और बीमारी। खुले में शौच से ताजगी नहीं, बीमारी और शन फैलती है, शौचालय में हवा की निकासी हो तो ताजगी भी रहती है और इज्जत भी।
2: हाँ, हम सब समझ गए दूषिका, हम समझ गए, अब तुमसे नहीं डरेंगे, शौचालय को साफ रखेंगे, रोज उपयोग करेंगे, हाथ धोएंगे, अब तुम्हें भगा देंगे।
0: ये तुम सब क्या कर रहे हो, लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। नहीं दूषिका, हम उनको सिर्फ जागरूक कर रहे हैं।
1: गांव रामपुर अब नहीं रहा पहले जैसा, हर गांव में शौचालय है और उसका रख रखाव भी, बच्चे बीमार नहीं होते, महिलाएं सुरक्षित हैं, और दूषिका वो तो हार चुकी। ये है असली सुजल स्वच्छ गांव की तस्वीर। कहते हैं जब बुराई बढ़ती है तो अच्छाई भी ताकत से खड़ी हो जाती है। ये कहानी है रामपुर गांव की, जहां स्वच्छता को गंदगी ने खुली चुनौती दे दी, जहां प्रदूषिका ने फैलाया अंधेरा और स्वच्छिका ने जलाया स्वच्छता का दीपक, और सुजल कुमार बना उस रोशनी का स्वच्छता दूत। जानेंगे कैसे काम आई बुजुर्ग की नसीहत, आइए सुनते हैं दूषिका की हार स्वच्छ भारत की जीत।
0: आ गई मैं दूषिका, गांव की नालियों से निकलकर शौच के खुले मैदानों में फैलकर, कभी हवा में कभी पानी में मेरा साम्राज्य बढ़ता ही जा रहा है। ठीक हुआ ना, फैला दी ना मैंने गंदगी, जहाँ लोग खुले में शौच करते हैं, जहाँ शौचालय बनते तो हैं, मगर उपयोग ना करने से खराब हो जाते हैं और टूट फूट जाते हैं, वहीं मैं रहती हूँ। ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया, जो कहते हैं ना कल करेंगे साफ, उनको मैं जल्दी से ही बीमार कर देती हूँ। खुला शौच यानी मेरी जीत, टूटी टंकी पानी मेरा ठिकाना, बहुत ठीक हुआ। गंदा शौचालय मेरा आशियाना, मेरा काम सबको बीमार बनाना। घर में शौचालय तो है पर पानी नहीं, गंदा भी है, विमला के बेटे का तो खुजली हो गई। ऐसे शौचालय का उपयोग से बेहतर तो खेत ही ठीक ठहरा।
3: पिछले महीने 4 बच्चे बीमार पड़े, सरपंच जी कुछ कीजिए।
4: जंगल में जाना अब खतरे से खाली नहीं, सांप और कीड़े।
0: हमारे घर में शौचालय तो है लेकिन बेटा अंदर नहीं जाता, कहता है बदबू आती है। बस ऐसे ही रहो, मुझे तुम सबका लापरवाह रवैया बहुत पसंद है। तुम्हारे बच्चों का बुखार, पेट दर्द और उल्टी, ये सब मेरी ही सौगात ठहरी। तुम सब तो मुझसे रहम की पुकार करो।
1: एक दिन गांव की सीमा पर आ जाता है एक युवक, आत्मविश्वास से भरपूर, हाथ में झोला, आंखों में मिशन लिए, और वो था सुजल कुमार, जो अपने गांव से रोज स्कूल जाता और खूब मन लगाकर पढ़ाई करता। छुट्टी के दिन सुजल कुमार अपने पड़ोस के गांव गया था, सीखा था उसने कि बदलाव घर से शुरू होता है।
5: और राम राम भैया, ये गांव में चारों ओर सन्नाटा सा क्यों है, सब इतने दुखी दिखाई दे रहे हैं, और भैया ये इतनी गंदगी क्यों है यहाँ?
0: लगता है जैसे इसको तो कुछ पता ही नहीं। हाँ नहीं तो, सच कह रही हो बहन, मन तो ऐसे रहा है जैसे इसको कुछ पता ही नहीं हो।
1: मैं सब समझ गया चाची, मैं समझ गया, इस गांव में ये दुख और सन्नाटे का कारण ये गंदगी है ना।
0: मैं ही हूँ इस सब का कारण, मैं। बोलो क्या कर लोगे तुम, बोलो बोलो। मुझे पता है तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और कुछ दिनों में मैं तुम्हें भी अपना शिकार बना लूंगी, समझे?
1: अच्छा तो तुम हो दूषिका, और ये सब तुम्हारा किया धराया है ना, अब समझ।

0: गया मैं। देखो मैं कुछ दिनों में ही तुम्हारा कैसे इलाज करता हूं, देखते रहो। सुजल गांव में नुक्कड़ नाटक करता है, बच्चों को खेल खेल में सिखाता है, बड़ों से मिलकर समझाता है। देखो भाई, शौचालय ना सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, यह है बीमारी से लड़ने का हथियार। गांव वालों सुनिए, खुले में शौच से मिट्टी पानी हवा सब जहरीले हो जाते हैं। अगर तुम अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हो ना भाई, तो बन जाओ होशियार, तो शौचालय का सही उपयोग करो और उसे साफ भी तो रखना आप ही का काम हुआ ना। खुद भी स्वस्थ रहो और दूसरों को भी स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छता के प्रति जागरूक हमें होना होगा। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग प्रेरित होने लगे और शौचालय की सफाई शुरू करते हैं और दूषिका बहुत बेचैन होती है। गांव की गली में छिपकर वो देखती है।
1: ये क्या हो रहा है? लोगों ने नालियां कैसे ढकती? क्या ये शौचालयों पर दरवाजा कब लग गया? दुर्गंध कहाँ गई? अरे मच्छर भी नहीं है। अरे अरे अरे, ये सब गांव में क्या हो रहा है? अरे
0: अब गांव में आती है उजली सी रोशनी के साथ स्वच्छिका।
2: गांववासियों, तुम्हारी जागरूकता ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, जहाँ शौचालय का निरंतर उपयोग और सही तरीके से रखरखाव होता है, जहाँ साबुन से हाथ धोना आदत है। मैं वहीं रहती हूँ और मैं हूँ स्वच्छिका।
0: अब गांव में हर घर गली मोहल्लों में अभियान, दीवारों पर स्वच्छता से संबंधित चित्र, साबुन के साथ बच्चे नल पर हाथ धो रहे हैं, महिलाएं गा रही हैं।
3: शौचालय प्यारा।

0: लागे रे घर में हो साफ सफाई रोज तो बीमारी रखो को सदूर मारो सच शौचालय जी ओ मारो सच शौचालय जी। अरे नहीं स्वच्छता की ये चमक मेरे प्रदूषण को निगल रही है, मेरा प्रदूषण का साया तो खत्म होता जा रहा है और इस सुजल की बातें लोगों की आदतें बदल रही है। मम्मी कहाँ जाऊँ अब मेरा कहाँ ठिकाना होगा, शौचालय में ढक्कन लग गए नाली साफ कर दी गई अब खुले में तो कोई शौच जाता ही नहीं।
1: स्वच्छिका, सुजल कुमार और गांव वाले मिलकर रैली निकाल रहे हैं, सब मिलकर नारा लगा रहे हैं। सुजल की बातों को गांव वाले दोहराते हैं, खुले में शौच को ना कहो, बीमारी को दूर भगाओ, शौचालय को साफ रखो, स्वच्छ गांव बनाओ। दूषिका थककर गांव की सीमा पर बैठकर रो रही है।
0: मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सब सच में बदल सकते हो। तुम सब ने स्वच्छता अभियान में जन भागीदारी के साथ साथ लोगों की सोच को भी बदल डाला। अब तो मुझे जाना ही होगा।
1: गांव की महिलाएं स्वच्छिका को फूलों से सजा रही हैं, बच्चे नाच रहे हैं।
0: तुम सबकी मेहनत ने दूषिका को हराया, लेकिन याद रखो अगर सफाई की आदत छूटी तो वह लौट सकती है। इसीलिए बहनों सफाई को आदत बनाओ, मजबूरी नहीं। अरे गांव वालों शौचालय में रोज रोज सफाई की क्या जरूरत है, गंदा तो होना ही है, छोड़ दो ना, क्या फर्क पड़ता है।
1: फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है दूषिका, गंदे शौचालय से ही प्रदूषण बढ़ता है, अगर हम रोज सफाई करें तो तुम दम तोड़ दोगी।
0: ये दूषिका फिर से गांव में आके हमारे घरों में बीमारी फैलाना चाहती है, देखो कैसे भूतनी की तरह हंस रही है। गांव वालों अब से सफाई को ही अपनाओ। औरतें ही तो करती हैं ये साफ सफाई, पुरुष क्यों हाथ लगाए, अब नहीं बोलोगी। सफाई किसी एक का काम नहीं, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। अगर सब मिलकर साफ करें तो किसी पर भी बोझ नहीं पड़ेगा। हमारे घर में शौचालय है लेकिन बदबू बहुत आती है, बच्चे तो पास भी नहीं जाते।
1: तो समझाइए उनको बहन, शौच के बाद पानी डालना सिखाइए उनको, शौचालय का महत्व बतलाइए उनको।
0: अच्छा तुम्हारे घर में अब भी सफाई नहीं हुई क्या, चलो चलो मैं आती हूँ तुम्हारे घर, यही तो है मेरी असली ताकत, चलो आती हूँ। सुनो सब लोग, शौच के बाद हाथ ना धोना बीमारी को न्योता देना है। हाथ साबुन से अच्छे से धोना उतना ही जरूरी है जितना खाना खाना। अरे तब क्या कहोगे सुजल, हर किसी के पास फिनाइल और डिटर्जेंट थोड़ा ही ना होता है।
1: फिनाइल ना हो तो देखिए नींबू, नमक, राख से भी मदद ले सकते हैं हम। सफाई का तरीका ढूंढा जा सकता है, बस इरादा होना चाहिए कि शौचालय साफ रहेगा।
0: अरे खुले में शौच से तो हवा चलती है, खेत में ताजगी रहती है, ये बंद कमरा कुटन और बीमारी। खुले में शौच से ताजगी नहीं बीमारी और शन फैलती है, शौचालय में हवा की निकासी हो तो ताजगी भी रहती है और इज्जत भी।
2: हाँ हम सब समझ गए दूषिका, हम समझ गए, अब तुमसे नहीं डरेंगे, शौचालय को साफ रखेंगे, रोज उपयोग करेंगे, हाथ धोएंगे और तुम्हें भगा देंगे।
0: ये तुम सब क्या कर रहे हो, लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। नहीं दूषिका, हम उनको सिर्फ जागरूक कर रहे हैं।
1: गांव रामपुर अब नहीं रहा पहले जैसा, हर गांव में शौचालय है और उसका रख रखाव भी, बच्चे बीमार नहीं होते, महिलाएं सुरक्षित हैं और दूषिका वो तो हार चुकी। ये है असली सुजल स्वच्छ गांव की तस्वीर। स्वच्छ भारत का सपना है, हर गली में स्वच्छता है, शौचालय की जिम्मेदारी, हर दिल की अब तैयारी। सुजल स्वच्छ गांव, सुजल स्वच्छ भारत।
0: मजा आ गया ना हमारे कैरेक्टर स्वच्छ का सुजल कुमार को लेकर रामपुर गांव में इस तरह का नाटक खेला जा रहा है, और हमको लगता है कि नाटक सुनकर देश के बाकी हिस्सों में भी जरूर अपने अपने गांव में जागरूकता लाने के लिए नाटक खेले जाने की इच्छा तो जरूर ही रही होगी। इस रेडियो कार्यक्रम के अलावा और लोग कम्युनिटी इंगेजमेंट के जरिए बता भी रहे होंगे। इस संदर्भ में चलो गांव में एक स्वच्छता चैंपियन से बातचीत सुन लेते हैं।
1: स्वच्छता चैंपियन, ये कौन होते हैं?
0: सुजल स्वच्छता चैंपियन वो व्यक्ति होते हैं जो स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने, जो लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में बताने में, शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये लोग स्वच्छता को बढ़ावा देने और समुदाय में स्वच्छता की आदतें विकसित करने के लिए काम करते हैं। वे लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करते हैं और उन्हें स्वच्छता के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। समुदाय में सक्रिय स्वच्छता चैंपियन समुदाय में सक्रिय रूप से काम करते हैं और स्वच्छता के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का भी आयोजन करते हैं। ऐसे ही एक चैंपियन अब हमारे साथ हैं।
3: नमस्ते सर,
4: आप स्वच्छता के बारे में क्या समझते हो?
3: स्वच्छता न भरमते घेर शौचालय जो सब ने शौचालय में जाओ जो हाथ साबुन ही धोना शौचालय जाओ बाद ने घेरमा साफ सफाई रखवानी कसरू कुटू घेरमा साफ कर खाडा में डालवानू नेबू पानी खराब नहीं हो जाए खाडा में डालवा निकास करवानो खाडा में पानी पेलखा पानी भी साफ नहीं है तो जहर पर साफ पानी डाल छाणी इतना ढाकी मेलवानो एक लोटी मेली ने लोटी ही निकाले गिलास में निकाले भी साफ मतलब घेर ने साफ सफाई रखवा ही छोरा गंदगी नहीं रहे छोरा ना छोरा साफ

0: मन फिर मरे तो हम फिर हमारे घे ने मन मन की किम साफ सफाई करवानु ये जानकारी हम सब फिर बैठक ही हम सब जानकारी में।
1: तो दीदी तुम्हारे घर शौचालय बना हुआ है कि नहीं है?
0: हमारा घर शौचालय बनावेलु से
1: ते तुम घेर थी बनायो कि सरकारी मिली?
0: यु तो सरकार ना भी सरकारी से पर सरकार ना भी आधा पैसा ना आधा हमारे घेर ना पैसा करी ना हमें एक असल बनाए ले दो शौचालय घड़ी घड़ी बनाए नहीं तो हमें असल बनाए ले दो।
1: दीदी आप तो मतलब घर से निकलने वाला कचरा उसको का एक जगह इकट्ठा करते कि आप फेंक देते हो?
0: घेर मान कचरो हूँ इकट्ठा करे नी खाडा मा खाडो बनाए ले तो ना खाडा मा कचरो पूरा नाखी।
1: दीदी आप बताओ कि जो अपना घर से निकलने वाला पानी जैसे बर्तन साफ करते नहाते धोते वो पानी को आप कैसे निकास करते
0: हैं? ते पानी हम बर्तन करी उंगली चित्रा धोवी ये पानी सब हम एक नाले बना भी नहीं एक खाडो पहाड़ में खोद में इतना खाडा में पूरा पानी जाए ते दिन में जमीन में रंजी जाए पानी ना खड़ा मा तो वैसे एवं फैलाड़ी नहीं तो फैलाड़े ही मच्छर ने पड़े गंदगी ही फिर बीमारियां था करी एक खाडो खोद में इतना खाडा मा सब पानी जाए तिरंजी जाए मैं।
1: दीदी एक बार आपका पूरा परिचय दे दो।
0: मारा नाम सोनिया वास्केल से गांव माछिया से तहसील रामा जिला झाबुआ से महिला में हम 2020
2: जोड़ा। स्वच्छता चैंपियन सचमुच समुदाय में स्वच्छता की स्थिति में सुधार लाने में बहुत मदद करते हैं। वो स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाते हैं और लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करते हैं। स्वच्छता चैंपियन बनकर आप अपने समुदाय में स्वच्छता की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं।
3: मुझे ऐसा लगता है कि सुजल की स्वच्छता एक सोच है और ये सोच हर मन में विकसित हो सकती है। हम बच्चों को जब सिखाते हैं कि यहाँ पर कागज मत फेंको या यहाँ पर केले का छिलका मत फेंको, डस्टबिन में डालकर आओ, इस समय से ही बच्चों के मन में यह सोच विकसित होनी शुरू हो जाती है।
2: सही कह रही हो स्वच्छिका। जब मैं छोटा था ना, गांव के स्कूल में जाता था तो वहां पर हमारे गुरुजी हमको स्वच्छता की बहुत छोटी छोटी बातें इसी तरह सिखाते थे और बाल मन में पड़े हुए प्रभाव के बाद आज भी मैं कहीं गंदगी देखता हूँ ना तो उसको साफ करने की कोशिश करने लगता हूँ।
3: तो क्या तुम गांव के स्कूल में ही पढ़े हो?
2: हाँ, मेरी सारी शुरुआती शिक्षा गांव में ही तो हुई और इसीलिए मैं एक स्वच्छता चैंपियन की तरह काम करता हूँ। स्वच्छ पेयजल और साफ सफाई बनाए रखने में लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ।
3: हाँ सुजल ठीक बोले, और आजकल तो गांव में कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव बहुत अच्छे से काम कर रहा है।
2: अच्छा सोचिका, ये कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव क्या चीज है?
3: ये लो, सारी रामायण खत्म हो गई और अब तुम पूछ रहे हो कि राम का किरदार कौन है।
2: अरे बस पहली ही बुझाओगी या कुछ बताओगी भी कि ये कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव क्या है?
3: अरे भाई ये कोई रॉकेट साइंस नहीं बल्कि स्थानीय समुदाय द्वारा एक ऐसा प्रयास है जिसमें गांव के लोग खुद योजना बनाते हैं, निर्णय लेते हैं, श्रम करते हैं और खुद ही निगरानी भी करते हैं।
2: ओहो अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि हमारा समुदाय ही खुद आगे बढ़कर गंदगी को मिटाने लगता है?
3: हाँ भाई हाँ। अभी तक क्या मैं विदेशी भाषा में बोल रही थी? और इसमें हमारी सरकार समुदाय की मदद भी करती है। इसमें सरकार की भूमिका यहाँ सहायक की होती है, आदेश देने वालों की नहीं।
2: अच्छा अब समझा, यानी कि तुम ये कह रही हो कि ये मॉडल सबकी भागीदारी सबकी जिम्मेदारी इसी पर आधारित है।
3: ऐसे तो तुम बड़े इंटेलिजेंट बनते हो, लेकिन अब आई ना तुम्हें ठीक से अकल, अब तुम बिल्कुल ठीक समझे। इसमें सबकी भागीदारी सबकी जिम्मेदारी होती है।
2: लेकिन सोचिका ये समुदाय आधारित पहले काम कैसे करती है? मतलब कुछ तो तरीका होगा ना?
3: ओहो तुम तो बुद्धू के बुद्धू ही रह गए। देखो ग्राम स्तर पर स्वच्छता समितियों का गठन किया जाता है और ये समितियां ग्राम पंचायत के अधीन कार्य करती हैं और उसमें महिलाओं को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप

0: या युवा शिक्षकों के रूप में या अन्य वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है।
1: अच्छा, समझा समझा, अब समझ गया। यानी कि तुम उसी समिति की बात कर रही हो जो गांव में शौचालय निर्माण की निगरानी करते हैं, ठीक है ना?
0: बिल्कुल ठीक पकड़े हो सुजल, अब जली है तुम्हारे दिमाग की बत्ती। ग्राम स्तर की स्वच्छता समिति, शौचालय निर्माण की निगरानी, व्यवहार परिवर्तन, अभियान स्वच्छता निधि का उपयोग और ऑडियो सत्यापन की तैयारी जैसे कई दायित्वों का निर्वहन करती है ये।
1: बस बस देवी जी, मैं समझ गया। तुमको बताऊं, वो किरण दीदी जो अभी आई थी ना हमारे नुक्कड़ नाटक में, वो भी ग्राम स्तर पर स्वच्छता समिति की सदस्य हैं।
0: हाँ, मैं समझ गई, तभी तो तुम्हें इतनी जानकारी है।
2: जिंदगी में हर चीज का विकल्प है, लेकिन पानी का कोई विकल्प नहीं। अब बातें नहीं होंगी, अब मुहिम चलेगी। बारिश का पानी बन सकता है आपकी जिंदगी, हर बूंद में मुस्कुराएगा आपका कल। सोच जो आपका समय बदल दे। आखिरी बूंद।
1: अब हम चलते हैं उस सेगमेंट की तरफ जहां पर श्रोता साथियों के नाम होते हैं, प्रश्न हमारे उनके जवाब होते हैं। तो पिछले एपिसोड में, यानी कि एपिसोड नंबर 1 में, हमने स्वच्छ गांव के लिए कोई बढ़िया सा स्लोगन भेजने के लिए कहा था और साथ ही कहा था कि अच्छे स्लोगनों को इनाम भी दिया जाएगा।
0: अरे तो क्या कुछ अच्छे स्लोगन आए हैं?
1: बिल्कुल आए हैं स्वच्छिका जी, और उनमें हमने 3 अच्छे स्लोगन छांट भी लिए हैं। उन श्रोता साथियों को अब हम इनाम भी देंगे, लेकिन फिलहाल सुनते हैं उन श्रोता साथियों के नाम और उनके भेजे गए स्लोगन्स। पुरुषोत्तम भाई लिखकर भेजते हैं, जल जीवन का अनमोल रतन, इसे बचाने का करो जतन। भाई वाह, क्या स्लोगन दिया है। दूसरा स्लोगन है जिसे भेजा है सत्तार भाई ने, जिसे अब तक ना समझे वो कहानी हूं मैं, मुझे बर्बाद मत करो पानी हूं मैं। भाई वाह साहब, बहुत ही प्यारा लिखा। और लीजिए दोस्तों, तीसरा स्लोगन है जिसे लिखा है सुदर्शन भाई ने, जल है जीवन की धारा, हमें मिलकर है इसे बचाना, बिन जल धरती बेजान, ये बात है सबको समझाना। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर स्लोगन लिखा दोस्त।
0: वाह, ये तो बड़े अच्छे अच्छे स्लोगन लिखकर भेजे हैं हमारे श्रोता साथियों ने। अब हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वे हमारे केंद्र में आकर अपने इनाम लेकर जाएं। आप सभी को बधाई और धन्यवाद।
1: और अब इस अंक का सवाल लीजिए। आरओ का इस्तेमाल करना आज बहुत से क्षेत्रों में मजबूरी बन चुका है। अधिकांश घरों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इससे बहुत सारा पानी बर्बाद भी होता है दोस्तों। स्वच्छ पानी पीने के लिए आप आरओ का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, यह जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि आप हमारे प्रश्न का जवाब दें कि आरओ से निकला हुआ पानी कहां कहां इस्तेमाल किया जा सकता है।
0: श्रोता साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आरओ के लिए 1 गिलास पानी के बदले 3 गिलास पानी बस यूं ही बहता रहता है। स्वच्छ पानी पीने की चाहत में हम बहुत सारे मिनरल्स को अलग करके इस यंत्र का उपयोग तो करते हैं, लेकिन व्यर्थ बहते पानी को रिसाइकिल नहीं करते और उसका पुनः इस्तेमाल भी नहीं कर पाते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है कि आरओ से निकले हुए व्यर्थ बहते हुए पानी का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं और कैसे।
1: चलिए दोस्तों, चलने का वक्त हो गया, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ और भी बता दें। और आप जानते हैं कि हम आपको क्या बताएंगे, है ना? आज आप सुन रहे हैं स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जबानी, कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड। आज के इस एपिसोड में हमने चर्चा की कि हम अपने शौचालय का रख रखाव और उसकी साफ सफाई कैसे करें, स्वच्छता जरूरी क्यों है, स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम और अब तक की हुई प्रगति की झलक।
0: और साथियों, अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे हर घर जल कार्यक्रम और अब तक हुई प्रगति की झलक के संदर्भ में जानकारी।
1: क्या आप जानते हैं कि जल जीवन मिशन में जल उत्सव या जल अर्पण दिवस क्या होता है? इस जानकारी के साथ ही जल जीवन मिशन के जारी होने से पहले लॉन्च और अब तक के कवरेज सहित मिशन के बारे में नल जल कनेक्शन की उपलब्धियां, जल परीक्षण में महिलाओं की भूमिका, मिशन के घटक आदि के बारे में अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे।
0: अब आप अपने प्रश्न का जवाब हमको भेजिए। अपने गांव में शौचालय के रखरखाव पर उसके प्रति नजर रखिए, लोगों को बताइए, खुश रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वच्छता फैलाइए और अपने देश को स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ भारत यानी सुंदर भारत।
1: कार्यक्रम के अगले एपिसोड में दोस्तों हम फिर मिलेंगे। तब तक सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो, रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज। फिलहाल स्वच्छिका और सुजल को दीजिए इजाजत। नमस्कार। दोस्तों एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ। इंसान और हिमालय में बहुत सारी समानताएं हैं। सबसे बड़ी समानता तो यही है कि दोनों सबसे ऊपर पहुंचना चाहते हैं और बस इसी की जद्दोजहद में इनके जीवन में तमाम तरह की उथल पुथल लगी ही रहती है। फिर भी दोनों रुकते नहीं हैं। दोनों की यही खूबी इन्हें एक दूसरे के करीब भी ले आती है और जोड़ भी देती है। जैसे ही आप हिमालय के नजदीक पहुंचेंगे वैसे ही इस धरती के सबसे युवा प्राणी बियानी की आप और सबसे युवा पर्वत श्रृंखला हिमालय के बीच एक रोमायनी शुरुआत हो जाएगी। दोनों ही अभी विकसित होने की प्रक्रिया में हैं, इसलिए दोनों ही अब भी बढ़ रहे हैं। अपने चरम को पाने की कोशिश में दोनों की यात्रा जारी है और वो चक्र कभी थमेगा नहीं। हालांकि हिमालय के लिए अपनी चोटी या चरम को छूना आसान नहीं है। अपने विकास के इस प्रयास में वो विशाल पर्वत रोज टूटता है और इससे बड़े बड़े हिमस्खलन होते हैं। हिमनद बनते हैं, टूटते हैं, लेकिन इन तमाम घटनाओं और अवरोधों के बाद इसकी यात्रा में कभी ठहराव नहीं आता। साफ तौर से दिखने वाली ये सारी अफरा तफरी इस पर्वत श्रृंखला के बढ़ने और अपने चरम को छूने की कोशिश का ही एक नतीजा है। यही बात मनुष्य के साथ भी देखने को मिलती है। जब भी कोई आदमी आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसके जीवन में मुश्किलें तो देखो दोस्तों आती ही हैं। ये बेहद सांकेतिक है। पर्वत श्रृंखला के बढ़ने से हर रोज भूचाल, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक घटनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक ऐसा ही हाल इंसान के जीवन का भी तो है। जब आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो आपके जीवन में भूचाल आएंगे, मुश्किलें आएंगी और वो सारी मुश्किलें आपका पीछा करेंगी। तो जो लोग निष्क्रिय होते हैं, बस यूं ही आलस में पड़े रहते हैं और बढ़ना नहीं चाहते, उनके जीवन में ठहराव होता है। वैसे तो देखने को उनका जीवन औरों से बेहतर नजर आता है, लेकिन सच्चाई तो देखिए दोस्तों कुछ और ही है। बेकार बैठे रहने से या कुछ नहीं करने की ललक से जीवन को नीरस बना ही दिया जाता है। जीवन बहुत बोरिंग हो जाता है, बहुत सुस्त हो जाता है, जीवन बेजान सा हो जाता है। जो लोग अपने विकास के लिए निरंतर कोशिश करते हैं उनके जीवन में तो देखो उथल पुथल होगी ही ना, और ऐसा होना जरूरी भी है, तभी इंसान विकास के लिए आगे बढ़ेगा। हिमालय में सबसे बड़ा हिमस्खलन कोई 5 करोड़ साल पहले हुआ था। तब से अब तक यह 5 मिलीमीटर की रफ्तार से धीरे धीरे हर साल ऊपर उठ रहा है। हालांकि महाद्वीप पर इसका विस्तार चौड़ाई में भले ही 5 सेंटीमीटर हर साल हो रहा हो, लेकिन ऊंचाई के मामले में ये 5 मिलीमीटर की सालाना दर से बढ़ रहा है। जीवन के साथ भी हमेशा यही होता है दोस्तों, आप धरातल पर कितना भी कुछ कर लीजिए लेकिन इससे ऊंचाई तो थोड़ी सी ही बढ़ती है। ये सिद्धांत सब पर लागू है, फिर चाहे आप भौतिक सुख या कल्याण की खोज में जुटे हों या फिर आध्यात्म की तरफ घूम गए हों।

जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है।

0: दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइए बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए।
1: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
2: देखो भैया, इस खोने लगे तो पूजा पाठ कर लेना। मोहब्बत होगी तो मिल जाएगी, बला होगी तो टल जाएगी।

रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज। एक मूर्तिकार बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां बनाता था। वो उन्हें बेचकर अच्छा पैसा कमा लेता था। जब मूर्तिकार का बेटा बड़ा हुआ तो वो भी मूर्तियां बनाने लगा। लोग उसकी मूर्तियों को बहुत पसंद करते, लेकिन जब भी वो कोई मूर्ति बनाता उसका पिता कोई ना कोई कमी निकाल देता। वो खुशी खुशी अपने पिता की सलाह पर अमल कर लेता। इस तरह लगातार सुधार से बेटे की मूर्तियां अपने पिता से भी ज्यादा अच्छी बनने लगी। मूर्तिकार कभी कभी अपने बेटे की मूर्तियों में कमियां निकाल ही देता था फिर भी, लेकिन उसके बेटे को ये अब अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उसके सब्र ने जवाब दे दिया। वो बोला, पिताजी आप तो ऐसे कहते हैं जैसे आप बहुत बड़े मूर्तिकार हो। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियां इतने कम दामों में ना बिकती। मुझे अब आपकी सलाह की कोई जरूरत नहीं है, मेरी मूर्तियां बिल्कुल ठीक हैं। इसके बाद पिता ने कमियां निकालना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि लोग अब उसकी मूर्तियों की इतनी तारीफ नहीं करते जितनी पहले किया करते थे। उसकी मूर्तियों के दाम बढ़ने के बजाय कम होने लग गए और बिक्री भी बहुत घट गई। शुरू शुरू में उसको कुछ समझ नहीं आया। फिर वो अपने पिताजी के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। उसके पिता ने कहा, बेटा मैं जानता हूं कि तुम्हारी जैसी मूर्तियां मैं नहीं बना सकता। ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से कभी तुम्हारी मूर्तियां बेहतर बनी हो, लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां दिखाता था तब तुम उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करने लगते थे बेटे। वही कोशिश तुम्हारे कामयाब होने का बहुत बड़ा कारण थी। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए, बस तुम्हारी कामयाबी रुक गई। दोस्तों, ठीक इसी तरह संसार में कोई भी इंसान किसी भी काम में 100% उत्तम तो हो ही नहीं सकता। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। बस हमें उस कमी को ही तो तलाशना है और उसे ठीक करने की कोशिश करनी है। इसी कमी की तलाश करने के लिए हमें असंतुष्ट होना सीखना होगा, तभी हम इस जीवन में आगे बढ़ पाएंगे।

दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी। आइए दोस्तों, आज आपको मिलवाते हैं धीरेन सोलंकी से, जो एक युवा हैं और पशु पालक किसान हैं। दोस्तों, कुदरत ने इस धरती पर जितने भी जीव पैदा किए हैं, उसने उनमें कुछ ना कुछ उपयोगिता डाली। ये हम इंसानों की प्रॉब्लम है, हम इंसानों की कमी है, जो उनकी अहमियत को नहीं देख पाते और किसी जीव को पूजने लगते हैं, किसी से नाराज हो जाते हैं और किसी का मजाक उड़ाते हैं। कम से कम उत्तर भारत में तो गधों को इज्जत की निगाह से तो नहीं देखा जाता। क्यों दोस्तों, गधे ही तो गधे ही होते हैं, है ना, ऐसा कहा जाता है। और तो और, किसी की बेइज्जती करनी हो तो उसे गधा कह दिया जाता है। अब भला गधे जैसे जीव का इसमें क्या दोष है? यूं देखा जाए तो गधों से काम भी जम के लिया जाता है, लेकिन उन्हीं पर मजाक करते हुए मुहावरे भी बना दिए जाते हैं। लेकिन गुजरात के धीरेन सोलंकी के लिए गधी किसी नेमत से कम नहीं। इस जानवर ने महज 22 साल की उम्र में ही इन्हें करोड़पति बना दिया। जी हां, सुन के अजीब सा लगा होगा आपको, तो लीजिए सुनिए। धीरेन की इस कामयाबी ने यह साबित किया कि यदि आपके पास नया आइडिया हो, धैर्य हो और आगे बढ़ने का जज्बा हो, तो गधी जैसा जानवर भी आपको मालामाल कर सकती है। आपको सुनकर हंसी आ रही होगी दोस्तों। गुजरात के पाटन जिले के मनुंद गांव में पैदा हुए धीरेन सोलंकी का सपना किसी निम्न मध्य वर्गीय परिवार से कुछ ज्यादा नहीं था। पिता अरविंद भाई सोलंकी चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर किसी सरकारी स्कूल में मास्टर बन जाए तो परिवार की कुछ आर्थिक मदद हो जाएगी। धीरेन अपने परिवार और पिता की अपेक्षाएं समझते थे, उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। विज्ञान संकाय से स्कूली पढ़ाई पूरी की, फिर उन्होंने प्राइमरी शिक्षक प्रमाण पत्र लिया, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की और केंद्रीय विद्यालय संगठन इस तरह की सभी परीक्षाएं पास कर ली, लेकिन कोई स्थायी नियुक्ति, कोई नौकरी नहीं मिली। छोटी मोटी नौकरियां की, लेकिन उनसे क्या होता। साल 2020 में पड़ोस के प्रदेशों में आयोजित शिक्षक बहाली परीक्षाओं में भी बैठे वो, लेकिन हर जगह एक लंबा इंतजार था। करीब 6 महीने तक परिणामों का इंतजार करते करते उन्हें निराशा घेरने लगी। बेटे की चिंता पिता को भी परेशान करने लगी। अब जाहिर है, कारोबारी बनने का गुजराती जज्बा जाग उठा। धीरेन के पिता ने कहीं पढ़ा कि केरल और कर्नाटक में गधी पालन कारोबार भी होता है। देश में गधी के दूध की मांग या उसके उपयोग के बारे में उतनी जानकारी तो किसी को नहीं थी, लेकिन मलेशिया, चीन और तुर्की जैसे देशों में इसकी बड़ी भारी मांग थी। अरे वाह, अरविंद भाई सोलंकी ने यह बात अपने बेटे को बताई। धीरेन तो इस आइडिया से चौंक गए। उन्होंने शिक्षक बनने के सारे सपने छोड़कर ऑनलाइन इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब तक उन्हें यह भी पता नहीं था कि भला इस दूध का क्या क्या उपयोग होता होगा। यहां तो भैंस गाय के दूध के 60 रुपए लीटर होने पर इतना हंगामा हो जाता है, तो गधी के 1 लीटर दूध की कीमत 1000 रुपए जानकर तो वो हैरानी रह गए। दरअसल गधी के दूध में रोग प्रतिरोधी गुण बहुत होते हैं, लिहाजा कई दवाओं में इसका इस्तेमाल होता है। गाय के दूध से एलर्जी हो जाने वाले नवजातों के लिए भी
ये किसी राम बाण से कम नहीं होता। फिर कई तरह के सौंदर्य उत्पादों में भी इसकी भारी मांग है। धीरेन के पास डंकी फार्म शुरू करने का कोई व्यवहारिक प्रशिक्षण भी नहीं था। सिर्फ पिता के हौसले और आत्मविश्वास की बदौलत उन्होंने साल 2022 में अपना डंकी फार्म शुरू किया। इसके लिए उन्होंने करीब 40 लाख रुपए का कर्ज उठाया। इस रकम से उन्होंने 20 गधी खरीदी और एक 30x40 फीट का शेड बनाकर तैयार किया, जहां इन पशुओं को रखा जा सके। धीरेन ने सोचा था कि आज गधी खरीदी और कल से उसके दूध की बिक्री शुरू हो जाएगी, लेकिन गुजरात में तो इसकी कोई मांग थी ही नहीं और विदेश में इसे पाउडर के शक्ल में भेजा जाना था। पहले साल तो उन्हें बहुत घाटा हुआ, क्योंकि दूध को सुरक्षित रखना और उसे पाउडर में बदलने की तकनीक उनके पास थी ही नहीं। इस काम को करने वाली कंपनियों से करार करते करते और तालमेल बैठाते बैठाते साल भर निकल गया। उन्हें पहला ऑर्डर 50 किलोग्राम पाउडर का मिला। अमूमन 1 किलो पाउडर तैयार करने में 16 से 17 लीटर दूध लग जाता है। संजोग से उस वक्त उन्होंने 200 किलो पाउडर का भंडारण कर रखा था। 63,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उन्हें भुगतान मिला। काम बस चल निकला। अब पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। ई कॉमर्स ने उन्हें ग्राहकों का एक विशाल फलक मुहैया करा दिया। आज उनके पास हलारी नस्ल की करीब 40 गधी हैं, जिनके दूध से धीरेन 3 लाख रुपए महीने की कमाई कर रहे हैं। उन्होंने मवेशियों की देखभाल के लिए 3 से 4 लोग भी रखे हुए हैं और अपने पिता के साथ खुद भी पूरी तरह जुटे रहते हैं। धीरेन की यह यात्रा उन हजारों लाखों नौजवानों को रास्ता दिखाती है जो अपना बेशकीमत वक्त तंत्र और शासन को कोसने में लगा रहे हैं। धीरेन अगर सोचते ही रहते कि गधी के दूध का कारोबार करने पर समाज उनकी क्या खिल्ली उड़ाएगा, तो वो आज जिस जगह हैं वहां कभी नहीं पहुंचते। खुद के रोजगार को अंतिम विकल्प के तौर पर देखने का नजरिया बदलने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि इससे सिर्फ अपनी भलाई नहीं होती, बल्कि आप उसके विस्तार के साथ समाज और देश का भी भला करते हैं। बतौर शिक्षक बच्चों को शिक्षित करने का सुख धीरेन को अवश्य मिलता, मगर वो 4 लोगों को रोजगार नहीं दे पाते। आज वो एक शिक्षक के औसत तनख्वाह से कई गुना ज्यादा कमा रहे हैं। धीरेन सोलंकी की तरह जो भी अनूठी योजना के साथ आगे कदम बढ़ाएगा, कामयाबी तो दोस्तों से मिलेगी ही।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: जेलर ने पूछा, सुनो कल तुम्हें फांसी होगी, बताओ आखिरी इच्छा है कुछ? कैदी ने कहा, जी मैं तरबूज खाना चाहता हूँ। जेलर ने कहा, लेकिन ये तरबूज का तो मौसम ही नहीं है। कैदी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज।
2: जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख।

0: दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी।
1: ऐसा लिखा गया है कि सुदामा जी जब भगवान के यहां से चले तो भगवान ने उन्हें कुछ नहीं दिया। सम्मान तो किया लेकिन दिया कुछ नहीं। अब दूसरा कोई होता तो नाराज हो जाता कि मैं आपके यहां अब कभी नहीं आऊंगा। आप किस तरह के दोस्त हो? मैं तो गरीब ब्राह्मण हूं और मुझे कुछ भी नहीं दिया। मगर जैसे भगवान हैं, वैसे ही सुदामा भी भगवान हो गए, भले ही वो महल में नहीं रहते थे। ऐसा लिखा गया है कि ईश्वर को जानने वाला ईश्वर ही हो जाता है। सुदामा ब्रह्म को पहचानने वाले संत हैं, वो ब्रह्म के समान हो गए। उन्हें वही आनंद चित्त की अवस्था मिल गई, वही श्रद्धा की अवस्था मिल गई जो भगवान को मिली हुई है। तो सुदामा जी ने मांगा कुछ भी नहीं। आज का कोई होता तो हंगामा कर देता, खरी खोटी सुनाता, अनशन पर भी शायद बैठ जाता। सुदामा जी ने भी विचार तो किया कि भगवान ने कुछ दिया नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान गरीब हो गए हों। वैसे भगवान तो कभी गरीब नहीं हो सकते ना। संपूर्णता में जिनको सब कुछ मिल गया हो उन्हें ही तो भगवान कहा जाता है। भग का

मतलब होता है पूरा ऐश्वर्य, पूरी अमीरी, धर्म संपूर्ण, वैराग्य संपूर्ण, ज्ञान संपूर्ण, सभी कुछ तो होता है भग का मतलब। भगवान को गरीबी कैसे आएगी, वो तो समग्र धर्मशाली धनशाली हैं। क्यों, ऐसा तो नहीं कि कंजूस हो गए भगवान? फिर सुदामा जी ने सोचा कि ऐसा क्यों सोचे, भगवान तो परम उदार भी हैं, कल्याणकारी गुणों के समुद्र हैं, प्रेम लगाव और शक्ति के समुद्र हैं, भगवान कभी पाप तो करते नहीं। जितने दुर्भाव हमारे मन में आते हैं दोस्तों, उनका मूल कारण पाप ही है। चाहे गुस्सा हो, लालच हो, द्वेष हो, सबके मूल में बैठा है क्या, पाप। सुदामा जी ने समाधान निकाला। अद्भुत भगवान की कृपा है, भगवान ने हमारे परित्याग को, हमारे को जो दिया, रोम रोम से बाहर से भीतर तक हमारा समुदाय की सेवा के लिए जीवन दिया, उससे कहीं हम अलग ना हो जाएं यही विचार किया होगा, कहीं हम भोगी ना हो जाएं, कहीं हम संतुष्ट ना हो जाएं, कहीं हमारा भजन छूट ना जाए, इसलिए भगवान ने नहीं दिया। कहीं हमारी विशिष्टता लुप्त ना हो जाए, गायब ना हो जाए, कहीं हम समाज के लिए जीना छोड़कर अपने लिए जीना शुरू कर दें, इसलिए भगवान ने हमें कोई भौतिक संसाधन नहीं दिया। अब ये विचारों की महान अवस्था है मित्रों, इससे बड़ा व्यवहार भला क्या होगा। सुदामा जी ने कितना बड़ा समाधान निकाल लिया। अब तो लोग कर्जा लेकर व्यक्तिगत संपत्ति बना लेते हैं, फिर दिवालिया घोषित करके गायब हो जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में हजारों लोग पूर्ण संपत्तिवान होकर भी अपना दिवाला निकाल रहे हैं। ऐसे लोगों को कब और कैसे सुकून मिलेगा, कैसे शांति मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी।

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत, संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की, आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार। रेडियो के साथ बड़े बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए बड़ी कोशिशें जरूरी होती हैं। क्यों, आप कोई भी एक भारी भरकम लड़ाई एक सुई की मदद से कर सकते हैं क्या? तलवार तो चाहिए ही होगी ना। हफ्तों, महीनों और सालों की मेहनत की भी जरूरत हो सकती है। क्यों, आपको क्या लगता है, कोई 3 साल का, 4 साल का बच्चा नर्सरी क्लास छोड़कर सीधे पीएचडी कर सकता है क्या? साल दर साल मेहनत करते हुए आगे बढ़ता है वो, तब शायद 25-30 साल में वो पीएचडी तक पहुंचता है। क्या ये सालों की मेहनत नहीं हुई उस बच्चे की? इतने सालों के बाद जाकर उसे मुकाम हासिल होता है, बढ़िया नौकरी मिलती है या कोई अच्छा व्यवसाय चालू होता है और वो समाज में सफल कहलाता है। कई बार लोग ऐसे लक्ष्य तय कर लेते हैं जो उनकी क्षमता से बहुत ज्यादा होते हैं। देखिए, बुरा ना मानिएगा, कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं होता, लेकिन कोई बहुत ज्यादा पतला दुबला सा व्यक्ति अगर सोचने लगे कि मैं बॉडी बिल्डर बनूंगा, बनने को बन भी सकता है, लेकिन फिर भी हमें ये तो सोचना ही चाहिए ना कि हमारी क्षमता क्या है। हम गलत तरीके से कहीं अपनी क्षमता से ज्यादा का टारगेट तो नहीं ले बैठे। हम अपने लक्ष्यों पर कुछ समय तो मेहनत करते हैं, फिर कोशिशें छोड़ देते हैं क्योंकि वो हमारी क्षमता से परे हैं। जरूरी यह है कि आप सकारात्मक मानसिक नजरिया बनाएं और उसे कायम रखें।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: लड़की ने पूछा, सुनो ये गूगल मेल होता है या फीमेल? लड़का बोला, बेबी हर हालत में फीमेल होता है। लड़की बोली, क्यों? लड़के ने कहा, क्योंकि देखो अपना सेंटेंस पूरा करने से पहले ही वो उसका सजेशन और सब कुछ देना शुरू कर देता है।
2: दुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना कोई।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूँ समीर, कल मिलते हैं।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार प्रोग्राम में दोस्तों, आज की गायिका है अलका याग्निक। जी हाँ, अलका याग्निक का जन्म 20 मार्च 1966 को कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुआ था। उनकी माता का नाम शोभा याग्निक था। अलका ने अपनी पढ़ाई मॉडर्न हाई स्कूल फॉर गर्ल्स कोलकाता से की। घर में संगीत का माहौल था तो बस अलका की रुचि भी संगीत की ओर हो चली। चलिए सुनते हैं उनका गाया हुआ ये गीत।

0: अलका ने अपनी करियर की शुरुआत 6 साल की उम्र में ही शुरू कर दी थी, जब उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के लिए एक भजन गाया। उसके बाद 10 साल की उम्र में वो अपनी माँ के साथ बॉम्बे आईं। बॉम्बे में निर्माता निर्देशक राज कपूर से उनकी मुलाकात हुई, जिन्होंने उनकी आवाज से प्रभावित होकर उन्हें संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से मिलने की सलाह दी। तो हो जाए उनकी आवाज का ये प्यारा सा गीत।
1: जा!

1980 में अलका ने अपना पहला गाना गाया, पायल की झनकार। बतौर सिंगर अलका याग्निक के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि जब उन्होंने गायन को अपना करियर चुना तो उनके सामने भारत के सुर कोकिला लता मंगेशकर और आशा भोसले थीं। लेकिन अलका ने भी इन सब के बीच अपने आप को प्रसिद्ध करने की ठान ली। तो हो जाए इनकी आवाज का एक और नगमा।

1999 में प्रदर्शित फिल्म कुछ कुछ होता है के लिए भी उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने कई भाषाओं की 700 से ज्यादा फिल्मों में करीब 20,000 गाने गाए। तो लीजिए उन्हीं की आवाज का ये गाना।

2012 में हिंदी सिनेमा के 100 सालों के दौरान फिल्म ताल के गीत ताल से ताल मिला को देसी मार्टिनी, हिंदुस्तान टाइम्स, फीवर 104 के द्वारा किए गए एक पोल में उनको सबसे ज्यादा वोट्स मिले। तो ये लीजिए, पेशे खिदमत है उनकी आवाज में एक और गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

जुबी जुबी जुबी मस्ती में गाई जा।

हेलो दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम में हम बात करेंगे अलीशा चिनाई की। 1965 में गुजरात के अहमदाबाद में जन्मी अलीशा का असली नाम सुजाता चिनाई था। 1985 में उनका पहला एल्बम जादू आया था, लेकिन उन्हें असली पहचान तो मेड इन इंडिया गाने से मिली। आइए दोस्तों, सुनते हैं इन्हीं का ये शानदार गीत।

0: क्या उधर
1: दिल से दिल की बात कर
0: चुप भी कर बैठ उधर
1: क्यों खफा है इस कदर
0: आ गई मेरा सर
1: देख मैं तो रो पड़ूंगी हाँ हाँ हाँ
0: अरे रे मेरे पीछे क्यों पड़ी
1: कुछ भी मैं

0: आन जा
1: बिंदरे राजी सगुंगी हाँ हाँ हाँ हाँ
0: ये रोग दिल को ना लगा
1: रोग को लग चुका
0: इश्क ये है एक बला
1: है बला तो भी क्या
0: मैं अकेला ही भला
1: मेरा फिर होगा क्या
0: तेरा जो भी होगा होगा जा जा जा जा जा, जा, जा, जा।

कितने ही गाने आएंगे जाएंगे, लेकिन 90 के पॉपुलर सॉन्ग मेड इन इंडिया को लोग कभी नहीं भुला पाएंगे। 1995 में आए इस गाने को अलीशा चिनाई ने गाया था। इस गाने से ही अलीशा रातों रात संगीत की दुनिया की स्टार बन गई थी। अलीशा की गायकी की वजह से लोग उन्हें क्वीन ऑफ इंडी पॉप कहकर बुलाने लगे थे। लीजिए दोस्तों, सुनते हैं इनका यही मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग।

हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में अलीशा चिनाई की करियर की शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ कि वो सिंगिंग की दुनिया से गायब हो गईं। कोई बात नहीं, लेकिन अपने पीछे वो इतने सुंदर सुंदर गाने छोड़ गई हैं जिनका मजा दुनिया हमेशा लेती रहेगी। लीजिए पेश खिदमत है एक और फड़कता हुआ गीत।

उनके गीत दिल ये कहता है, डूबी डूबी कांटे नहीं कटते, रुक रुक रुक और कजरारे जैसे सुपरहिट गाने हमेशा ही सबकी जुबान पर रहेंगे। लीजिए पेश खिदमत है एक और बहुत प्यारा सा गीत।

or never. Love me forever. It's now or never. Love me forever.

कहा जाता है कि अलीशा को हिंदी सिनेमा में लाने का श्रेय बप्पी लहरी का था। बप्पी दा के साथ मिलकर उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में कई हिट गाने दिए। यही नहीं, अलीशा चिनाई ने अनु मलिक के साथ भी कई हिट सॉन्ग्स दिए। लीजिए सुनते हैं उनका एक और हिट सॉन्ग।

दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: नमस्कार, आदाब और एक बहुत ही खूबसूरत सी शाम आपके नाम। 90.8 FM की तरंगों पर SN रेडियो और रेडियो टांटिया भील पर मैं हूं आपकी दोस्त, शायद आपकी थोड़ी सी खास दोस्त आरती रॉय, लेकर हाजिर हो चुकी हूं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक। दोस्तों, बड़ी आम सी बात है कि जब जिंदगी की हर रोज की भाग दौड़ से हम थक जाते हैं तो संगीत और शायरी ही वो मरहम बनते हैं जो हमें सुकून अता करते हैं। सुरों के इस आंगन में जब लफ्जों को जज्बात का साथ मिलता है तो समाज ऐसे पूरी तरह बदल जाता है। हवाओं में एक अजब सी मिठास घुल जाती है, दिमाग की तनी नसें सहज हो उठती हैं, आंखें बंद हो जाती हैं और दिल पुरसुकून होकर तरानों की जुम्बिश में खो जाता है। आज की ये शाम भी कुछ ऐसी ही होने वाली है, क्योंकि आज हमारे इस सफर में तरानों का कारवां कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा जहां हर धुन आपके दिल पर एक गहरा नक्श छोड़ती चली जाएगी। शायरी के हसीन रंग, जज्बातों की नाजुक कशिश और कुछ बासलाहियत और जहीन फनकारों की आवाज़ें आज की महफिल का मिजाज वाकई लाजवाब होने वाला है। तो सोच क्या रहे हैं, जरा आहिस्ता से दिलों के दरवाजे खोलते जाइए और अपनी रूह को इन सुरीले एहसासों में बस भीग जाने दीजिए। दोस्तों, गुजरी हुई बातें, पुरानी यादें और वो बीते हुए लम्हे इंसान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले अपने दिल से कभी जुदा नहीं कर पाता। हालांकि मेरी इस बात का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इंसान हर वक्त अपने माजी को याद करके रोता बिसुरता रहे, लेकिन सब यादें बोझिल नहीं होती और मैं भी हसीन और जिंदगी से लबरेज लम्हों को याद करने की कायल हूँ। मतलब तो अपनी रूह को सुकून पहुँचाने से है ना। तो संगीत, शायरी और गज़ल इसी सुकून का एक हिस्सा है। कितनी अजीब बात है ना, जब हम गज़ल सुनते हैं तो माजी का एक एक पल हमारे सामने किसी आईने की तरह साफ होता जाता है। बशर नवाज साहब ने यादों के इसी सिलसिले को इस नज़्म में बेहद नज़ाकत के साथ समेटा है और जब इस तहरीर को खयाम साहब की बेमिसाल मौसिकी और भूपेंद्र सिंह साहब की उस गहरी और पुरअसर आवाज़ का साथ मिला तो ये कलाम हर उदास दिल की धड़कन बन गया। भूपेंद्र साहब की गायकी की ये खासियत रही है कि वो हर लफ्ज को सिर्फ गाते नहीं थे बल्कि उसके दर्द को अपनी आवाज में खोल देते थे। जरा इस गजल का ये बेहद हसीन लेकिन संजीदा मिसरा मुलाहिजा फरमाएं, जहां गुजरे जमाने की दास्तां बयां होती है। बशर साहब कहते हैं, ये चांद बीते जमानों का आईना होगा, ये चांद बीते जमानों का आईना होगा। भटकते अब्र में चेहरा कोई बना होगा। भटकते अब्र मीन्स बादलों में चेहरा कोई बना होगा। शायर कहते हैं, ये आसमान पर चमकता हुआ चांद सिर्फ सितारा नहीं है, बल्कि हमारे गुजरे हुए कल की गवाही है। और बादलों के इन टुकड़ों में आज भी किसी का अक्स नजर आता है। और जब मोहब्बत का इंतजार अपनी आखिरी हदों को छूता है, तो बशर साहब लिखते हैं, गली के मोड़ पर सूना सा कोई दरवाजा, तरसती आंख में रास्ता किसी का देखेगा। यादों की इसी महक में जहन, यादों की इसी महक को जहन में समेटे हुए आइए रुख करते हैं आज की हमारी पहली और लाजवाब पेशकश भूपेंद्र सिंह जी की आवाज में। करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी।

दोस्तों आगे सुनाई जाने वाली गजल में मजरू सुल्तानपुरी साहब ने इंसान की शनाख्त, उसकी खुददारी और वजूद की बेबसी को जिस बेबाकी से पेश किया है वो रूह को झकझोर देता है। हम हैं मताए कूचाओ बाजार की तरह, यानी वो कीमती शय या पूंजी जो बाजार के चौराहों पर बिकने के लिए रख दी गई हो, जिसे देखने वाली हर आंख सिर्फ एक खरीदार की हसरत लिए उठती है। ये मिसरा समाज की उस कड़वी हकीकत की तर्जुमानी करता है जहां इंसानी जज्बातों की कीमत लगाई जाती है। और जब मजरू साहब के इन बेबाक और संजीदा अल्फाज को मदन मोहन साहब की रूहानी धुनों का साथ मिला और इसे सुरों की मलिका लता मंगेशकर जी ने अपनी सुरीली आवाज से नवाजा, तो ये गजल जमाने के जुल्म के खिलाफ एक खामोश चीख बन गई। लता जी ने जिस सोज और दर्द के साथ इसे गाया है वो सीधे सुनने वालों के दिलों के पार हो जाता है। इस गजल का एक और बेहद पुरसर और मार्फती मिसरा मुलाहजा फरमाएं, जहां अपनों की बेरुखी का शिकवा है। शायर फरमाता है, मजहूल इस कदर थे कि पहचानता ना था। देखा है सपने हमको गुनहगार की तरह। शायर की जुबानी कि जब हम गुमनाम थे, मजहूल इस कदर थे, जब गुमनाम थे तब किसी ने हमारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, मगर जब जमाने की नजरों में आए तो सबने हमें सिर्फ गुनाहगार के तौर पर ही देखा। और जब तन्हाई अपनी आखिरी हदों को छूती है तो मजरू साहब का ये मिसरा सीधे दिलों को छू जाता है। फरमाते हैं, अब सो चुके हैं राह के पत्थर भी, ऐ मजरू, अब सो चुके हैं राह के पत्थर भी, ऐ मजरू, हम जागते हैं रात के बेदार की तरह। जरा इस मंजर के अकेलेपन को महसूस कीजिए। शायर कहता है कि रात के इस गहरे सन्नाटे में जब रास्ते के बेजान पत्थर भी थक कर सो गए हैं, तब हम अपनी तन्हाई में किसी पहरेदार की तरह अकेले जाग रहे हैं और गुजरे लम्हों को पहरा दे रहे हैं। तो आइए लता जी की अमर आवाज में सुनते हैं मजरू सुल्तानपुरी और मदन मोहन जी का ये अजीम शाहकार। हम हैं मताए कूचाओ बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। आपकी नजर

दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी ऐसा भी वक्त आता है जब इंसान किसी नई तकलीफ में नहीं होता, बल्कि उसका पुराना अतीत ही एक तयशुदा ढर्रे की तरह लौट कर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। राजेंद्र कृष्ण साहब ने इस कलाम में उसी सिलसिले को पकड़ा है, जहाँ हर ढलती हुई शाम बिना किसी नए सबब के पुरानी यादों का एक बहुत शांत सा साया लेकर चली आती है। ये कोई चीखता दर्द नहीं, बल्कि एक बेहद खामोश और गहरा सन्नाटा है। और जब इस कैफियत को आवाज देने की बात आई, तो बूझिए माइक पर कौन आया? किंग ऑफ सिल्कन वॉइस, यानी हमारे तलत महमूद साहब। उनकी गायकी का वो निराला अंदाज जिसमें एक खास किस्म की धीमी थरथराहट थी, वो इस कलाम के साफ अल्फाज के साथ इस कदर घुल गया कि सुनने वाले का जहन एक मखमली आगोश में सिमट जाता है। जरा इस गजल का ये बेहद नाजुक और नायाब मिसरा मुलायजा फरमाएं, जहां दिल अपनी ही धड़कनों से परेशान है। बकौल शायर, आस का टूट जाना कोई नई बात नहीं, आज फिर टूटी है तो क्यों आंख भर आई है। शायर अपने ही दिल से एक सवाल पूछ रहे हैं कि उम्मीदों का बिखर जाना तो इस दुनिया का पुराना दस्तूर है, आज अगर कोई पुरानी हसरत फिर से टूट गई है तो इस कदर हैरान होने या आंखें नम करने की क्या जरूरत है। और इसी कश्मकश का अगला सिरा जरा इस मिसरे में देखिए। दिल की धड़कन से जरा पूछो, दिल की धड़कन से जरा पूछो ऐ सहने वाले, गम की जंजीर बड़ी मुश्किल से सरकाई है। यानी जिन कड़वी यादों को दिल से बड़ी मुश्किल से दूर किया था, वो शाम ढलते ही फिर से दरवाजों पर आकर खड़ी हो गई है। तो आइए अल्फाज से एहसास तक के इस बेहद नफीस और मखमली पड़ाव का लुत्फ उठाते हुए समायत फरमाइए मदन मोहन साहब की धुन में पिरोई राजेंद्र कृष्ण साहब जी की लिखी तलत महमूद साहब की ये बेहद मारूफ पेशकश।

दोस्तों, अगली गज़ल महज एक गज़ल नहीं है, मोहब्बत में मिली उस मुकम्मल बेबसी की दास्तां है, जहां शिकवा भी है, दीवानगी भी है और एक अजीब सा तंज भी है। मशहूर शायर SH बिहारी साहब की कलम से निकले ये अल्फाज उस तकलीफ को बयां करते हैं, जहां सामने वाला ना तो पूरी तरह अपना बनाता है और ना ही दूर जाने की इजाजत देता है। यानी वो कश्मकश जिसमें इंसान ना तो जी पाता है और ना ही सुकून से मर पाता है। और जब इस कलाम को OP नैयर साहब की दिलकश धुन मिली, तो आप जानते हैं इसको गाया किसने? सुरों की जादूगरनी हमारी और आपकी चहेती आशा ताई ने। आशा ताई की आवाज की सबसे बड़ी खासियत यही रही है कि वो हर जज्बात के रंग को बड़ी आसानी से बदल देती थी। इस गजल में उन्होंने जिस ठहराव, दर्द और नजाकत के साथ अपने सुरों को पिरोया है, वो सीधे सुनने वालों के दिल के आर पार हो जाता है। उनकी गायकी का यही वो अंदाज है जिनके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया था। जरा इस गजल का पुरस्कार मिसरा मुलाजा फरमाए, जहां जमाने के सामने मुस्कुराने की मजबूरी बयां की गई है। शायर कहता है, आप ही ने तो मेरे दिल को धड़कना सिखलाया, आप ही ने तो मेरे दिल को धड़कना सिखलाया, आप ही ने तो मेरी आंखों को रोना सिखलाया। फिर शायर कहता है, जिस इंसान ने हमें जीना सिखाया, मोहब्बत की राह दिखाई, अफसोस कि आज उसी के दिए जख्मों को छुपाकर हमें महफिल में मुस्कुराना पड़ रहा है। और जब ये दीवानगी अपनी आखिरी हदों को छूती है, तो आशा ताई की आवाज में ये मिसरा और भी गहरा हो जाता है। काश न होती अपनी जुदाई, मौत ही आ जाती, कोई बहाने चैन हमारी रूह तो पा जाती, एक पल हंसना कभी दिल की लगी ने ना दिया, जहर भी चाहा अगर पीना तो पीने ना दिया। गजल सुनिए आशा ताई की आवाज में।

दोस्तों, जब कोई बहुत अजीज इंसान हमारे जिंदगी के दायरे से दूर चला जाता है तो सिर्फ वो एक शख्स दूर नहीं होता, बल्कि उसके साथ हमारे आसपास की पूरी दुनिया का रंग रूप ही बदल जाता है। राजा मेहदी अली खान साहब ने इस कलाम में दिल की उस वीरानियत को लिखा है जहाँ इंसान को भरी दुनिया में भी हर चीज अधूरी, हर कोना खाली और हर मंजर सूना नजर आने लगता है। और जब इस अधूरेपन को सुरों का लिबास पहनाने की बात आई तो सुरों के शहंशाह मोहम्मद रफ़ी साहब ने माइक संभाला। रफ़ी साहब की आवाज़ में वो जादुई कशिश थी कि वो बिना किसी बनावट के सिर्फ अपने लहजे के धीमेपन से दिल में एक अजीब सी टीस पैदा कर देते थे। मदन मोहन साहब की इस नाजुक धुन पर जब रफ़ी साहब तेरे बगैर का आलाप लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई तन्हा दिल खामोशी से सुबक रहा है। जरा इस नज्म का बेहद हैरान कर देने वाला मिसरा सुनिए जहां शायर की नजर में कुदरत के मायने ही बदल गए हैं। फूल खिले तो यूं लगे फूल नहीं ये दाग हैं, फूल खिले तो यूं लगे फूल नहीं ये दाग हैं, तारे फलक पे यूं लगे जैसे बुझे चिराग हैं। गौर फरमाइए दोस्तों, जो फूल और तारे किसी को मुस्कुराना सिखाते हैं, महबूब की जुदाई में वो फूल भी दिल के जख्म जैसे लगते हैं। और आसमां के टिमटिमाते तारे बुझे दियों की तरह बेजान नजर आते हैं। और जब इस उदासी के बीच हल्की सी किरण जगती है तो रफ़ी साहब की आवाज में ये मिसरा सीधे रूह में उतर जाता है। चांद घटा में छुप गया सारा जहां उदास है, कहती है दिल की धड़कनें तू कहीं आस पास है। दूरियों के इस लंबे सफर और दिल की इस बेकरारी को महसूस करने के लिए आइए रुख करते हैं आज की हमारी इस खूबसूरत पेशकश की तरफ। कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर, रफ़ी साहब की आवाज़ में आपकी नज़र।

दोस्तों, ज़िंदगी के इस लंबे सफ़र में कभी कभी कोई दूसरा इंसान गलत नहीं होता और ना ही हालात इतने बुरे होते हैं। बस ये वक्त का पहिया कुछ इस तरह से घूमता है कि दो बेहद नज़दीकी लोग भी चुपचाप एक दूसरे से अजनबी से हो जाते हैं। मशहूर शायर कैफ़ी आज़मी साहब ने इस शाहकार में वक्त की इसी बेरहमी को, बेरहमी के हसीन सितम को कहा है। एक ऐसा जुल्म जो खामोशी से होता है, जहां ना कोई शिकवा होता है ना कोई चीखो पुकार, बस इंसान का पूरा वजूद ही अंदर तक हिल जाता है। और जब इस खामोश तबाही को सुरों का लिबास पहनाने की बात आई तो सामने आई हमारी गीता दत्त साहिबा। गीता जी की आवाज में वो एक अजब सा सोज और धीमापन है जो सुनने वालों के जहन में छा जाता है। एसटी बर्मन साहब की इस जादुई और तारीखी मौसीकी में जब गीता जी की आवाज गूंजती है तो ऐसा लगता है जैसे तन्हाई खुद अपना अफसाना सुना रही हो। जरा इस नज़्म का ये मिसरा मुलाहिज़ा फरमाएं, जहां दूरियों के बीच की कश्मकश बयां हुई है। बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे, तुम भी खो गए हम भी खो गए, एक राह पर चल के दो कदम। दोस्तों, ज़रा गौर फरमाइए, दो दिल जब एक अरसे के बाद दोबारा मिलते भी हैं तो उनके बीच वक्त की ऐसी धुंध आ जाती है कि वो उनके बीच चाह कर भी पुराने रास्ते वो नहीं ढूंढ पाते। इसी कश्मकश का अगला सिरा इस मिसरे में महसूस कीजिए। जाएं तो जाएं कहाँ, राहें हैं बंद सब, जाएं तो जाएं कहाँ, राहें हैं बंद सब, ढूंढेगी अब किसे महफिले वफा, ढूंढेगी अब किसे महफिले वफा, तुम भी खो गए हम भी खो गए, वफा की उस महफिल में ना वो पुराना महबूब बचा और ना ही पुराना आशिक, वक्त ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो आइए अल्फाज से एहसास तक के इस आखिरी और तारीखी पड़ाव का लुत्फ उठाते हैं और शौक फरमाइए कैफी आज़मी साहब की ये सदाबहार नज़्म गीता दत्त जी की पुरसोज आवाज में। वक्त ने किया क्या हसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम।

0: वक्त ने किया।
1: बुझ गए दिए तो क्या, बुझ गए दिए तो क्या, एक रोशनी तो रह गई। महफिलें रुखसत हुई पर दिल में कशिश तो रह गई। इसी दिलकश कशिश को अपने सीने में महसूस किए हुए अब वक्त हो चला है इस महफिल को समेटने का और आपसे विदा लेने का। मुझे यानी आपकी, आपकी अपनी दोस्त आरती रॉय को अब इस मोड़ पर इजाज़त दीजिए। आप सुनते रहिए अपना पसंदीदा स्टेशन 90.8 FM पर SN रेडियोज और रेडियो तांत्या भील को। अपनी सेहत का, अपने अपनों का और अपने जज्बातों का बहुत ख्याल रखिएगा। आप सभी चाहने वालों को प्यार भरी शब खैर, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे।

दोस्तों, आपके मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यही खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ।

0: तक पहुंचाता आया है। किसान साथियों, रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहु वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम। खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम जानते हैं हमारी कृषि से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को। इसमें ना केवल हम फसलों को लेकर बल्कि हमारी मृदा परीक्षण से लेकर हमारी फसल बीमा योजना और हमारी खेती बाड़ी में आने वाले नए बदलावों को, हमारी समस्याओं को और आदि अन्य जानकारियों को भी हम कोशिश करते हैं कि आप तक पहुँचाया जा सके। किसान साथियों, साथ ही आप किसान साथियों का भी हमारे पास कॉल आते रहे हैं और आपकी खेती बाड़ी से जुड़ी हुई समस्याओं को आप अब तक हम तक पहुंचाते आए हैं। तो किसान साथियों, हमारा अब तक यही प्रयास रहा है कि हम आपकी खेती बाड़ी की जो समस्याएं हैं उनके निदान के लिए हम अच्छा सा अच्छा एक्सपर्ट तलाश करके लाएं और आप तक आपकी समस्याओं को उनके सामने रखें और आप तक उन एक्सपर्ट को आप तक पहुँचा सकें और आप उन्हें उस एक्सपर्ट से आप अपनी राय ले सकें।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: किसान साथियों, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को।

0: इसी एक माध्यम के द्वारा जाना जाता रहा है।
1: बिल्कुल,
0: आज भी भारत को हम कृषि प्रधान देश कहते हैं। करीब करीब 58 से 60% लोग जो है देश के कृषि पर निर्भर हैं। तो कहीं न कहीं कृषि शिक्षा का महत्व भी इसी से हम कोरिलेट करते हैं कि आज भी जो हमारे युवा हैं या जो ऐसे किसान भाई हैं जो कहीं पर अपने आप को नहीं रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो कृषि में उनको बहुत सी संभावनाएं मिल रही हैं। पिछले 2-4 सालों में जब हमने देखा कि कोरोना का पीरियड और इससे संबंधित कृषि ही एक ऐसा व्यवसाय रहा है जो कई लोगों को रोजगार भी दिया और सबसे बड़ी बात है लोगों को खाद्यान्न भी मिलते रहे हैं।
1: और अलाइड सेक्टर जो थे उसमें भी हमने देखा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है,
0: खास करके एनिमल हस्बेंड्री जिसमें डेयरी पार्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। और साथ ही साथ अब तो नई नई तकनीक का प्रयोग करके एक नए नए आयाम का जो है वो विकास हो रहा है जिसमें शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है और करेगी भी, क्योंकि आगे आने वाले समय में जब हम देखेंगे तो जितनी भी तकनीक है, चाहे वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन तकनीक हो या कोई डिजिटल तकनीक हो, उसका जो माध्यम जो है वो हमारी कृषि शिक्षा को और ज्यादा मजबूती से लोगों के समक्ष रखने में सक्षम है।
1: जी जी।
0: तो इसी संबंध में ही ये बातें निकल के आती हैं कि कहीं न कहीं लोगों का एक बार फिर रुझान इस कृषि शिक्षा के माध्यम से कृषि की तरफ बढ़ने का प्रयास दिख रहा है। और इसमें शिक्षा का जो रोल है, जो शिक्षा का जो दायित्व तो है, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा आगे समय में।
1: और जैसे कि हम कहते भी हैं कि आज की जो कृषि है, जो आज की खेती है, वो आधुनिक खेती है, नए दौर की खेती है, लेकिन ये सब संभव कैसे हो पाएगा जब तक ऐसे युवा सामने नहीं आएंगे, पढ़े लिखे युवा जो इस क्षेत्र, इसी सेक्टर में, इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हैं, नई जानकारियां ताकि वो किसानों तक, यानी जो हम अक्सर कहते हैं कि लैब टू लैंड वाली बात, तो ये तभी संभव हो सकता है जब हम इस क्षेत्र में और ज्यादा फोकस करेंगे और हमारे युवा इससे जुड़ेंगे। आइए देखते हैं जुड़ी रिपोर्ट।
2: किसान साथियों, चलिए जानते हैं कि कृषि शिक्षा की क्यों जरूरत है और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ रही है। साथ ही हम जानेंगे इससे हमें क्या फायदा हो सकता है और क्या कृषि शिक्षा लेने से हमारे आने वाले भविष्य में कुछ बदलाव देखे जा सकते हैं, कैसे हमें कृषि शिक्षा हमारी खेती में किस तरीके से मददगार हो सकती है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को और जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: हमारे देश में आबादी का एक बड़ा हिस्सा प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है। ऐसे में कृषि शिक्षा को बढ़ावा देना जरूरी है। कृषि में उच्च शिक्षा और स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं। कृषि शिक्षा से युवा सशक्त तो बनेंगे ही, साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इस समय देश में करीब 99 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और 66 कृषि विश्वविद्यालय हैं, जिनसे शिक्षा लेकर युवा खुद को स्वरोजगार के लिए तैयार कर रहे हैं। कृषि शिक्षा पाकर युवा अनाज, फल, सब्जियों, दूध से बने उत्पादों, नकदी फसलों, मछली पालन, मुर्गी पालन और मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में स्वरोजगार पैदा कर सकते हैं। युवाओं को कृषि और कृषि शिक्षा की ओर आकर्षित करने के लिए सरकार भी उनकी मदद कर रही है। सरकार ने भी देश के युवाओं और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, स्वरोजगार से जोड़ने के लिए और कृषि में उनकी रुचि को बढ़ाने के लिए काफी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। देश में स्किल इंडिया के साथ ही स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम पहले से ही चल रहे हैं। डेयरी क्षेत्र के विस्तार के लिए गांव के युवा अपने अपने आइडिया को लेकर आगे आए हैं। कृषि में नई नई तकनीकों के विकास के कारण अब युवा भी कृषि में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इस बार के बजट में भी कृषि शिक्षा को लेकर घोषणा की गई है। कृषि विश्वविद्यालयों को बढ़ावा देने की बात बजट में कही गई। साथ ही विश्वविद्यालयों में कृषि पाठ्यक्रमों में बदलाव भी किया जाएगा। इससे छात्रों को आधुनिक खेती के बारे में बेहतर तरीके से अध्ययन करने में मदद मिलेगी। कृषि शिक्षा के विकास और विस्तार से न सिर्फ कृषि के क्षेत्र में नई नई तकनीकों और कृषि कार्यों को लेकर नए नए शोध होंगे, बल्कि देश के युवा की खेती में दिलचस्पी भी बढ़ेगी।
2: तो अभी आपने कृषि शिक्षा और स्वरोजगार पर हमारी रिपोर्ट देखी, जिसमें हमने बहुत सारी आपको बातें बताई। लेकिन अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, किसी विशेष कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, किसी ऐसी फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं जिसकी जानकारी आपको नहीं मिल पा रही है, तो हमारे साथ मेहमान हैं। जरूर अपने सवाल हम तक पहुंचाएं, आपके सवालों का हम इंतजार रहेगा। अब बात करते हैं हमारे दूसरे मेहमान जो है डॉक्टर रजनीश सर। अब आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि हम प्याज की बात कर रहे हैं, तो अभी प्याज की स्थिति क्या है, किस तरीके से बुआई करें, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा देश है, कहीं कुछ क्रियाएं चलती है कहीं कुछ, तो अभी की स्थिति क्या है प्याज के हिसाब से?
3: बिल्कुल, दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में जून में बुवाई हो गई थी, उनकी नर्सरी लगभग एक महीने से पुरानी हो चुकी है, उनके लिए क्रियाएं दूसरी होंगी।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: उत्तर भारत में अभी बुवाई शुरू हो रही है, तो दोनों में अलग अलग है। जिन लोगों को अभी बुवाई करना है, तो उनके लिए सबसे पहले अच्छी प्रजातियों का चयन करना है, ऐसी प्रजातियां हो जो आपको भरपूर लाभ देती हो, और आपको उनके बीज जो खरीदना है वो हमेशा सरकारी संस्थाओं से और प्रमाणित विक्रय केंद्रों से ही बीज लेना है। बीज खरीदते समय ध्यान रखना है कि रसीद लेना ना भूलें, क्योंकि ये रसीद आपका अधिकार है। तो प्रजातियों के चयन के विषय में मैं बताना चाहूंगा आपको कि हमारे देश में भारत सरकार के द्वारा और राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के द्वारा, नई दिल्ली के द्वारा, प्रजाति की खरीफ मौसम के लिए उपयुक्त वैरायटियां विकसित की गई हैं, जिसमें एग्रीफाउंड डार्क रेड और L883 दो प्रजातियां हैं। ये पूरे देश में आप इसको लगा सकते हैं, बुवाई कर सकते हैं, और इनकी पैदावार आपको बहुत अच्छी मिलती है। अब ध्यान क्या रखना है, आपने प्रजाति का चयन कर लिया, अब भूमि का चयन है। भूमि का चयन सावधानी से करना है, ऐसा भूमि हमें चुनना है जो बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए। उसके साथ साथ उसमें अच्छा जल निकास होना चाहिए, क्योंकि खरीफ के मौसम में होता क्या, बारिश ज्यादा होती है, तो पानी रुकना नहीं चाहिए, बारिश होने के बाद पानी निकल जाने, यानी कि अच्छा जल निकास होना बहुत जरूरी है।
2: जी बिल्कुल, और देखिए ये क्योंकि बलुई दोमट मिट्टी होती है, तो ऐसे में जल निकासी की व्यवस्था भी जरूरी होनी चाहिए। और ये अगर हम प्याज की बात करें तो काफी सेंसिटिव भी रहती है, अगर ज्यादा पानी रुक गया तो फसल खराब हो जाती है, तो इसलिए इस बारे में विशेष तौर पर हमें डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको जल निकासी की व्यवस्था करनी, क्योंकि अभी बुआई का समय है और देखिए बहुत सारे क्षेत्रों में अभी बारिश हो रही है और अभी होगी भी, तो किस तरह की व्यवस्था करें आप अपने स्तर पर, बुआई को लेकर कौन सी विशेष बातें हैं, तमाम बातों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट।
1: फसल की बुआई लिए
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: बड़े आकार के, चपटे, गोल और लाल रंग के होते हैं। इसके अलावा किसान पूसा रेड किस्म भी लगा सकते हैं। इसके कंद मध्यम आकार के, चपटे, गोल और लाल रंग के होते हैं। फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 3 से 4 निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10 से 12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। बुआई और रोपाई के बाद फसल का कीटों और रोगों से बचाव करें। कीटों और रोगों का ज्यादा प्रकोप होने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव कर सकते हैं।
1: तो प्याज पर अभी आपने रिपोर्ट देखी और हमने आपको भी बताया कि बीज दर क्या होना चाहिए, पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौध से पौध की दूरी क्या होनी चाहिए, सभी बातें हमने आपको बताई। इस पर हम और विस्तार से भी हम चर्चा करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं डॉक्टर यादव, जैसे कि हम बता रहे हैं हमने कार्यक्रम की शुरुआत में की कि भाई जब हम ये सोच रहे हैं और हमारा जब ये विजन है कि हमें आधुनिक कृषि को बढ़ावा देना है और अगर हमें किसानों की आय में वृद्धि करनी है तो एकमात्र फॉर्मूला यही है कि आज के दौर की जो कृषि है, जो आधुनिक कृषि वैज्ञानिक तरीके हैं, उन्हें किसान अपनाए ताकि लागत कम लगे, श्रम कम लगे और मुनाफा ज्यादा
2: हो और नए नए आयाम निकल।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो अब बताएं कि कृषि और शिक्षा और स्वरोजगार की हम बात कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में किस तरह का संबंध है?
2: जी देखिए, जो कृषि शिक्षा रही है हमारे देश में, अगर पुराने समय की भी बात करें तो हमेशा इसमें स्किल बिल्डिंग की बात कही गई है। इसमें ये कहा गया है कि अगर आप शिक्षा लेते हैं तो आपको खेत में काम करके ही शिक्षा लेनी है। तो जब आपकी स्किल बिल्डिंग की हम बात करते हैं या आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जो चूंकि खेती एक ऐसी चीज है जो केवल और केवल आपके श्रम पर नहीं निर्भर करती है, इसमें जलवायु का बहुत महत्वपूर्ण जो है वो रोल होता है, इसलिए आपको पूरे के पूरा तंत्र समझने की बात होती है और जब जहां पर जो क्रियाएं करनी चाहिए उन क्रियाओं के बारे में आपको कौशल विकास करना पड़ता है। कृषि शिक्षा के माध्यम से खेती में हमेशा एक आमूलचूल परिवर्तन देखा गया है, क्योंकि समय के हिसाब से, मौसम के हिसाब से जब भी खेती में बदलाव आता है उसमें कहीं ना कहीं एक अलग कौशल का जो है वो जन्म होता है और उस कौशल को हमारे वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया जाता है और उसी विकास को, जिसको हम तकनीक के रूप में कहते हैं, तकनीक को पुनः उसको खेतों को, किसानों को खेतों में दिया जाता है, जिसमें यदि आप समय रहते हुए ट्रेन होते हैं तो आप खेती को आगे बढ़ाते हैं। और ऐसा देखा गया है कि खेती में जो परिवर्तन आए हैं उसमें कहीं ना कहीं कृषि शिक्षा का बहुत बड़ा जो है रोल रहा है
1: जी।
2: लेकिन समय के हिसाब से, जैसे मैंने बताया, जब आप खेती को एक प्रोफेशन के रूप में लेते हैं जिसमें सरकार का बहुत ज्यादा सहयोग होता है तो कहीं ना कहीं परिवर्तन और ज्यादा बड़े विराट रूप में दिखता है। और उसी का जो आजकल हमारे यहाँ जो खेती में या किसानी में लोगों की रुचि हो रही है, अभी तो बहुत ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं बहुत ज्यादा रुचि है, लेकिन जो भी रुचि आ रही है एक खास करके नौजवानों के द्वारा, इसमें स्टार्टअप्स लोग शुरू कर रहे हैं, उसके माध्यम से कृषि शिक्षा में एक नया दौर का जो है वो आगमन हो चुका है।
1: जी,
2: और
1: जी,
2: उसके लिए हमें पर में सबसे ज्यादा सहायता होता है, क्योंकि ऐसा देखिए है कि जब आपके अंदर कौशल का विकास होगा तो आप सोचेंगे कि हमें किस क्षेत्र में क्या करना है। और देखिए हमेशा ये बात हमारे जितने भी दर्शक महोदय हैं उनसे हमारा निवेदन है कि कृषि शिक्षा में आप दाखिला लीजिए और ऐसा एक व्यवसाय सोच के लीजिए जो आपके क्षेत्र में प्रचलित है या आप जिसको कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसे बड़े सोच करके और कुछ ऐसा करें जिसमें आपका शिक्षा कहीं ना कहीं उतना प्रयोग न हो पावे जितना कि यदि आप ऐसी शिक्षा लें, ऐसे ऐसे क्षेत्र को टारगेट करें या ऐसे व्यवसाय को टारगेट करके अगर शिक्षा लेते हैं, क्योंकि आजकल तो शिक्षा जो है बहुत ही ज्यादा डाइवर्स हो गई है, बहुत ज्यादा जो है वो आपके पास
1: आयाम
2: हो गए हैं, बहुत ज्यादा आपके पास संभावनाएं का भंडार पड़ा हुआ है। समस्या है कि आपको अपने स्तर पे चुनना है, सही तरीके को चुनना है, सही व्यवसाय को चुनना है और उससे संबंधित शिक्षा को प्राप्त करना है
1: जी।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो, आपकी बातें।

0: जी हाँ किसान साथियों, जैसा कि आपने अभी सुना, हमारी शिक्षा में शिक्षा इतने सारे शिक्षा के आयाम है, आप कहीं पर भी जा सकते हैं, कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत इतनी है कि आपको अपनी रुचि के अनुसार, आपके व्यवसाय के अनुसार आपको अपनी शिक्षा को चुनना है और उसी में ही अपने हमको प्रगति करनी है, उसी शिक्षा को ग्रहण करके उसी में हमें आगे बढ़ना है।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: आपका सवाल मिल गया है, मौसम के हिसाब से प्याज की खेती कैसे करें। बिल्कुल, ये खरीफ का मौसम है इसलिए

0: हमें वो प्रजातियां चुननी है, पहले बताया है जैसे जो खरीफ में ही लगती हैं, ठीक है, तो उन प्रजातियों का चयन करना है। और भूमि का चयन करते समय हमें याद रखना है कि हमारी जो खेत है वो थोड़ा उठा हुआ होना चाहिए। अब जैसे भूमि की तैयारी के लिए आपको बताया गया था कि खेत क्या है, बलुई मिट्टी होनी चाहिए, दूसरा के अच्छा जल निकास होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, खेत को समतल करते हैं जिससे कि पानी रुकना नहीं चाहिए, पानी निकल जाए, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, क्यारियां बनाना है। क्यारियां कैसे बनाएंगे, जमीन से 15 सेंटीमीटर उठा के क्यारी बनाएंगे। एक क्यारी जो है वो 60 सेंटीमीटर चौड़ी होगी और उसकी लंबाई कितना होगी, 3 मीटर होगी, ठीक है ना। इस तरह की 100 क्यारियों की जरूरत पड़ती है एक हेक्टेयर की नर्सरी बनाने के लिए, ठीक है। इस तरह आप नर्सरी के लिए क्यारी बनाएंगे और बीज डालने से पहले आपको क्या ध्यान रखना है, उस बीज को उपचारित करना है। वैसे तो बीज सभी उपचारित आते हैं लेकिन फिर भी आपको बीज को उपचारित करना है। उपचारित कैसे करेंगे, आपको थायरम लेना है, थायरम रसायन है, दुकानों पे मिल जाता है, उससे आप बीज उपचारित कर सकते हैं। आप ट्राइकोडर्मा से भी बीज उपचारित कर सकते हैं। अगर आप जैविक खेती में जा रहे हैं तो जैविक खेती में भी बहुत से आपके पास साधन है, उनसे बीज उपचार कर सकते। बीज को उपचार करना उतना ही जरूरी है जितना कि टीकाकरण किया जाता है बच्चों के लिए, तो बीज उपचार जरूर करें। उसके बाद आपको बुवाई करनी है। बुवाई कैसे करनी है, आपको उठी हुई क्यारी बनानी, जैसे मैंने कहा था 10 से 15 सेंटीमीटर उठा के बनानी है क्यारी, और उसमें मिट्टी को भुरभुरी कर लेना है और 2 किलोग्राम गोबर की खाद सड़ी हुई उसको महीन कर लें, पाउडर बना लें और उसको क्यारी में मिलाना है, ठीक है। इस तरह आप करेंगे, क्यारी बना लीजिए। उसके बाद आपको जो बीज डालना है वो हमें पंक्तियों में डालना है, यानी कि नालियों में डालना है। एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी कितना रहेगा, आपको 5 सेंटीमीटर रहेगा। और बीज बोते समय ध्यान रखना है, बीज 1.5 सेंटीमीटर से ज्यादा आपको गहरा नहीं करना है। ज्यादा गहरा होने पे बीज देर में जमता है और कभी कभी नहीं भी जमता है, ये बातें ध्यान रखनी है। बुवाई के बाद आपको क्या करना है, पानी लगाना है। पानी लगाने से, सिंचाई करने से पहले आपको क्या करना है, आपको हल्का सा पुआल बिछा देना है, क्योंकि अगर आप पुआल नहीं बिछाएंगे, अगर आप पलवार ऊपर नहीं डालेंगे तो जब बारिश होगी तो आपका बीज पूरा बह जाएगा, ठीक है। इसलिए ये ध्यान रखना है, आपको पलवार जरूर करना है, इसको मल्चिंग भी कहते हैं, आपको जरूर करना है, ठीक है। उसके बाद आपको आपको सिंचाई कर देनी है। सिंचाई करते समय आपको ध्यान रखना है, हजारे से सिंचाई करनी है, सीधे पाइप से सिंचाई नहीं करनी है। अगर आपके पास हजारा नहीं है तो कोई भी बर्तन लेके और हाथ थोड़ा आगे लगा लेंगे तो उसकी बरसात जैसे होती है तो बूंद बूंद करके पानी जाएगा, आपके प्याज का जो बीज है वो बहेगा नहीं, ठीक है। इस तरह सिंचाई करेंगे, 8-10 दिन में देखेंगे प्याज का बीज अंकुरित हो गया है। अंकुरित होने के बाद विशेष ध्यान रखनी है क्या, कि अंकुरित होने के बाद आपको पुआल को हटा देना, जो आपने धान के पुआल की मल्चिंग की है उसको आप हटा देंगे, ठीक है। अगर नहीं हटाएंगे तो जो अंकुरण है वो प्याज जो पुआल था उसके अंदर चला जाएगा और उसके बाद बीज आपका पूरा खराब हो जाएगा, हटा दीजिएगा।
1: यानी यहाँ पर भी समय बहुत ध्यान रखना है कि कितने समय में आपको पुआल हटाना है, क्योंकि जो उसके फायदे के लिए अंकुरण के लिए आपने रखा था, अगर आप लंबे समय तक उसे छोड़ देंगे तो वही चीज आपके पौधों को खराब भी कर देगी, बर्बाद कर देगी। तो समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए खेती में पूरा खेल समय का होता है और इसीलिए हमारे एक्सपर्ट भी आपको बता रहे हैं कि कहां कहां गलती होने की आशंका है और उसे हमें नहीं करना है।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
0: पूसा रेड है, उनको आप आराम से ले सकते हैं। दूसरा, अभी नई प्रजाति आने वाली है, अभी L83 है, उसको भी आप लगा सकते हैं। और आप खरीफ के मौसम में ज्यादा से ज्यादा आप प्याज लगाइए और आपको अधिक लाभ होगा।
1: इसका चुनाव किस तरीके से करें,
3: देखिए मैंने अभी बताया था कि चुनाव करने से पहले आपको खुद मंथन करना पड़ेगा कि आप कृषि के किस आयाम के माध्यम से अपना रोजगार बनाना चाहते
1: हैं। जैसे होता अक्सर यही है कि युवा देखते हैं कि किसमें स्कोप ज्यादा है,
3: क्योंकि यहाँ हम एक्चुअली हम स्वरोजगार की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको स्टार्टअप के रूप में चलना, जो कि भारत सरकार द्वारा बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, और अगर स्टार्टअप का नंबर देखा जाए, संख्या देखी जाए, तो शायद सबसे ज्यादा स्टार्टअप जो है कृषि में ही है। तो उस तथ्य को ध्यान देते हुए यदि आप शुरू करना चाहते हैं कोई भी छोटा व्यवसाय या बड़ा व्यवसाय या स्टार्टअप के माध्यम से, तो आपको वो पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आप किस में इंटरेस्टेड हैं, जहां आपके रॉ मटेरियल पूरे मिल जाए, जो यहाँ पूरा आपका बाजार हो, खपत हो जाए, डिमांड और सप्लाई का जो है पूरा खेल होता है, तो उससे संबंधित पाठ्यक्रम आप चुन सकते हैं। हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में काम करते हैं, तो हमारे विश्वविद्यालय द्वारा जो पाठ्यक्रम बनाए गए हैं उनका आप चुनाव आप ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं, और ये ऐसे पाठ्यक्रम हैं जो दूरस्थ शिक्षा माध्यम से आप तक पहुंचेंगे। तो इसमें फायदा ये है कि आपको किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है, किसी एक क्लासरूम में नहीं जाना, बल्कि एक तरीके से कहा जाए तो विश्वविद्यालय खुद आपके द्वार पे उपस्थित रहेगा, आएगा। तो अपने कार्यों को करने के साथ साथ अगर पढ़ाई का माध्यम आपको मिल जाए, पढ़ाई का तरीका मिल जाए, तो आप कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप डिग्री कोर्सेज करना चाहते हैं कृषि में, तो हमारे पास 65 से 70 विश्वविद्यालय हैं इस समय, जिनके माध्यम से आप कृषि का शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, चाहे वहां पर आप अंडर ग्रेजुएट करें या पोस्ट ग्रेजुएट करें या आप डॉक्टरेट करें। तो कृषि का जो शिक्षा का जो पूरा का पूरा संस्थानों का जो एक तरीके से हमारे पास नेटवर्क है पूरे देश में, वो इसके अलावा कॉलेजेस भी बहुत ज्यादा हैं। साथ ही साथ ऐसे बहुत से विश्वविद्यालय हैं जो जिनमें एक या दो डिपार्टमेंट किसी कृषि से संबंधित, वहां भी आप एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा जो नेटवर्क है, जो तंत्र है, वो आप उसका चुनाव कर सकते हैं और सारा ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है।
1: जी, ये बहुत अच्छी चीज हो गई। देखिये, आप सब कुछ, आपको कहीं नहीं भटकना, किसी भी चीज के बारे में आप जानना चाहते हैं, सब कुछ ऑनलाइन आपके लिए उपलब्ध है, बस कई बार एक डायरेक्शन मिलने की।
2: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
4: किसान साथियों, आप में से कुछ किसान भाइयों ने हमें यह अपनी समस्या को हमारे सामने रखा था कि कुछ पौधे हैं जो बड़े होने से पहले मर जाते हैं, उनमें बीमारियां आ जाती है, जो इसके क्या कारण हो सकता है। आइए लेते हैं एक्सपर्ट की राय।
1: बता रहे हैं कि 50% तक उनके जो पौधे हैं वो खराब हो जाते हैं।
0: बिल्कुल, आपको ध्यान, मैंने शुरू में बताया था आपको सबसे पहले क्या करना है, बीज उपचार जरूर करना है, ठीक है ना। अगर आपका बीज उपचार किया हुआ है, बीज उपचारित है, तो आपके पौधों के सूखने की संभावना कम है, ठीक है। दूसरा, पहले बताया गया क्योंकि हम नर्सरी जो खरीफ मौसम में लगा रहे, इसलिए अच्छा जल निकास भी होना चाहिए, ठीक है। और पौधों को जो बीज बोएंगे वो पंक्तियों में बोएंगे, यानी कि थोड़ा दूर दूर बोएंगे। जब पौधे घने हो जाते हैं तो आद्र गलन हो जाता है, ठीक है, उसके कारण पौधे सूखने लगते हैं। आद्र गलन के लिए आपको क्या करना है, कार्बाडजिम या बेरिस्टीन जो ट्रेड नेम है मार्केट में आप मिलता है, 2 ग्राम पर लीटर पानी में मिला के आप उसकी ड्रेंचिंग करेंगे तो ये आद्गलन नहीं होगा, ठीक है, और वो पौधे आपके सूखेंगे नहीं, ध्यान रखना है। और पानी नहीं भरना चाहिए कभी भी, ठीक है, अगर आप ये ध्यान रखेंगे तो पौधे आपके नहीं सूखेंगे।
1: जी जी, तो हो सकता है कि बीजोपचार उस तरीके से नहीं कर रहे हैं वो, लेकिन डॉक्टर रजनीश, हम ये भी देखते हैं कि आजकल तो जो बीज मिलते हैं वो भी उपचारित होते हैं पहले से।
0: बिल्कुल,
1: तो क्या इन्होंने उपचारित बीज नहीं लिए हैं, या फिर जो उपचारित बीज होते हैं उन्हें फिर से उपचार करने की जरूरत होती है?
0: कर सकते हैं, कोई हानि नहीं है। तो आपके लिए क्या है, थायरम या कैप्टन 2 ग्राम लेना है, और कितने बीज के लिए, 1 kg बीज के लिए, उसको आप उपचारित कर लेंगे। उपचारित करते समय आप कोई लोहे का बर्तन नहीं लेंगे, प्लास्टिक का गमला लीजिए, उसमें आप बीज रख लीजिए थैली से निकाल के, और उस आप जो कैप्टन और थायरम बताया गया 2 ग्राम डाल के, आप उसको ग्लव्स पहन लीजिए, हाथ से मत करिएगा, और उपचारित करके आप बीज को बो सकते हैं।
1: जी डॉक्टर यादव, कृषि शिक्षा की हम बात कर लेते हैं। देखिए आज क्योंकि हमारा विषय है कृषि शिक्षा और स्वरोजगार, स्वरोजगार मतलब आपको कहीं नौकरी मांगने की जरूरत नहीं है, आपका अपना काम होगा, तो अब सबसे पहले तो ये समझना है कि जो भी हमारा युवा है या फिर जो भी स्वरोजगार के बारे में विचार कर रहे हैं और कृषि के क्षेत्र में, तो पहले उन्हें क्या मतलब पढ़ाई कर लेनी चाहिए, उसके बाद विचार करें या फिर अवसर तलाश करें जैसे आमतौर पर हम करते हैं, या फिर पहले अपना खाका तैयार कर ले, अपना दिमाग बिल्कुल तैयार कर ले कि ये स्टार्टअप है, ये कृषि के क्षेत्र से जुड़ा स्वरोजगार है जिसे मुझे जमाना है और इसके लिए मुझे अभी पढ़ाई करनी है।
3: जी देखिए, ये प्रश्न तो बहुत विराट प्रश्न है। इसमें हमारे युवा वर्ग जो हैं या कोई भी हो, जो भी, चाहे वो हमारे किसान भाई हों या युवा वर्ग, जब भी कोई व्यवसाय करना है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमें बाजार क्या है, मतलब बाजार में क्या करना है, क्योंकि सारा खेल बाजार का है। अगर और एग्रीकल्चर के जो प्रोड्यूस होते हैं, कृषि के जो प्रोड्यूस होते हैं, वो पेरिसेबल हैं, मतलब उनको ज्यादा दिन तक आप रख नहीं सकते, चाहे वो किसी फॉर्म में हो। प्रोसेसिंग करके थोड़े दिन रखा जा सकता है प्रसंस्करण, लेकिन वो उसका भी बहुत ज्यादा लाइफ नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये चुनना है कि हम किस आयाम को चुनते हैं और उसको किस माध्यम से हम बढ़ाना चाहते हैं।
1: अभी किस तरह के कोर्सेज की ज्यादा मांग है, जिसमें संभावनाएं ज्यादा है?
3: आजकल ज्यादातर देखिए फूड प्रोसेसिंग से, खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित, जैविक खेती से संबंधित,
1: जैविक खेती बिल्कुल,
3: और कहीं ना कहीं थोड़े बहुत जो है हमारे डेयरी से संबंधित भी कोर्सेज का जो है लोगों में जागरूकता है। मैं ये बताना चाह रहा था कि आजकल जो बाजार है वो ज्यादातर जो ट्रेडिंग हो रही है, जो व्यवसाय हो रहा है, वो ऑनलाइन माध्यम से हो रहा है। तो ऑनलाइन भी एक विकल्प आपके समक्ष है कि आप उसके माध्यम से अपने प्रोडक्ट्स को आप सब कंज्यूमर तक, उपभोक्ता तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन आपको देखना है कि हमारा इंटरेस्ट और हमारे पास जो शुरुआती दौर की जो जानकारी होती है वो किस क्षेत्र में है, क्योंकि जो आपके पास जानकारी होगी, चाहे वो अपने परिवार से हो, अपने जो व्यवसाय से हो या अपने इंटरेस्ट से हो, उसी माध्यम को लेके आगे बढ़ना है आपको।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो अपनी बातें।
0: अगर आपने अभी तक प्याज की बुवाई शुरू नहीं की है तो आप शीघ्र से शीघ्र बीज लें, प्रमाणित बीज लें और उसकी बुवाई जो है तुरंत कर दें, ठीक है? क्योंकि खरीफ के मौसम की जो प्याज की नर्सरी है उसको तैयार होने के लिए, पौध को तैयार होने के लिए 6 से 7 हफ्ते लगते हैं, ठीक है? जबकि रबी में 8 से 9 लग जाते हैं। तो आपको ये जल्दी से जल्दी बीज बो देना है और जैसा मैंने बताया उसी तरह क्यारी बनाना है, बीज को उपचारित जरूर करना है और मल्चिंग भी करना है और पंक्तियों में बीज बोना है, ठीक है? अच्छा जल निकास करना है और वेराइटी मैंने आपको पहले प्रजातियों के बारे में बताया था, आप एग्रीफाउंड डार्क रेड भी लगा सकते हैं, ठीक है? और भीमा सुपर भी लगा सकते हैं और पूसा रेड भी लगा सकते हैं, वेराइटियां हैं, ठीक है, जो आपके क्षेत्रों में अच्छी उत्पादन देती हैं। इसलिए आप देर ना करिए, जितना जल्दी हो बुवाई का काम शुरू कर दीजिए।
1: जी जी बिल्कुल। तो देखिए आपके क्षेत्र में बुवाई शुरू।
4: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांट्या भील, रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન। આપુ રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં। એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન, રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM। ब्रेक के बाद पुनः बहुत बहुत स्वागत है किसान साथियों आपका। आप सुन रहे हैं प्याज की खेती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
0: बिल्कुल, ये जो आपकी जो बीमारी है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैंकोजेव दवा आती है उसको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के आपको छिड़काव करना है। ध्यान रखना है क्योंकि जो प्याज की पत्तियां होती हैं चिकनी होती हैं, ठीक है, उसमें कोई दवा रुकती नहीं है, इसलिए आपको एक टंकी में 9 ml यानी कि 9 मिलीलीटर स्टीकर का इस्तेमाल जरूर करना है। आपको शैम्पू वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है, आप स्टीकर ही लीजिएगा, क्योंकि शैम्पू से दवा का जो वितरण है वो पत्ती पे समान रूप से नहीं होता। तो आप स्टीकर का इस्तेमाल करिएगा और मैंकोजेब को क्या करना है, 2 ग्राम प्रति लीटर की मात्रा से आप इस्तेमाल करिए, 15 दिन बाद दूसरा स्प्रे कर दीजिएगा और जल निकास का ध्यान रखिएगा, पानी खेत में रुकना नहीं चाहिए, आपकी प्याज अच्छी बनेगी।
1: जी जी बिल्कुल। और हमारे जो किसान हैं या फिर जो युवा हैं जो कृषि शिक्षा के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं जहां का रुख कर सकते हैं?
3: देखिए, मैंने बताया कि विश्वविद्यालय तो हमारे देश में हैं 65 करीब, और इसके साथ साथ और अनेक विश्वविद्यालय हैं जहां पर कृषि की शिक्षा होती है अन्य विषयों के साथ साथ। ये जो विश्वविद्यालय हैं 65, ये शुद्ध रूप से कृषि से संबंधित शिक्षा देते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस भी हमारे देश में हैं जिसमें करीब करीब 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट हर साल एडमिशन लेते हैं, जहां भी कृषि शिक्षा दी जाती है। मैं एक आपको सबसे जो सुलभ इंफॉर्मेशन ये देना चाहता हूं कि हमारे देश में हर एक जिला में एक कृषि विज्ञान केंद्र बनाया गया है, भारतीय कृषि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा ICAR जिसको कहते हैं, उसके द्वारा हर एक जिले में कम से कम एक कृषि विज्ञान केंद्र है। अगर जिला बहुत बड़ा है तो उसमें कहीं कहीं जगहों पर दो भी हैं, या दुर्गम स्थान है जैसे नॉर्थ ईस्ट के जगह स्टेट के स्टेट्स के जगह जगह होते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो वहां आप जाकर के अपने किसी भी अपने क्षेत्र से संबंधित कृषि के आयाम से संबंधित ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं।
1: एक तो ट्रेनिंग भी ले सकते हैं अगर कोई, और ये सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं शायद?
3: नहीं, इसमें आपको बहुत शॉर्ट टर्म नीड बेस्ड ट्रेनिंग होती है जिसमें मिनिमम 10 दिन की, 15 दिन की, 3 दिन की, ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वो लोग कभी कभी कृषि के जो समय के हिसाब से जो कार्यक्रम होते हैं, जो उनके जलवायु के हिसाब से जो कार्यक्रम होते हैं, उसमें खुद के कृषि विज्ञान केंद्र ऐसे जो जरूरत की आपको इंफॉर्मेशन या स्किल की जरूरत होती है उससे संबंधित ट्रेनिंग प्रोग्राम खुद ऑर्गेनाइज करते हैं। और अगर आपको खुद कुछ किसी एक निर्धारित कौशल विकास या निर्धारित इंफॉर्मेशन से संबंधित कोई अगर इंफॉर्मेशन लेनी है, अपने आप को ट्रेन करना, तो आप खुद कृषि विज्ञान केंद्र के पास जा सकते हैं। और मैं तो सबसे निवेदन करता हूं कि कृषि में व्यवसायीकरण का जो एक दौर अभी शुरू हो रहा है उसको अगर और गति से बढ़ाना है तो शायद कृषि विज्ञान केंद्र उसमें बहुत बड़े रोल प्ले कर सकते हैं।
1: कृषि विज्ञान केंद्र अब काफी एक्टिव भी हो गए
3: जी,
1: और हम देख रहे हैं कि किसानों तक वो तो पहुंच ही रहे, किसान भी कृषि विज्ञान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। आमतौर पर पहले ये होता था कि बहुत ज्यादा किसानों को भी जानकारी नहीं होती थी कि इस तरह के केंद्र बने हुए जहां पर उन्हें ऐसी जानकारियां मिल सकती हैं, तो अब देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार कृषि के क्षेत्र की या फिर कृषि शिक्षा की बात करें तो इसका विस्तार होता जा रहा है, हालांकि आयाम और रूप भले अलग अलग है।
4: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टैंटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
0: बिल्कुल, ये आर्द्रता की वजह से पहले बताया गया है, किसान भाइयों प्लीज आप जल निकास का उचित प्रबंधन जरूर करें, अगर नहीं करेंगे प्याज का पौधा बहुत ही कोमल होता है और वो सड़ना शुरू कर देता है, ठीक है, उस सड़ने से बचाने के लिए आपको भूमि उपचार, बीज उपचार और पौध उपचार भी करते हैं। तो मुझे लग रहा है आपकी जो समस्या है, जो आपकी परेशानी है, जो रोग है, वो रोपाई के बाद आता होगा, ठीक है,
1: वही बता रहे हैं
0: बिल्कुल। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको ड्रेंचिंग करनी है जब भी आपको लगे कि पौधे सड़ रहे हैं, और आपको क्या करना है 5 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल जरूर करना है।
1: ये किस तरह के इस्तेमाल का, जैसे आपने ड्रेंचिंग बताया तो कैसे करें हमारे किसान ये बताएं?
0: तो भूमि की जब तैयारी करते हैं उस समय 5 kg ट्राइकोडर्मा, ठीक है, उसको आपको मिट्टी में मिलाना है, ठीक है। और ड्रेंचिंग के लिए मैं बताना चाह रहा था कि आप कार्बन डेंजिम है जो बेविस्टीन के नाम से मिलता है, आप मार्केट में ले लें, उसको 2 gram प्रति लीटर पानी में मिला के और पौधों की जड़ों में उसको आप छिड़काव करें सिंचाई की तरह, उसको पानी दें, वो दवा उसके जड़ों में जाएगी तो आपकी बीमारी जो है वो कंट्रोल में हो जाएगी। लेकिन पानी कभी खेत में रुकना नहीं चाहिए, अगर रुकेगा तो फिर ये ड्रेंचिंग भी कभी कभी काम में नहीं आती है।
1: जी जी बिल्कुल। तो देखिए सबसे बड़ी चीज और महत्वपूर्ण चीज इसके बारे में हमें सिर्फ लगातार बता रहे हैं कि खेत में पानी नहीं रुकना चाहिए, और प्याज में इतना समय भी नहीं आपको मिलता, और अगर पानी रुक गया तो बहुत जल्दी जो फसल है वो खराब होने का डर रहता है। और जो आप बता रहे हैं कि फफूंद वगैरह लगना, अक्सर ये अधिक मॉइस्चर की वजह से भी समस्या आ सकती है, तो यहाँ पर सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। फिलहाल इसी के साथ ही वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का।
5: रेडियो स्टेशन 90.8 FM, टैंटिया भील।

0: સાંજે 6-8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન આપું રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM।
1: और अब आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि आप खुद इग्नू से हैं, तो किस किस तरह के कोर्सेज हैं, क्या एडमिशन ओपन है, और अगर वो किसी विशेष कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं क्या बताना चाहेंगे?
2: जी, हमारे विश्वविद्यालय द्वारा कृषि शिक्षा से संबंधित करीब करीब 18 कोर्सेज अभी वर्तमान समय में उपलब्ध कराया गया है। और ये जितने भी कोर्स हैं हमारे, इसमें हमारे पास MSc भी है, डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। पोस्ट ग्रेजुएट मतलब ऐसे डिप्लोमा, हमारे पास दो तरीके के डिप्लोमा हैं, एक तो जो अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा बोलते हैं जिसमें प्लस टू पास होकर के कोई भी एडमिशन ले सकते हैं,
1: वो सर्टिफिकेट के
2: को, और नहीं डिप्लोमा जो एक साल के होते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऐसे कोर्स हैं जिसमें आपको मिनिमम जो अर्हता होती है वो ग्रेजुएशन होती है। दूसरे हमारे पास सर्टिफिकेट है, तीसरे तरीके के जो कोर्स है उसमें 6 महीने का कोर्स है, जैसे सर्टिफिकेट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रमाण पत्र कोर्सेज जिनको हम बोलते हैं। हमारे पास पोल्ट्री से भी संबंधित है, सेरिकल्चर से भी है, वाटर हार्वेस्टिंग से भी संबंधित है, और जैविक खेती है, और साथ ही साथ हम मधुमक्खी पालन में भी कोर्सेज दे रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप और ज्यादा अपने शिक्षा को आगे ले जाना चाहते हैं तो हमारे पास डेयरी साइंस में जो है डॉक्टरेट की भी डिग्री है।
1: अच्छा,
2: जैसे बहुत से हमारे दर्शक ये जानते होंगे या कहीं नौकरी करते होंगे जो MSc करके करते हैं और वो पुनः अपने डिग्री को आगे बढ़ाना चाहते हैं, डॉक्टरेट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो विश्वविद्यालय हमारा केवल अभी वर्तमान में डेयरी में जो है वो डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में PhD का जो है वो उपलब्ध करा रहा है और इसका आप लाभ ले सकते हैं।
1: जी, जो प्याज की खेती करना चाहते हैं। जी,
3: 6-7 हफ्ते में प्याज की नर्सरी तैयार हो जाती है, उसके बाद आपको मुख्य खेत की तैयारी करनी है, और उसकी तैयारी करने के बाद आपको फिर क्यारियां बनानी है, उठी हुई अच्छा जल निकास करना है, और आपको पौध से पौध 10 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन 15 सेंटीमीटर और प्याज की रोपाई कर लेनी है। उसके बाद ध्यान ये रखना है, पानी नहीं भरना चाहिए। अच्छे से आप ध्यान रखें कि पोषक तत्वों का जो इस्तेमाल करना है वो जो आपने सॉयल हेल्थ कार्ड बनवाया होगा उसमें रिकमेंडेशन होगी, कृषि विज्ञान केंद्र होंगे उनके द्वारा जो रिकमेंडेशन है उसी को पालन करना।
0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान આપું રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM।

0: आते हैं, कैसे खुलेगा? ये भी थोड़ा मुझे लगता है स्वरोजगार से जुड़ा हुआ है।
1: इसमें देखिए ऐसा है, मिट्टी जांच केंद्र पहले तो अपने आप को ट्रेन करें, कृषि विज्ञान केंद्र की सहायता लें और सरकार से उपलब्ध जो भी इसमें इक्विपमेंट्स उनको मिलते हैं या जो इनको सब्सिडीज हो या जैसे भी हो उनसे संबंधित उनसे पैसे लेकर के आप खोल सकते हैं। लेकिन ये है कि अपना जो संबंध है वो किसी न किसी सरकारी संस्था से जरूर रखें।
0: जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: किसान साथियों, खेती बाड़ी कार्यक्रम में आपने आज प्याज की खेती से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना, साथ ही आपने हमारा युवा आज का जो कैसे स्वरोजगार की योजनाओं के बारे में आपने जाना और साथ ही कैसे हमारा युवा कृषि शिक्षा लेकर कैसे अच्छे से अच्छा व्यवसाय कर सकता है, कैसे अपना अपनी पढ़ाई को और अच्छे से मजबूत बना सकता है आदि जानकारियों को जाना। किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
4: हूँ से आरजे राकेश,
5: अने हूँ से आरजे कमता डामोर,
4: तमु हामली रासे कार्यक्रम खेती बाड़ी आपड़ा झाबुआना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबुआनी आवाज पर। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत से तमारो सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआनी आवाज पर। हूँ से आरजे राकेश, अने रोजनी जेम तमारी वस मा आज फेर

0: आज के कलाकार के इस तेजी से बढ़ते हुए मंच पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम स्वागत करते हैं उन सिंगर्स का, उन टैलेंट्स का, उन गायकों का, उन गायिकाओं का जो अपने टैलेंट का मजा ले रहे हैं और हम भी उनको पूरा पूरा प्रोत्साहित करने की कोशिश में लगे हैं। चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं आज एक और टैलेंट से। आज के कलाकार में दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते हैं ये मंच है नए गायकों का, नई गायिकाओं का, संगीतकारों का, उन लोगों का जो संगीत से मोहब्बत करते हैं, उन लोगों का जो संगीत से प्यार करते हैं, संगीत जिनकी हॉबी है, संगीत जिनके साथ जिंदगी भर चलता है। तो आज हमारे साथ मेहमान हैं योगिनी पटवर्धन जी। बाकी योगिनी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में।
1: धन्यवाद समीर जी।
0: आगे बढ़ते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए, ऑडियंस के लिए अपना परिचय दीजिए। आप कहाँ हैं, क्या करती हैं?
1: जी नमस्कार सभी को, मेरा नाम योगिनी पटवर्धन है, मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। आप मुझे अभी बैंगलोर से सुन रहे हैं। मैं एक होम मेकर हूँ। मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन अप्लाइड मैथ्स विद कंप्यूटर साइंस इंदौर से की है। उसके बाद कुछ टाइम मैंने ऑफिस वर्क किया और टीचिंग भी की है। और मेरे हस्बैंड हेल्थ केयर आईटी में है। बैंगलोर से पहले हम लोग जयपुर में थे, जहां मुझे सिंगिंग की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली और मैंने कई स्टेज शोज में पार्टिसिपेट भी किया। जयपुर में स्वर की मल्लिका और सुर संगम जैसे प्रोग्राम में मैं रनर अप रही हूँ। उसके बाद हम लोग बैंगलोर शिफ्ट हो गए, पर जब भी मौका मिलता है मैं गा लेती हूँ।
0: बहुत खूब योगिनी जी, बहुत खूब। आपने जयपुर का नाम लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं प्रैक्टिकली 35 साल जयपुर में रहकर आया हूँ। अभी भी मैं जहाँ आया हूँ वहां पर मैं मतलब जयपुर से ही आया हूँ, जयपुर से ही शिफ्ट हुआ हूँ। जयपुर की बहुत प्यारी प्यारी यादें हैं। तो दोस्तों आपने सुना योगिनी जी कौन है, कहाँ रहती हैं। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं इस प्यारे से प्रोग्राम को, आप ही के प्रोग्राम को, योगिनी जी के गाए हुए इस प्यारे से गीत से।

0: बहुत खूब, बहुत ही शानदार शुरुआत योगिनी जी। योगिनी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप बचपन में क्या बनना चाहती थी?
1: मुझे संस्कृत में अच्छे मार्क्स आते थे, इसीलिए मैं संस्कृत की टीचर बनना चाहती थी।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। तो आगे बढ़ते हुए, क्या आपने संस्कृत की अध्ययन या संस्कृत की पढ़ाई को आगे जारी रखा?
1: नहीं नहीं वो बचपन में ही था।
0: अरे वाह, उसे जारी रख सकते हैं आप, अभी भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि संस्कृत पूरी दुनिया में मानी जाती है कि सबसे ज्यादा साइंटिफिक लैंग्वेज है, वैज्ञानिक भाषा है, जो बहुत अच्छे नियम कानून के तहत चलती है। इसमें कोई गलतफहमी कहीं नहीं है। रादर अब तो बहुत बहुत सारे लोग जो पुराने स्क्रिप्चर्स हैं संस्कृत में लिखे हुए, उनको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनमें बहुत गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं जो कि संस्कृत में ही उस जमाने में लिखे हुए थे। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा योगिनी जी की, क्योंकि आपको संस्कृत पसंद थी, तो आपके पास एक बहुत खूबसूरत मौका है कुछ पुराने गूढ़ रहस्यों को दुनिया के सामने लाने के लिए। चलिए, बहुत खूब। तो सुनते हैं दोस्तों एक और बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: योगिनी जी, ये जो क्वेश्चन है, ये जो प्रश्न है, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। क्या ऐसा कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में, प्रश्न है आपके जहन में, जो आप चाहती हो कि मैं आपसे पूछ लूं और आप उसका उत्तर दें? क्या ऐसा कोई सवाल है आपके दिमाग में?
1: जी समीर जी, आपके पिछले प्रश्न को ही मैं आगे बढ़ाऊंगी। वैसे तो मैं हॉबी सिंगर हूँ, पर अब जैसे मैं टीचर बनना चाहती थी तो
0: जी
1: मेरी सिंगिंग कैसे स्टार्ट हुई, यही मैं बताना चाहती हूँ। स्कूल टाइम पे मैंने अक्सर एनुअल फंक्शन में सिंगिंग और डांसिंग की है, और ग्रेजुएशन के बाद भी की है।
0: जी
1: और बचपन से मैं SR के फैन रही हूँ, और मेरी एक आदत थी कि कोई भी SR के मूवी रिलीज हुई कि उसकी कैसेट लेके वॉकमैन पे मैं उसे सुनती थी, और जो भी सॉन्ग अच्छा लगता था उसे बार बार सुन के याद कर लेती थी। और उस टाइम तो ऐसे लिरिक्स का ज्यादा ऑप्शंस नहीं था हम लोगों के पास, तो सुनते रहते थे वॉकमैन पे।
0: जी एसआर के मत
1: पर
0: एसआर के मतलब शाहरुख खान।
1: शाहरुख खान, जी
0: जी
1: शाहरुख
0: जी
1: खान,
0: जी जी
1: हाँ। पर मेरी आदत ये थी कि उस सॉन्ग को सीधा गाने की जगह मैं उल्टा गाया करती थी
0: अरे वाह,
1: बचपन में।
0: वेरी नाइस।
1: जी, और उस समय के जो भी हिट सॉन्ग हुआ करते थे सभी को मैं बस उल्टा ही कर दिया करती थी, एक वही आदत थी उस टाइम पे।
0: अरे वाह,
1: और लोग हंसते भी थे, इवन घर वाले भी सब हंसते थे। मतलब दे यूज टू से कि योगिनी तुमको उल्टेरिया हो गया है, जो एक सॉन्ग चलता था उसपे, सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, तो ये बोलते थे कि ये गई इसको उल्टेरिया हुआ
0: अरे
1: उस
0: वाह,
1: टाइम पे।
0: उल्टेरिया एक अच्छा टर्म आज दोस्तों में सुनने को मिला, बहुत खूब।
1: जी, तो मेरी सिंगिंग ऐसे ही स्टार्ट हुई उल्टा गाने के शौक से। और क्योंकि मैं उसे सुर में गाने की कोशिश करती थी तो लोग कहने लगे कि नॉर्मल क्यों नहीं गाती, पर बचपन में तो ऐसा ही था और मैं उल्टे ही गाती थी। और फिर आफ्टर मैरिज ऑलमोस्ट सिंगिंग बंद हो गई थी, फिर ऑलमोस्ट 12 साल के बाद हम लोग जयपुर शिफ्ट हुए, और मैंने अपने बेटे को वहाँ कीबोर्ड सीखने के लिए एक जगह क्लास भेजा। वहां पे एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन का बोर्ड लगा हुआ था, और मेरा मन किया कि जाके पार्टिसिपेट करूं, तो उसमें मेरा सेमीफाइनल राउंड तक सिलेक्शन हो गया था। और वहीं जहां बेटा सीख रहा था कीबोर्ड, तो वहां के सर ने कुछ लोगों के कॉन्टेक्ट दिए कि इनको फीमेल सिंगर की जरूरत है, आप गाएंगी? तो मैंने हाँ कह दिया। तो और बस इसी तरह से काफी मौके मिले मुझे जयपुर में, और एक एक करके मैं ग्रुप से जुड़ती गई। और साज और आवाज, सबसे पहला ग्रुप था मुनव्वर अली जी का, जो मैंने जिनके साथ सिंगिंग स्टार्ट की थी। और उसके बाद अलंकार, म्यूजिकल सफर इंडिया, सुर संगम, कराओके परिवार, ऐसे कई सारे ग्रुप्स मैंने उसके बाद ज्वाइन किए।
0: अरे वाह, बहुत खूब बहुत खूब।
1: जी
0: दोस्तों आपने सुना, तो आगे बढ़ते हैं और एक प्यारा सा गीत सुनते हैं योगिनी जी का।

0: योगिनी जी, स्कूल टाइम में आपका प्रिय सब्जेक्ट कौन सा था? वैसे तो मेरे ख्याल से आप बता चुकी हैं, फिर भी हमें थोड़ा सा विस्तार से बताएं।
1: जी हाँ, मेरा प्रिय विषय एक्चुअली संस्कृत ही था एक तो, और दूसरा विषय था गणित। तो गणित मतलब पहले तो बड़ा कठिन लगता था, लेकिन उसके बाद एक अच्छे टीचर मिल गए जिन्होंने बड़े अच्छे से मतलब उन सम्स को इजी करके सिखाया, तो गणित भी मेरा एक प्रिय विषय था। उसी में मैंने फिर बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन भी की है।
0: ओह, फैंटास्टिक
1: जी।
0: दोस्तों, आपने सुना, संस्कृत भी काफी गणित से भरपूर एक भाषा है, और उसके बाद योगिनी जी को गणित बहुत पसंद रहा और फिर उन्होंने MSc मैथमेटिक्स में ही की। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। यूं देखा जाए तो काफी महिलाएं मैथमेटिशियंस हैं, गणितज्ञ हैं। कोइंसिडेंटली मेरी वाइफ भी गणितज्ञ है।
1: अच्छा।
0: और अभी भी वो सीनियर क्लासेस गणित को पढ़ा रही हैं, मैथ्स पढ़ा रही हैं।
1: अच्छा।
0: बड़ी खूबसूरत बात है। तो आप समझ सकते हैं मैं कितना सीधा सीधा चलता हूं, 2+2=4। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं इसी तरीके का एक खिलखिलाता हुआ गीत योगिनी जी की आवाज में। बहुत खूब।

0: बहुत बढ़िया योगिनी जी, थैंक यू सो मच। योगिनी जी, आपके विचार में अगले 5 सालों में हमारी दुनिया कैसी हो जाएगी, कैसी दिखाई देगी?
1: मुझे लगता है 5 साल के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होगा लाइफ में।
0: जी
1: जैसे कई साल पहले मोबाइल आया और अभी वो एक हमारी डे टू डे लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा है, वैसे
0: जी
1: ही एआई भी हमारे जीवन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। कनेक्टिविटी है, सिटीज के बीच की दूरी मिनटों में तय हो जाएगी और आने वाले टाइम में कई सारे काम शायद रोबोट्स कर देंगे जो हमारे जीवन को बहुत आसान बना देंगे।
0: योगिनी जी, बहुत बढ़िया बात कही। लेकिन सच कहूं, मुझे ये बात कुछ ज्यादा समझ नहीं आ पाती कि एआई हमारी जिंदगी को आसान कैसे बनाएगा। मैं समझ नहीं पाता हूं, तो मुझे प्लीज थोड़ा सा समझाइए ना। ऐसा एआई क्या कर देगा जिससे हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी?
1: अगर एआई को चलाने वाला तो इंसान ही होगा, लेकिन आजकल मतलब सब कुछ बहुत इजी हो गया है एआई की हेल्प से।
0: जैसे कि
1: मतलब जो भी चीजें हैं हम लोग अब आजकल, जैसे आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, पहले हम लोग अपने दिमाग से जो हमारा पैटर्न होता था उससे लिखा करते थे,
0: जी
1: अभी आजकल चैट जीपीटी करके आ गया है, तो उस पे आप अपना ऑप्शन डाल दीजिए कि आप क्या चाहते हैं। जैसे आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, आपको बॉस को लेटर लिखना है, कोई भी चीज, आपको इवन लिरिक्स भी कंपोज करने हैं ना अगर सॉन्ग के, तो आप एआई को बोल दीजिए, आप उस पे कुछ आपका टॉपिक दे दीजिए, उस टॉपिक पे एक पूरा गाना मन से एआई आपको बना के दे देगा।
0: वेरी नाइस। पर्सनली इस बात का बहुत डर लगता है
1: जी
0: कि कहीं एआई बढ़कर
1: बिल्कुल,
0: हमारा मास्टर ना हो जाए, कहीं
1: हाँ जी वो नहीं होना चाहिए,
0: एआई भी
1: हाँ
0: गाना गाने लग
1: करेक्ट
0: जाए
1: करेक्ट
0: और मुझे फिर एआई के साथ प्रोग्राम बनाना पड़े।
1: करेक्ट करेक्ट, वो नहीं होना चाहिए। एक्चुअली हो रहा है, मतलब मोहम्मद रफी जी की आवाज में लोग सॉन्ग्स को चेंज कर रहे हैं आज के गानों को, और
0: जी जी जी
1: ऐसा
0: जी
1: हो रहा है कि मतलब आप उनकी आवाज में आज का गाना होता तो वो कैसा लगता है, और बिल्कुल बना भी देता है एआई वैसे तो।
0: और क्या पता योगिनी जी, अभी इस वक्त आपका इंटरव्यू एआई ही ले रहा हो।
1: सही
0: कोई
1: बात
0: समीर ना हो, एक एआई हो जिसको नितिन जी ने ऑन कर दिया हो और वो आपसे बात कर रहा हो, है ना? कितनी मजेदार बात।
1: जी,
0: तो चलिए दोस्तों, आगे
1: करेक्ट।
0: बढ़ते हैं। विचार कीजिएगा इस बारे में, कितना सही कितना गलत मुझे नहीं पता, मैं कोई जज नहीं हूं। तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एब्सोल्युटली इंसान योगिनी जी के ही गले से निकला हुआ ये प्यारा सा गीत।

0: बहुत बढ़िया योगिनी जी। आगे बढ़ते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यदि आपके सबसे बुरे दुश्मन ने आपके ऊपर कोई, फर्ज कीजिए, सिर्फ फर्ज कीजिए, मैं आपका कोई दुश्मन ना हो, मैं हमेशा ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा, लेकिन फिर भी एक अंदाजा कि आपके किसी दुश्मन ने आपके ऊपर कोई किताब लिखी होती तो वो उसका शीर्षक क्या रखता?
1: जी समीर जी, सही कहा आपने। वैसे तो कोई दुश्मन है नहीं मेरा
0: जी,
1: पर मैंने हमेशा से दोस्त ही बनाए हैं।
0: बहुत खूब।
1: फिर भी अगर ऐसा कोई हो तो उस किताब का शीर्षक होगा नेकी कर और कुएं में डाल।
0: वाह क्या बात है बहुत खूब, बड़ा ही प्यारा शीर्षक, बहुत ही प्यारा टाइटल, नेकी कर और कुएं में डाल। दोस्तों कितनी प्यारी सी बात है कि उनका दुश्मन भी उनके बारे में बहुत बुरा सोच ही नहीं पाएगा। बहुत खूब, बहुत खूब। तो चलिए बहुत ही प्यारा सा एक और गीत हो जाए फिर योगिनी जी का ही।

0: योगिनी जी, आपका पसंदीदा रंग कौन सा है और वो रंग आपके बारे में क्या कहता है? आप उसके बारे में क्या समझते हैं?
1: जी, मेरा पसंदीदा रंग नीला है
0: जी
1: और वैसे सभी ब्लू के सारे ही शेड्स मुझे पसंद है, फिरोजी, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू सभी पसंद है। और वैसे नीला रंग शांति, स्थिरता और आत्मविश्वास का प्रतीक होता है।
0: जी
1: यह रंग मुझे एक सकारात्मक ऊर्जा देता है
0: बहुत खूब।
1: और जिन लोगों को नीला रंग पसंद होता है वे आमतौर पर शांत, संतुलित और समझदार होते हैं। बस
0: ओहो
1: यही नीला रंग कहता है।
0: भाई वाह, योगिनी जी, आज मुझे पता चला कि मैं इतना बढ़िया इंसान क्यों हूं, क्योंकि मुझे भी नीला रंग पसंद है। अरे वाह भाई वाह वाह वाह, मुझे आज आपसे बात करके ये चीज पता चली। अमेजिंग, ब्यूटीफुल, बहुत खूब। दोस्तों, आज आपको मालूम पड़ा होगा जितने भी दोस्त हमारे नीला रंग को पसंद करते हैं वो कितने खूबसूरत इंसान हैं। बाकी लोग भी हैं, बाकी लोग भी खूबसूरत हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक प्यारा सा गीत सुनते हैं योगिनी जी का ही।

0: योगिनी जी, यदि आपको किसी ऐतिहासिक व्यक्ति यानी कि कोई हिस्टोरिकल फिगर से के साथ बैठ के बातचीत करने का मौका मिले तो किसके साथ बैठ के बातचीत करना चाहेंगी आप?
1: जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम
0: वाह, क्या बात है, बहुत खूब
1: जी,
0: बहुत खूब।
1: इनके इनके साथ बात करना एक अविश्वसनीय अनुभव होता, और उनकी बातें सुनकर कोई भी मोटिवेट हो सकता है।
0: क्या बात है, मैं आपको सच कहूं योगिनी जी, बहुत सारे लोगों से मैंने ये सवाल पूछा है और वो लोग आपस में कहीं से भी कुछ भी कनेक्टेड नहीं है कि भाई क्वेश्चन पेपर आउट हो गया और उनको पता चल गया हो, लेकिन 90% लोगों ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम लिया है। इससे हमें ये पता चलता है वो कितने फेवरेट है सब लोगों के, वो कितने जहीन इंसान थे कि उनको इतने लोग पसंद करते हैं। बहुत खूब, बहुत ही प्यारी बात। तो दोस्तों आपने सुना, आइए एक गीत भी सुन ले।

0: बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारी गायकी। योगिनी जी, क्या लोग आपके बारे में कुछ गलतफहमी रखते हैं क्या? क्या गलतफहमी रखते हैं आपको पता है?
1: जी, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग मुझसे डरते हैं और लोग ये भी सोचते हैं कि मैं कम बोलती हूँ। जी, पर ऐसा नहीं है। एक बार दोस्ती हो जाए तो मैं बहुत बोलती भी हूँ, और जो अच्छे से जानते हैं वो लोग मुझसे डरते भी नहीं है।
0: बहुत बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, बार बार ये निकल के बात आ रही है कि हमें फर्स्ट इंप्रेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए। कई बार हमें गलत फहमियां होती हैं, हम किसी को पहचान नहीं पाते, और जब हमें उनको जानने का मौका मिलता है, दोस्ती होती है, तो वो कुछ और ही बहुत ही खूबसूरत इंसान निकल के आते हैं। दोस्तों, मौके का तलाश कीजिए, पहले इंप्रेशन में किसी के बारे में विचार मत बनाइए। और इसी के साथ सुनते हैं खूबसूरत सा गीत योगिनी जी का।

0: योगिनी जी, ये भी बहुत बहुत खूबसूरत सवाल है। बड़ा मजा आता है मुझे ये पूछने में, क्योंकि आपके अंदर की इच्छाएं निकलकर बाहर आती हैं। अगर आपको फर्ज कीजिए, आपकी तीन इच्छाएं, 3 विशेज पूरी कर देने वाला कोई देवता, जिन, परी मिल जाए, फर्ज कीजिए ना, तो क्या मांगेंगी आप? 3 इच्छाएं।
1: जी, भगवान ने हमें 2 हाथ दिए हैं,
0: जी
1: इनसे हमेशा बस सबका अच्छा ही हो, कोई कभी मेरी वजह से दुखी ना रहे, दुनिया से दुख और अन्याय सबका अंत हो जाए। मतलब काश जिन ऐसा कर सके कि कोई भी भूखा ना रहे, किसी के दिल में नफरत ना हो और हर इंसान खुशहाल जीवन जी सके। मतलब शॉर्ट में कहूँ तो सतयुग आ जाए
0: जी और
1: जी, यही मतलब इसी में मैंने सब कुछ मांग लिया। अगर आप ध्यान से सुने
0: ओके
1: इस चीज को, तो सब कुछ
0: वाह
1: एक ही चीज में, अगर हम कहते कि सतयुग आ जाए तो
0: जी,
1: सब कुछ अपने आप ही बढ़िया हो जाएगा।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। तो दोस्तों, चलिए फिर आगे बढ़ते हुए एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं।

0: योगिनी जी, आज तक की डेट में आपको अब तक मिली सबसे अच्छी प्रशंसा या एप्रिसिएशन, तारीफ क्या मिली है?
1: एक्चुअली मुझे किसी ने कहा था कि आज के जमाने के हिसाब से आप बहुत एक्टिव, बिंदास और बहादुर लेडी हैं। यही चीज एक तो मेन है, और बाकी जब भी हम लोग सिंगिंग करते हैं और कोई अप्रिशिएट करता है, कोई खड़े होके ताली बजा देता है, बस इसी में मन खुश हो जाता है।
0: भाई वाह, क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बात कही साहब आपने। दोस्तों, बहुत ही प्यारी सी एक याद, एक प्रशंसा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और गीत सुनते हैं योगिनी जी का।

0: खूबसूरत बहुत ही प्यारा गीत योगिनी जी, हमारे ऑडियंस के लिए, सिंगर्स के लिए, हमारे परिवार के लिए जो सिंगर्स का परिवार है, क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश होगा आपका?
1: जी हाँ, मेरे सभी सुनने वालों के लिए मेरा दिल से एक खास संदेश है। खुद पर विश्वास रखो, सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए हर दिन एक कदम आगे बढ़ो। खुश रहो, जिंदगी छोटी है, हर पल को एंजॉय करो, हंसो और पॉजिटिव सोचो, सीखते रहो, नई चीजें सीखो, नए लोगों से मिलो और खुद को अपडेट करते रहो। अच्छे इंसान बनो, किसी की मदद करना, किसी को मुस्कान देना, यही असली सफलता है।
0: बहुत खूब योगिनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।

नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के कलाकार के इस प्यारे से प्रोग्राम में, जहां कुछ ख्वाब आवाज बनकर सचते हैं, कुछ जज्बात गीतों में ढल जाते हैं, और जब दिल गाता है तो हर सुनने वाला अपना सा लगने लगता है। आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही कलाकार जिनकी आवाज में सच्चाई है और सुरों में जादू। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करें।

0: रविंद्रन जी, अब मैं हमेशा यही चाहता हूं कि जो भी पार्टिसिपेंट हैं वो अपने बारे में खुद बताएं, तो जाहिर सी बात है उन्हें अपने आप को एक बार फिर यू नो शीशे में देखने का मौका सा मिल जाता है, अपने आप को समझने का मौका मिल जाता है। तो सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्पीक टू योर ऑडियंस, अवर फैमिली मेंबर्स ऑफ आज के कलाकार, और उनको अपने बारे में बताइए ना, कहां पर हैं आप, क्या करते हैं।
1: श्योर, थैंक यू समीर जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो जैसे आप सब लोग जानते हैं, मेरा नाम सुनील रविंद्रन है एंड माय रूट्स आर फ्रॉम केरला। आई एम बेसिकली अ मलयाली, बट आई हैव बीन ब्रॉट अप कंप्लीटली इन बैंगलोर। तो आई वर्क इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी एज अ वाइस प्रेसिडेंट।
0: ओके,
1: सो इट्स बीन अबाउट 20 इयर्स इन दिस कंपनी। मेरा पैशन सिंगिंग है, as you already know, that's why I'm in this program here.
0: All right.
1: So if मैं सबसे यही बोलता रहता हूँ कि if I'm not eating, if I'm not sleeping, if I'm not working, then I'm singing.
0: Wow, how cute is that? If at all हमारे सुनील भाई सो नहीं रहे हैं, खा नहीं रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं, तो वो गाना गा रहे हैं, क्या बात है। Now this is really really very very interesting. Okay, तो सुनील जी, आज हम लोग अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे। मैं आप ही से पूछना चाहूंगा कि हम लोग अपने फैमिली मेंबर्स को, हमारे सुनने वालों को, आप कौन सा गीत सुनवाना चाहते हैं जो आपने हमें रिकॉर्ड किया है, हमारे लिए रिकॉर्ड किया है।
1: तो पहले तो मैं एक गाना है जिसका नाम सारंगा है, सारंगा तेरी याद में। तो दिस इज ऑल्सो, आई हैव हर्ड दैट इट इज ऑल्सो अमिताभ बच्चन फेवरेट सॉन्ग एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स।
0: वाओ,
1: तो हम क्यों ना हम वही गाने से शुरू करें।
0: अमेजिंगली ब्यूटीफुल, बहुत खूब, उसी गाने से शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो चलिए, सारंगा जो कि सुनील जी का भी फेवरेट सॉन्ग है, सुनते हैं।

0: बहुत खूब। तो सुनील जी, चलिए मुझे ये भी बता दीजिए साथ साथ कि आपने सिंगिंग कब से शुरू करी, कौन सी उम्र से शुरू करी थी, किसने आपको मोटिवेट किया, किसने आपको इशारा किया, कहा सुनील दैट यू कुड बी अ गुड सिंगर, यू आर अ गुड सिंगर, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, कब हुआ ये?
1: बहुत मजेदार कहानी है ये। आई एक्चुअली स्टार्टेड एज अ बाथरूम सिंगर लाइक हाउ अ लॉट ऑफ पीपल डू। मेरा कॉन्फिडेंस जीरो था स्कूल टाइम में। स्कूल टाइम में भी हमारे स्कूल में सिंगिंग कॉम्पिटिशन होता था, बट मुझे बहुत ये स्टेज फियर था, लाइक आई वाज स्केयर्ड टू कम ऑन अ स्टेज, सो आई वुड नेवर गिव माय नेम। बट जब भी ये लोग गाते थे एंड कुछ लोग अच्छे नहीं गाते थे, तो वो गाना सुन के मुझे लगता था कि आई कुड डू बेटर, आई कुड डू मच बेटर, एंड मैं वो गाना बाथरूम में जाके प्रैक्टिस करता था कि इफ आई हैड सॉन्ग हाउ वुड आई सिंग। आई स्टिल रिमेम्बर दैट वन सॉन्ग, ये तमिल में एक चिक बुक राई लेकर के एक सॉन्ग था, which one guy in the school did not sing well, okay, and I was thinking that I can sing well, and ye chalta raha ki mujhe confidence aaya hi nahi aur nobody knew that I could sing even in my house, and then ye aisa hua jab not even in my college days, when I started my office mein pehli baar aisa hua ki mere dost logo ne prank kiya mujhe. They just called me on the stage and they asked me to sing. They just told everybody Sunil is a good singer and he sings well karke mujhe. They didn't know that I can sing or you know I can I'm that's my passion.
0: Oh.
1: Aur mujhe wo gana bhi yaad hai, Dilbar mere kab tak mujhe.
0: Aha.
1: So wo gana gaya tha main pehli baar in front of an audience. Wo ek program chal raha tha. Matlab it is a small office around 25 to 30 people as audience. That was my first song and that gave me so much confidence because sab logo ne aake bola mujhe ki acha gaya and then that kind of took my stage fear out as well. So tab se main ga raha hu, I can tell you the year also, it was
0: 2007.
1: That's correct.
0: Oh wow. So ye hota hai dosto, kai baar hum logon ko push kar diya jata hai, kai baar hum accidentally kisi ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर हम एक्सप्लोर कर पाते हैं कि कुछ था हमारे अंदर जो आज तक छुपा हुआ था। सिमिलरली सुनील जी को भी उनका टैलेंट मिल गया, क्या बात है। तो सुनील जी, अब अगला कौन सा सॉन्ग आप हमारे दोस्तों के लिए सुनवाना चाहेंगे, बताइए।
1: अगला एक मोहम्मद रफी का गाना है जो मुझे बहुत बहुत बहुत पसंद है, वो सुहानी रात ढल चुकी।
0: ओके okay, that's nice, that's so beautiful. And साथ में एक और सॉन्ग बताइए जो हम उसके बाद प्ले कर देंगे।
1: उसके बाद एक ये एक अकेला इस शहर में, वो भी भूपिंदर सिंह जी का गाना है।
0: okay.
1: बहुत पसंद है मुझे वो।
0: बहुत खूब। तो आइए दोस्तों, इन दोनों प्यारे प्यारे से गीतों का आनंद उठाएं और फिर आगे बढ़ते हैं।

0: बहुत खूब। तो सुनील भाई, जैसे मैंने अपने डिस्कशन में शुरुआत में सोचा था कि आपसे पूछूंगा, हम लोग जितने भी प्रोग्राम बना रहे हैं हमारे रेडियो स्टेशन पर आज के कलाकार में, उसमें बैंगलोर सबसे आगे है पूरे इंडिया में। सो मैं और नितिन इस बारे में डिस्कशन भी कर रहे थे, और मैं चाहता था कि हमारे ग्रुप वाले लोगों के साथ भी डिस्कस करें कि ऐसा क्या हो रहा है बैंगलोर में कि इतने सिंगर्स वहां से आ रहे हैं। तो आपका क्या, आपको क्या लगता है कि why बैंगलोर इज यू नो प्रोड्यूसिंग सो मैनी फैंटास्टिक सिंगर्स, व्हाट इज हैपनिंग देयर?
1: तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंगलोर इज अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी। ओके, यू हैव पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस हियर, डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया कमिंग हियर, एंड अभी आजकल जो हो रहा है वो देर इज अ प्लेटफॉर्म फॉर पैशनेट सिंगर्स, नॉट नेसेसरली प्रोफेशनल सिंगर्स, बट देर इज अ प्लेटफॉर्म फॉर पैशनेट सिंगर्स वेयर दे कैन कम ऑन अ स्टेज। अब मेरे केस में भी ले लीजिए आप, मैं how I used to you know do my passion is I bought some speakers, mic sets, sab laake main ghar mein gaata tha. Okay, for maybe 3-4 years back I used to sing at home, and then mere dost log kuch 3-4 log mil gaye jo they had the same kind of passion that I have, and we used to do some small stage shows in apartments and all that. But abhi bahut sare karaoke groups aa gaye hain jahan pe hum log jaake apna we can fulfill our passion. So that's why I think a lot of people are coming out of their shell.
0: Okay.
1: And singing.
0: All right. Miss, I had been trying to understand the psychology which is going behind all the singers accumulating in Bangalore, because yun dekha jaye to Sunil bhai, after all Pune bhi to hai, Pune pehle bahut aage tha, fir Bangalore took over. हाँ, उसी okay. तरीके से मुंबई भी होगा, दिल्ली भी होगा, बहुत सारे प्लेसेस ऐसे, कोलकाता हो, बंगाल में तो मतलब सिंगर्स ही सिंगर्स हैं। सो अभी मुझे, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ अ टेरिटरी कि बैंगलोर में ऐसा क्या हो रहा है जो कोलकाता में नहीं हो रहा। सो ऑफकोर्स आप लोग शायद, जो मुझे सुनने में आ रहा है आपकी आवाज में, कि आप लोग बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो आपस में, एक दूसरे से कनेक्शन बहुत ज्यादा है आप लोगों का, उसकी वजह से सब लोग साथ आ रहे हैं, मजे कर रहे हैं। राइट, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, मुझे, आप लोग सुन रहे हैं इस सवाल को, अगर आपको लगता है कि कोई और रीजन हो सकता है दैट बैंगलोर इज यू नो परफॉर्मिंग अमेजिंगली ब्यूटिफुल, तो प्लीज लेट अस नो। वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, यू नो इट्स अ ह्यूमन, सॉरी, साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स विच गोज ऑन। एनीवेज, अब सुनील भाई हमें बताइए कौन सा गीत हम सुनवाए हमारे दोस्तों को।
1: ओके, अब किशोर कुमार जी का एक गाना है, आज चल के तुझे, वो सुनाना चाहता हूँ।
0: ओके, और दूसरा?
1: दूसरा अगेन किशोर कुमार जी का, मंजिलें अपनी जगह है।
0: ओके, तो मंजिलें अपनी जगह तो है अमिताभ बच्चन जी के ऊपर फिल्म आया गया, और
1: शराबी
0: का, और आचल के तुझे, ये तो किशोर कुमार जी के ऊपर ही फिल्म आया गया,
1: उनका ही है।
0: ब्यूटीफुल, मेरे को ऐसा किसी ने बोला था कि आचल के तुझे मैं लेके चलो, उसमें जो बच्चा है वो भी शायद किशोर कुमार का बेटा ही था, अमित
1: कुमार।
0: या आई केम टू नो अबाउट दैट, हाउ ब्यूटीफुल। चलिए दोस्तों, इन दोनों प्यारे से गीतों का आनंद उठाएं, पहले सुनील जी की आवाज में और फिर हम आगे बढ़ते हैं।